0: जो मस्ती।
1: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
2: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। चलते

0: Welcome to RM2
1: Radio Musti.
2: North, South,
1: 103.5,
2: East, West,
1: 96.4,
2: Center,
1: 99.4.
0: RM2 Radio Musti.
1: Radio Musti.
0: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti.
3: A very good morning, आप सभी को सुप्रभात। आज रविवार 30 अगस्त 2026 की सुबह है और अभी आप घड़ी मिलाते चलिए ठीक 5:06।
4: Chillax with Radio Musti,
0: your number one Bollywood radio station.

0: A very good morning आप सभी को सुप्रभात. क्या हाल है आप सबका. संडे की सुबह है 30 अगस्त 2026 और समय अभी 5:12. आप सुन रहे हैं रिलैक्स सिर्फ और सिर्फ रेडियो मस्ती पर. और आज की सुबह तो भाई एकदम रजाई वाली सुबह है. बाहर निकलो तो ठंडी हवा सीधा कह रही है वापस घर जाओ, और कंबल से निकलो तो दिल कह रहा है कि आज तो रहने दो ना. लेकिन जो लोग इस समय यह जाग रहे हैं, सल्यूट है आपको. कुछ लोग काम के लिए निकल रहे होंगे, कुछ सफ़र पर होंगे, कुछ घर में सुबह की तैयारी कर रहे होंगे, ब्रेकफास्ट की तैयारी, या कि संडे स्पेशल ब्रेकफास्ट या ब्रंच होता है. तो आप जो कुछ भी कर रहे हैं, हैव अ ग्रेट टाइम. और ऐसे में हम बहुत ही खूबसूरत गाने लेकर आए हैं आप सभी के नाम. और अगर आप रेडियो सुन रहे हैं तो हमारी ओर से बहुत बहुत सारा प्यार, यानी रिया की ओर से बहुत सारा प्यार आपके नाम जाता है. एंड यस, 30 अगस्त, यानी अगस्त का भी ऑलमोस्ट आखिरी सफ़र चल रहा है. सोचिए, कल तक तो हम कह रहे थे अगस्त शुरू हो गया, और अब कह रहे हैं कि अगस्त भी ख़त्म होने वाला है. ज़िंदगी भी ना रेडियो के गाने की तरह है, एक गाना ख़त्म होता है और पता ही नहीं चलता अगला गाना शुरू हो जाता है. तो इस संडे को ज़्यादा मत सोचिए, बस आराम से आप बैठिए, चाय या कॉफ़ी का कप हाथ में लीजिए, वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ाइए, और शुरू हम करते हैं आपका रिलैक्स ऑन दिस ब्यूटीफुल संडे मॉर्निंग, ठंडी हवाओं के साथ, गरम गरम यादों के साथ और खूबसूरत गानों के साथ. तो चलिए इस सफ़र में हमारे साथ. योर डेडिकेशंस मैसेजेस ऑन 5499-1294. एंड रिया की ओर से बहुत बहुत बहुत बहुत सारा प्यार. एंड विशिंग यू ऑल हैप्पी हैप्पी संडे.
1: Chillax with Radio Masti,
2: your number one Bollywood radio station.

0: Chillax with Radio Musty.
1: क्या ठंडक है आज की इस सुबह में। वैसे मॉरिशस की सुबह बहुत ही खूबसूरत होती है, लेकिन आज हवा में कुछ ज़्यादा ही ठंडक है और कल भी थी। क्या है कि इट वॉज ऑलरेडी प्रिडिक्टेड कि ठंड बहुत ही होगी इन दो चार दिनों। और आपको पता है ठंड का एक अलग ही मज़ा होता है, सुबह सुबह का गर्म चाय हाथ में, कप खिड़की से बाहर देखना, और अगर हल्की सी हवा चल रही हो तो बस मूड बन जाता है। लेकिन आई डोंट थिंक कि हल्की हवा चल रही है, इट्स क्वाइट ब्रीदी आउटसाइड। और इसीलिए आप गर्म कपड़े पहनिए एंड खुद को आप कंबल में लपेटिए अगर आप अभी भी बिस्तर पे हैं। बट आई नो कि आज बहुत सारे लोग अभी भी बेड पर ही है, बट स्टिल ट्यूनिंग टू रेडियो मस्ती। क्या है ये चिलैक्स को आप मिस कैसे कर सकते हैं। संडे मॉर्निंग बहुत ही खूबसूरत गाने लेकर आते हैं आपके नाम। वैसे आज थोड़ा धीरे ही हम चलेंगे यहाँ पर। रोज हम घर के पीछे भागते हैं, जल्दी उठना है, तैयार होना है, काम पर जाना है, बच्चों को स्कूल भेजना है, घर के काम, सब काम, हर चीज़ में जल्दी जल्दी जल्दी। लेकिन संडे कहता है कि आज थोड़ा तो रुक जाओ, थोड़ा अपने लिए समय निकालो, फैमिली के साथ बैठो, किसी पुराने दोस्त को फ़ोन करो या फिर बस अपना फेवरेट म्यूज़िक सुनो। और अगर आप इस समय ड्राइव कर रहे हैं तो प्लीज़ ठंड के साथ साथ रोड का भी आप ख्याल रखिए, आराम से ड्राइव कीजिए। वैसे आज संडे है एंड नो ट्रैफिक, इतना ट्रैफिक नहीं होता है और स्पेशली एट दिस आवर तो

0: बिल्कुल भी नहीं होता, तो आप आराम से गाड़ी चलाइए, एंजॉय द म्यूजिक। संडे है, कहीं जाना है तो आप पहुंच जाएंगे और टाइम पर ही पहुंचेंगे। तो आज का दिन किसी कंपटीशन का हिस्सा नहीं है, आज बस चिलैक्स करना है और इस खूबसूरत संडे मूड को लेकर म्यूजिक का सिलसिला जारी हम रखते हैं। द नेक्स्ट ट्रैक गोज आउट टू ऑल म्यूजिक लवर्स और ये महेंद्र कपूर जी की आवाज़ में है ये गाना जो हम चलाने वाले हैं नेक्स्ट। और जब भी ऐसे गाने हम चलाते हैं तो किसी की याद आ ही जाती है, जैसे जब भी मैं ये वाला गाना चलाती हूँ तो मुझे अपने दादाजी की बहुत ही याद आती है, क्योंकि ये उनका एक फेवरेट गाना था और महेंद्र कपूर जी उनको बहुत ही पसंद थे। तो ये गाना इट्स ऑब्वियस कि आपको डाउन द मेमोरी लेन ले चलेगा। तो आई होप कि आपकी भी कुछ यादें ताज़ी हो रही है। सो लेट्स एंजॉय द नेक्स्ट ट्रैक।
1: With Radio Masti,
2: your number one Bollywood radio station.

0: एक बात बताइए कि आपको भी लगता है कि अगस्त
1: बस अभी अभी शुरू हुआ था एंड अभी 30th August आ गया है. कैलेंडर देखिए तो समझ आता है, अरे वाह, साल के 8 महीने निकल अभी गए. जनवरी से लेकर अगस्त तक का कितनी चीज़ें बदल गई होंगी. कुछ नए लोग जिंदगी में आए होंगे, कुछ पुरानी यादें बनी होंगी, कुछ प्लान्स पूरे हुए होंगे और कुछ प्लान्स अभी भी देखेंगे करेंगे वो लिस्ट में पड़े होंगे. लेकिन यही तो जिंदगी है, हर महीना अपने साथ कुछ ना कुछ लेकर आता है और कुछ पीछे छोड़ जाता है. अगस्त भी अब अपना आखिरी सलाम कर रहा है. कल से कल इट्स द लास्ट डे 31st of August. फिर मंडे यानी ट्यूसडे से, जी हाँ ट्यूसडे से सितंबर का सफर शुरू होगा. एक नया महीना, नए दिन, नए मौके, बट हर रोज एक नया मौका हमें दे ही देता है. तो अगर अगस्त आपके हिसाब से परफेक्ट नहीं रहा, कोई बात नहीं, सितंबर को एक नई शुरुआत समझिए. और अगर अगस्त बहुत अच्छा रहा तो इसकी खूबसूरत यादों को संभाल कर रखिए. कैलेंडर बदलता रहेगा, मौसम बदलता रहेगा, समय या आगे बढ़ता रहेगा, बस एक चीज़ हमारे हाथ में है, हर दिन को कैसे जीना है. तो इस संडे को भी आप दिल खोल कर जिए और रेडियो मस्ती पर रिलैक्स के साथ म्यूजिक का ये सफर बिल्कुल रुकना तो नहीं चाहिए.
2: Chillax with Radio Masti,
3: your number one Bollywood radio station.

0: Your daily horoscope. RM2 Radio Musti.
1: चलिए जी, समय हो चला है आपको बताने का कि आज आपका दिन कैसे कटेगा. इट्स योर राशि टाइम.
2: एरीज, मेष राशि.
1: आज का दिन आपके लिए सुकून और खुशी लेकर आ सकता है. किसी पुराने दोस्त या अपने से अच्छी बात हो सकती है. घर का माहौल भी प्यार और हंसी मजाक से भरा रहेगा. लेकिन नंबर है आज आपका 9.
2: टॉरस, वृषभ राशि.
1: आज आपका ध्यान घर और परिवार की तरफ ज्यादा रहेगा. किसी अपने के साथ दिल की बात करने का अच्छा मौका आपको मिलेगा. पैसे से जुड़ी कोई अच्छी खबर मिल सकती है. आज बेकार के खर्चों से बचना आपके लिए बेहतर रहेगा. लकी नंबर है आज आपका 6.
2: जेमिनी, मिथुन राशि.
1: आज का दिन आपके लिए काफी हल्का फुल्का और खुशनुमा रहेगा. दोस्तों के साथ बातचीत या मिलना जुलना हो सकता है. किसी पुरानी याद से चेहरे पर मुस्कान आ जाएगी. जो काम कुछ दिनों से रुका हुआ था उसमें आगे बढ़ने का मौका आपको मिलेगा. लकी नंबर है आज आपका 5.
2: कैंसर, कर्क राशि.
1: आज आप थोड़ा भावुक महसूस कर सकते हैं. अपनों का साथ आपको अंदर से मजबूत बनाएगा. घर में किसी खास बात को लेकर खुशी का माहौल बन सकता है. पुरानी परेशानी को लेकर ज्यादा सोचना छोड़ ही दीजिए. लकी नंबर है आज आपका 2.
2: लियो, सिंह राशि.
1: आज आपका हौसला और भरोसा दोनों मजबूत रहेंगे. किसी काम में आपकी मेहनत की तारीफ हो सकती है. परिवार में किसी बुजुर्ग की सलाह आपके काम आ सकती है. आज गुस्से में कोई फैसला लेने से आप बचेंगे तो बेहतर ही होगा. लकी नंबर है आज आपका 1.
2: वर्गो, कन्या राशि.
1: आज का दिन थोड़ा आराम करने और खुद को समय देने का है. कुछ अधूरे काम पूरे करने का मौका आपको मिलेगा. घर में किसी छोटी सी बात से खुशी मिल सकती है. किसी अपने की मदद करने से आपको भी दिल से अच्छा लगेगा. बस हर बात को लेकर ज्यादा सोचना आज छोड़ दीजिए. लकी नंबर है आज आपका 4.
2: लिब्रा, तुला राशि.
1: आज रिश्तों में प्यार और मिठास बनी रहेगी. किसी खास शख्स से दिल खुश कर देने वाली बात हो सकती है. घर में मिलजुल कर समय बिताने का मौका आपको मिल सकता है. और काम से जुड़ी कोई चिंता आज थोड़ी कम हो सकती है. लकी नंबर है आज आपका 7.
2: स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि.
1: आज आप किसी पुरानी और उलझन का हल ढूंढ सकते हैं. जो बात कुछ समय से आपको परेशान कर रही थी उसमें सुधार आएगा. अपनों की तरफ से पूरा सहयोग मिलेगा. पैसे के मामले में संभल कर चलना अच्छा रहेगा. लकी नंबर है आज आपका 8.
2: सजिटेरियस, धनु राशि.
1: आज आपका मन घूमने फिरने और कुछ नया करने का करेगा. किसी अचानक बने प्लान से दिन और भी खास हो सकता है. दोस्तों या परिवार के साथ अच्छा समय गुजरेगा. किसी दूर रहने वाले अपने बात से बात हो सकती है. लेकिन नंबर है आज आपका 3.
2: कैप्रिकॉर्न, मकर राशि.
1: आज का दिन आपको थोड़ा रुकने और सांस लेने का मौका देगा. काम की जिम्मेदारियों के बीच अपने लिए समय निकालना जरूरी है. परिवार में किसी की बात आपके दिल को छू सकती है. पुराने किसी काम को पूरा करने का अच्छा समय है. लेकिन नंबर है आज आपका 8.
2: एक्वेरियस, कुंभ राशि.
1: आज आपके मन में नए विचार और नए सपने आ सकते हैं. किसी दोस्त की सलाह आपके लिए फायदेमंद साबित होगी. घर में खुशियों का माहौल बना रहेगा. और किसी पुराने काम को नए तरीके से करने का विचार आ सकता है आपको. लकी नंबर है आज आपका 11.
2: पाइसेस, मीन राशि.
1: आज का दिन दिल को सुकून देने वाला हो सकता है. किसी अपने से प्यार भरी बात आपका दिन बहुत ही अच्छा बना देगी. और पुरानी कोई अच्छी याद आपको खुश कर सकती है. घर और परिवार से जुड़ी कोई छोटी खुशी मिल सकती है. आज ज्यादा सोचने से के बजाय आप पल को जीने की कोशिश कीजिए. लकी नंबर है आज आपका 2. सो फ्रेंड्स, ये थी आज की राशि आपके नाम. आई होप कि आपका दिन बहुत ही अच्छा कटे. चलिए, रिया की ओर से आपको शुभ दिन और शुभ रविवार.
0: Your daily horoscope. RM2 Radio Musti.

0: listening to Radio Misty.
1: The time is brought to you by
2: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
1: And Rapid Peanut Butter. Creamy and crunchy premium peanut butter.
0: Radio Musti.
3: North, South,
0: 103.5.
3: East, West,
0: 96.4.
3: Center,
0: 99.4.
4: RM2, Radio Musti.
0: Radio Musti.
4: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti.
5: A very good morning, aap sabhi ko. Suprabhat, ghare milate chaliye. Subah ki theek 6 baj rahi hai. समय हो चला है संक्षिप्त समाचारों का, तो आइए इसे हम आस्था के साथ है। संध्या नमस्कार आपको। आस्था
6: नमस्कार। 6 बजे की समाचारों में स्वागत है आप सभी का। मॉरिशस में तेज हवा और ऊंची समुद्री लहरों की चेतावनी जारी है। ये चेतावनी सोमवार सुबह 10 बजे तक लागू रहेगी। आज हवा के झोंके कुछ जगहों पर 90 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकते हैं। समुद्र बहुत खराब रहेगा और लहरें 4 से 6 मीटर तक पहुंच सकती हैं। मछुआरों, नाव चलाने वालों और आम लोगों को समुद्र में नहीं जाने की सख्त सलाह दी गई है। सड़क पर गंभीर नियम तोड़ने वाले लोगों के खिलाफ सरकार सख्ती की तैयारी में है। कैबिनेट ने रोड ट्रैफिक अमेंडमेंट बिल 2026 को राज्यसभा में पेश करने की मंजूरी दी। गंभीर मामलों में गाड़ी जब्त करने और शराब या ड्रग्स के असर में गाड़ी चलाने वाले लोगों सहित कई अन्य अपराधों के लिए सजा कड़ी करने का प्रावधान है। करीब 18 साल से बंद पोटली थिएटर आज अगले कुछ हफ्तों में फिर से खुल सकता है। सरकार पोटली थिएटर और प्लाजा के संचालन के लिए सर

0: सरकारी और निजी सेक्टर की साझेदारी को प्राथमिकता दे रही है। विदेश स्तर पर नेपाल के उत्तरी इलाकों में भीषण बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 675 हो गई है। बड़ी संख्या में लोग अब भी लापता हैं और प्रभावित इलाकों में तलाश तथा बचाव अभियान जारी है। और अब चले जानते हैं कि मौसम का हाल कैसा रहेगा। मॉरिशस में तेज हवा और ऊंची समुद्री लहरों की चेतावनी जारी है। ये चेतावनी सोमवार 31 अगस्त सुबह 10 बजे लागू रहेगी। मस्करीन के दक्षिण में बने मजबूत उच्च दबाव के क्षेत्र के कारण देश में तेज हवा के साथ ठंड का असर बना हुआ है। अगले 24 घंटों में बीच बीच में बादल छाए रहेंगे, खासकर पूर्व दक्षिण और मध्य के ऊंचे इलाकों में रुक रुक कर बारिश हो सकती है। तापमान सामान्य से कम रहेगा। ऊंचे इलाकों में दिन का तापमान 17 से 20 डिग्री सेल्सियस और दूसरे इलाकों में 23 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। रात में ऊंचे इलाकों में तापमान 13 से 15 डिग्री और समुद्री किनारे 16 से 18 डिग्री सेल्सियस के बीच होगा। हवा दक्षिण पूर्व से 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी। कुछ जगहों पर हवा के तेज झोंके 90 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकते हैं। लोगों को हवा में उड़ने वाली चीजों से सावधान रहने की सलाह दी गई है। ऊंची इमारतों और दूसरे ऊंचे ढांचों पर काम करने से बचें। खुले रास्तों पर गाड़ी चलाते समय भी खास सावधानी बरतें। सूर्योदय 6:20 पर और सूर्यास्त शाम 6 बजे होगा।
1: Your weather forecast on RM2.
2: Radio Musti.
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv. Chillax, chillax. With Radio Musti,
2: your number one Bollywood radio station.

Chillax with Radio Musty. वंस अगेन अ गुड गुड मॉर्निंग सभी को 6:10 हो रहे हैं और रिलैक्स का दूसरा घंटा शुरू हो गया है सिर्फ रेडियो मस्ती पर। और बाहर का मौसम हाय ठंड भी बहुत है, अभी पूरी तरह से बनी हुई है। ऐसी सुबह में बस मन करता है कि एक गर्म चाय या कॉफ़ी हाथ में हो, कोई जल्दी ना हो और बस सुकून से म्यूज़िक आप सुन सको। और एग्जैक्टली इसी मूड के लिए अब हम लेकर आ रहे हैं कुछ मिक्स बहुत ही खूबसूरत गाने। एक तो सूदिंग गाने हैं जो आपके दिल को थोड़ा सा नरम नरम फील करवाएंगे। अभी शुरुआत हुई है ओरे पिया से, आजा नचले मूवी का वो खूबसूरत गाना जो सुबह सुबह और भी ज़्यादा दिल को छू जाता है। संडे है तो म्यूजिक भी आज थोड़ा आराम से चलेगा, ना बहुत शोर ना बहुत तेज रफ्तार, बस वो गाने जो धीरे से दिल तक पहुंच जाए। आप चाहे घर में है, चाय बना रहे हैं, सफाई कर रहे हैं या इस ठंडी सुबह में कहीं निकल चुके हैं, शायद गर्मा गर्म रोटी खरीदने गए हैं या बस ऐसे ही टहलने गए हैं, क्योंकि कई लोगों की आदत बन चुकी है सवेरे सवेरे चल पड़ते हैं एक मॉर्निंग वॉक पर। कई लोग कसरत करते हैं, व्यायाम करते हैं यानी एक्सरसाइज करते हैं, दैट्स रियली गुड। ऐसे ही आप तंदुरुस्त होते जाए, सेहत को बनाइए और स्टे हैप्पी। क्या है कि जब आप शरीर को स्वस्थ रखते हैं तभी तो आपका मानसिक जो दशा है ये भी

ही बहुत ही खुश होता है एंड इट्स रियली गुड अगर दोनों बैलेंस हो, अगर शरीर खुश मन भी खुश, तो चाहे आप अभी मेडिटेट कर रहे हो, व्यायाम कर रहे हो, जस्ट हैव अ गुड टाइम. और हमारे जो गाने हैं आई एम श्योर कि आपको पसंद आएंगे. तो चलिए इस संडे को हम और भी खूबसूरत बनाते हैं, नेक्स्ट गाने की ओर चलते हैं.

चलिए जी, यहाँ पर हम विश करते हैं वेरी हैप्पी बर्थडे टू रेणुका रघुवर जी। आप है कच्ची मेरी तैसी और आज आप 50 साल की हो गई है, सो हैप्पी हैप्पी बर्थडे आपको। जन्मदिन की ढेरों सारी शुभकामनाएं एंड बेस्ट विशेस कमिंग फ्रॉम रेशमा एंड सूरज रामन एंड द होल रघुवर परिवार।

0: सुबह के ठीक 6:30 बज रहे। नमस्कार, सुबह 6:30 बजे के समाचारों में स्वागत है आप सभी का। 30 अगस्त का दिन है, ये नया दिन हम सभी के लिए शुभ हो। शुरू करते हैं आज की सुर्खियों के साथ। मॉरिशस में तेज हवा और ऊंची समुद्री लहरों की चेतावनी सोमवार सुबह 10 बजे तक लागू रहेगी। हवा के झोंके 90 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंचने की आशंका है। समुद्र में नहीं जाने की सलाह दी जाती है। सड़क पर गंभीर नियम तोड़ने वालों के खिलाफ सख्ती की तैयारी। रोड ट्रैफिक अमेंडमेंट बिल 2026 को राज्यसभा में पेश करने की मंजूरी दी गई है। गंभीर मामलों में गाड़ी जब्त करने और सजा कड़ी करने का प्रस्ताव है। मॉरिशस की दो युवा टीमें स्टेम रेसिंग वर्ल्ड फाइनल्स 2026 में करेंगी देश का प्रतिनिधित्व। अक्टूबर में सिंगापुर में होगी विश्व प्रतियोगिता। सीएससी वेलोसिटी टीम को सरकार देगी आर्थिक सहायता। सैंब्रोंडो में अब इंटरनेट की सुविधा। लंबे समय से सैटेलाइट फोन और रेडियो पर निर्भर लोगों के लिए संचार का नया माध्यम स्थापित किया गया है। नेपाल के उत्तरी इलाके में भीषण बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 675 हो गई है। सैकड़ों लोग लापता हैं। प्रभावित इलाकों में तलाश और बचाव अभियान जारी है। इस बुलेटिन में एक बार फिर आपका स्वागत है। बात करते हैं सबसे पहले मौसम के बारे में। मॉरिशस में तेज हवा और ऊंची समुद्री लहरों की चेतावनी जारी है। ये चेतावनी सोमवार सुबह 10 बजे तक लागू रहेगी। देश में आज मौसम काफी ठंडा और तेज हवा वाला रहेगा। पूर्व दक्षिण और मध्य के ऊंचे इलाकों में बीच बीच में बारिश होने की संभावना है। हवा दक्षिण पूर्व से 30-40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी, जबकि कुछ जगहों पर तेज झोंके 90 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकते हैं। लोगों को उड़ने वाली चीजों से सावधान रहने और खुले रास्तों पर गाड़ी चलाते समय खास सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है। समुद्र बेहद खराब रहेगा और प्रवाल रेखा के बाहर लहरें 4-6 मीटर तक पहुंच सकती हैं। ऊंचे ज्वार के समय खासकर पश्चिम और दक्षिण के निचले तटीय इलाकों में पानी भरने का खतरा है। सड़क पर गंभीर नियम तोड़ने वालों के खिलाफ सरकार अब और सख्ती की तैयारी में है। कैबिनेट ने रोड ट्रैफिक अमेंडमेंट बिल 2026 को राज्यसभा में पेश करने की मंजूरी दे दी है। बिल में गंभीर मामलों में गाड़ी जब्त करने और कुछ मामलों में चालक को गाड़ी चलाने से रोकने का प्रावधान है। शराब या नशीले पदार्थों के असर में गाड़ी चलाने, सड़क पर हिंसक व्यवहार और गैर कानूनी रेस के लिए भी सजा कड़ी करने का प्रस्ताव है। इस पर फ्लोरियो फ्लो ने निर्मा नारायण रेड्डी से बात की। विवरण याचना मिश्रा का है।
1: Nous sommes contre la répression, mais ces amendements sont nécessaires pour renforcer la sécurité sur nos routes.
2: हम दमन के खिलाफ हैं, लेकिन सड़क सुरक्षा ठोस हो इसके लिए ये कदम जरूरी है। जब कोई व्यक्ति गाड़ी चलाता है तो उसकी खुद की जिम्मेदारी, साथ में यात्रियों, राहगीरों, अन्य चालकों की भी जिम्मेदारी उसकी हो जाती है। ड्रग्स के नशे में स्थिति गंभीर हो जाती है और सजा उससे भी गंभीर होनी चाहिए। एक जानलेवा दुर्घटना के बाद चालक को सजा देने की बात नहीं, बल्कि जिम्मेदारी बढ़ाना, चालक को अवगत कराना, जागरूक कराना जरूरी है। कार्रवाई, जागरूकता जरूरी है और पेनल्टी पॉइंट्स प्रणाली इसी दिशा में अमल में लाई गई।
1: कंट्रोल एंड कैंपेन डी सेंसिबिलाइजेशन कॉल द सिस्टम डी पीएमई आ पॉइंट एस्ट जस्टेमेंट इन मेजर की वीज अ रिस्पांसिबिलिटी डावांटेज डी कंडक्टर।
0: एफसीसी में जानकारी बाहर जाने के शक को लेकर अंदरूनी जांच शुरू की गई है। एफसीसी के मुताबिक नशीले पदार्थों की तस्करी से जुड़े काले धन के एक मामले में एक संदिग्ध के पास कमीशन का एक आधिकारिक दस्तावेज मिला है। इसके बाद मामले से जुड़े जांच अधिकारियों के लैपटॉप जांच के लिए ले लिए गए हैं। अब ये पता लगाया जाएगा कि ये दस्तावेज संदिग्ध तक कैसे पहुंचा और इसके लिए कौन जिम्मेदार है। एफसीसी का कहना है कि जांच के नतीजे के आधार पर जरूरी कदम उठाई जाएंगी। बैंक ऑफ मॉरिशस ने इंटरनेट पर चल रही निवेश की एक फर्जी योजना को लेकर लोगों को सावधान किया है। इसमें लोगों को पैसा लगाने के लिए लुभाने के मकसद से बैंक ऑफ मॉरिशस की गवर्नर डॉक्टर प्रिसिला मथुरा ठाकुर की एआई से बनाई गई तस्वीर और एक कारोबारी की तस्वीर का इस्तेमाल किया जा रहा है। बैंक ऑफ मॉरिशस ने साफ किया है कि इस योजना को उसकी या देश के किसी भी बैंक की मंजूरी नहीं है। अगर कोई व्यक्ति इस धोखाधड़ी का शिकार हुआ तो उसे तुरंत पुलिस में शिकायत करने की सलाह दी गई है। मॉरिशस की दो युवा टीमें आरामको स्टेम रेसिंग वर्ल्ड फाइनल्स 2026 में देश का प्रतिनिधित्व करने वाली हैं। ये विश्व प्रतियोगिता 3 से 8 अक्टूबर तक सिंगापुर में लगेगी। कैबिनेट ने सेंट एस्प्री कॉलेज की सीएसई वेलोसिटी टीम को आर्थिक सहायता देने का फैसला किया है। इस टीम ने पिछले साल मॉरिशस में हुई राष्ट्रीय स्टेम रेसिंग प्रतियोगिता जीती थी। सुखदेव बिसुंदयाल स्टेट कॉलेज की रेसिंग वोटेक्स टीम भी मॉरिशस का प्रतिनिधित्व करेगी। स्टेम रेसिंग मॉरिशस के फ्रांसवा मॉक ने सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने राजमिला सीतामुनि से बात की, विवरण याचना मिश्रा।
2: ये मॉरिशस के लिए बहुत बड़ी बात है। पहली बार के लिए इस प्रोग्राम के लिए मॉरिशस अफ्रीकी महाद्वीप का प्रतिनिधित्व कर रहा है। कार्य सत्र होंगे जिसमें हम अपने साझेदारों को भी आमंत्रित कर रहे हैं सहयोग के लिए। हम इस चैंपियनशिप को जीतना चाहते हैं। विश्व फाइनल्स का खर्च 1 से 2 मिलियन के करीब है प्रति टीम के लिए। रजिस्ट्रेशन, भागीदारी, होटल का खर्च इसमें आता है, खासकर सिंगापुर में जहां महंगाई ज़्यादा है। सभी टीमों को अभी भी वित्तीय सहयोग की ज़रूरत है। सरकार ने मदद का वादा किया है, लेकिन कुछ डेडलाइंस भी हैं जिनका पालन किया जाना चाहिए। जो भी सहयोग के लिए आगे आना चाहता हो वो हमारे साथ संपर्क कर सकता है।
0: इस प्रतियोगिता में 13 से 19 साल के युवा अपनी छोटी रेसिंग कार तैयार करते हैं और अपनी टीम बनाकर पूरे प्रोजेक्ट को खुद संभालते हैं। सैम्ब्रांडो में संचार के क्षेत्र में एक नया कदम। लंबे समय से वह मॉरिशस से संपर्क के लिए मुख्य रूप से

0: सैटेलाइट फोन और रेडियो का सहारा लिया जाता है अब सैमहोंतों में इंटरनेट की सुविधा भी उपलब्ध हो गई है इस परियोजना के लिए कॉन्ट्रैक्ट एमटेल ने हासिल किया है समझौते पर शुक्रवार 28 अगस्त को पोटली के लाबुनेने होटल में हस्ताक्षर किए गए इस सुविधा से सैमहोंतों में काम करने वाले लोगों के लिए मोर्चे से संपर्क करना आसान होगा साथ ही देश के दूर दराज इलाकों को बेहतर संचार सुविधा से जोड़ने की दिशा में भी इसे अहम कदम माना जा रहा है आईसीटी मंत्री अविनाश राम तुहल को सुनते हैं याचना मिश्रा
1: Maintenant, nous connectons aussi à Saint-Brandon et à Raphael Islands à travers la technologie LEO.
2: हमने सैमहोंतों और राफेल आइलैंड्स को भी टेक्नोलॉजी लियो के जरिए अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट के साथ जोड़ा है लियो का दाम कम है कनेक्शन तेज है टापू के साथ हम जुड़ पाएंगे वहां के लोगों को इंटरनेट मिलेगा वे अपने परिवार वालों से भी संपर्क कर पाएंगे
0: करीब 18 साल से बंद पोटली थिएटर जल्द फिर खुल सकता है कला और संस्कृति मंत्री महीन गुंजिया ने अगले कुछ हफ्तों में इसे दोबारा खोलने की घोषणा की है इस सिलसिले में गुरुवार 3 सितंबर को उनके मंत्रालय प्रांत प्रशासन मंत्रालय और पोटली नगरपालिका के बीच बैठक लगेगी सरकार पोटली थिएटर और रुजिल के प्लाजा के संचालन के लिए जिम्मेदार सरकारी और निजी सेक्टर की साझेदारी को प्राथमिकता दे रही है पोटली थिएटर वर्ष 2008 से बंद है मंत्री महीन गुंडिया को सुनते हैं याचना मिश्रा
3: Donc, ça aussi.
2: पोटली थिएटर की लॉन्चिंग भी कर रहे हैं दोनों नगर पालिकाओं को बधाइयां देना चाहूंगा दो थिएटर्स को फिर से शुरू करने की उनकी पहल को लेकर कला एवं संस्कृति मंत्री के नाते मेरे लिए थिएटर बहुत जरूरी है ऐसा मंच जहां कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन कर पाएं सैज कॉन्स्टेंटिन थिएटर 4-5 सालों तक बंद रहा मेरी नियुक्ति के 4-5 महीने बाद मैंने थिएटर की लॉन्चिंग फिर से की रिनोवेशन कराया आज जगह में बुकिंग पूरी है यानी इसकी मांगें ज्यादा हैं अब आगे देखना है कि हम क्या कर सकते हैं
3: कि सा दे थिएटर पारे et nous guider dans l'avenir encore qui nous capable faire
0: कलाकारों के अधिकार मनोरंजन के सेक्टर को और पेशेवर बनाना और पर्यटन में मॉरिशस संस्कृति को अधिक जगह देना इन्हीं मुद्दों पर मॉरिशस सोसाइटी ऑफ ऑथर्स माजा आगिम और मनोरंजन क्षेत्र से जुड़े लोगों ने चर्चा की ये बैठक 19 अगस्त को एबन के होटल स्कूल में लगी माजा के निदेशक डॉक्टर जेरॉ लुइस ने कलाकारों के अधिकार और उनकी संरचनाओं की सुरक्षा में संस्था की भूमिका के बारे में बताया माजा की अध्यक्षा जोएल कोहे ने कहा कि मकसद कलाकारों के अधिकारों को एक रुकावट के रूप में नहीं बल्कि कलाकारों रचनात्मक क्षेत्र और सांस्कृतिक अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के माध्यम के रूप में देखना है बढ़ती आबादी की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए भविष्य के लिए बेहतर बुनियादी ढांचा तैयार करना और इसके लिए अफ्रीका के आर्थिक विकास को आगे बढ़ाना इन्हीं मुद्दों पर सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सिंपोजियम 2026 में चर्चा हुई सम्मेलन का छठा संस्करण 20 से 25 अगस्त तक दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन में आयोजित किया गया मॉरिशस के राष्ट्रीय बुनियादी ढांचा मंत्री अजय गणेश ने भी इसमें हिस्सा लिया सम्मेलन में अफ्रीका में बुनियादी ढांचों के विकास से जुड़े कई प्रतिनिधि शामिल रहे इस सम्मेलन और मॉरिशस के लिए इसके महत्व पर मंत्री अजय गणेश ने बात की है विवरण है याचना मिश्रा
4: D'une permette moi visite un grand plan de transvestation en Sud-Afrique.
2: दक्षिण अफ्रीका में एक बड़ी फर्म का दौरा में कर पाया जहां वेस्ट वाटर पर फिर से काम करके उसे ट्रीट करके उसे पीने योग्य बनाया जाता है नेटवर्क में फिर से जोड़ा जाता है हम टेक्नोलॉजी के बारे में सीख पाए हैं मैंने क्रॉस बॉर्डर यानी सीमाओं से परे जाकर सहयोग पर बात की कि किस प्रकार हम विकास परियोजनाओं में एक दूसरे की मदद कर सकते हैं ऊर्जा क्षेत्र के बारे में भी हमने बात की मैं दक्षिण अफ्रीका के मंत्री द्वारा आमंत्रित था सारा खर्च वहन उन्होंने किया
4: मुझे
0: नेपाल के उत्तरी इलाके में भीषण बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 675 हो गई है। राहत और बचाव अभियान अभी भी जारी है, इसलिए

मृतकों की संख्या और बढ़ सकती है। लापता लोगों में 517 विदेशी नागरिक, बिजली घरों और परियोजनाओं में काम करने वाले 937 कर्मचारी, नेपाली सेना के 45 जवान, 40 पुलिसकर्मी और सीमा शुल्क विभाग के 29 अधिकारी शामिल हैं। भारी बारिश के बाद पहाड़ी इलाकों में अचानक आई बाढ़ से कई बस्तियां तबाह हो गई हैं और जरूरी बुनियादी ढांचों को भी भारी नुकसान पहुंचा है। प्रभावित इलाकों में लापता लोगों की तलाश जारी है। अंत में चलिए जानते हैं कि मौसम का हाल कैसा रहेगा। मॉरिशस में तेज हवा और ऊंची समुद्री लहरों की चेतावनी जारी है। ये चेतावनी सोमवार 31 अगस्त सुबह 10 बजे तक लागू रहेगी। मस्करविंस के दक्षिण में पाए जाने वाले उच्च दबाव के क्षेत्र के कारण देश में तेज हवा के साथ ठंड का असर बना हुआ है। अगले 24 घंटों में बीच बीच में बादल घिरे रहेंगे, खासकर पूर्व दक्षिण और ऊंचे इलाकों में रुक रुक कर बारिश हो सकती है। तापमान सामान्य से कम रहेगा। ऊंचे इलाकों में दिन का तापमान 17 से 20 डिग्री सेल्सियस और दूसरे इलाकों में यानी तटवर्ती इलाकों में 23 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच। रात में ऊंचे इलाकों में तापमान 13 से 15 डिग्री सेल्सियस और समुद्र किनारे 16 से 18 डिग्री सेल्सियस के बीच। हवा दक्षिण पूर्व से 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। कुछ जगहों पर हवा के तेज झोंके 90 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकते हैं। लोगों को हवा में उड़ने वाली चीजों से बेहद सावधान रहने की सलाह दी गई है। ऊंची इमारतों और दूसरे ऊंचे ढांचों पर काम करने से बचें। खुले रास्तों पर गाड़ी चलाते समय भी खास सावधानी बरतें। समुद्र बेहद खराब रहेगा। प्रवाल रेखा के बाहर दक्षिण पश्चिम से आने वाली लहरें 4 से 6 मीटर ऊंची हो सकती हैं। ऊंचे ज्वार के समय बड़ी लहरों के कारण खासकर पश्चिम और दक्षिण के निचले तटीय इलाकों में पानी भरा आ सकता है। मछुआरों, नाव चलाने वालों और आम लोगों को समुद्र में नहीं जाने की सख्त सलाह दी गई है। ऊंची लहरों के समय समुद्र किनारे जाने से भी बचें। सूर्योदय सुबह 6:20 पर, सूर्यास्त शाम 6:06 होगा।

0: तो देश विदेश और मौसम संबंधी जानकारियों के साथ हम पहुंच गए हैं इस बुलेटिन के अंत में। तकनीकी सहायक हमारे साथ रहे कादिर, उनको हम धन्यवाद देते हैं। बढ़ते हैं शोक समाचारों की ओर।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBCRadio.tv, NBCRadio.tv.
0: शोक समाचार सुनिए। मोसलमो गफरी पाइमे 45 साल के 45 years old के मोहम्मद जाहिद हलमत इंतकाल कर गए हैं। उनका जनाजा आज दिन के सवा बारह बजे उन्हीं के मकान पाए से निकाल कर दफनाने के लिए पाए का कब्रिस्तान ले जाया जाएगा। फ्यूनरल टुडे एट क्वार्टर पोस्ट नून। स्कूल लेन सेंचुरी बी एम ए 93 साल की 93 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती सगुना येसु की मृत्यु हो गई है। लोग उन्हें हीरा के नाम से अधिक जानते थे। उनकी अर्थी आज सुबह तीन बजे उन्हें के मकान सेंचुरी से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सेंसिलिया की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 3 PM। मोरेल रोड रिवियर जुरान पॉमे 71 साल के 71 ईयर्स ओल्ड के श्री रामेश्वर संत की मृत्यु हो गई है। लोग उन्हें पंडित संत के नाम से अधिक जानते थे। उनके अर्थी आज दिन के ढाई बजे उनकी पत्नी इंदिरा संत के मकान उन्हीं के घर रिवियर जुरान पॉ से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए इलाके की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 2:30 PM। नेहरू रोड बेल्टिया फिनिक्स में 85 साल की 85 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती दवंती चटरी जी की मृत्यु हो गई है। पैदाइश नाम रुकमिन। उनकी अर्थी आज दिन के 2 बजे उनके बेटे परसराम के मकान फिनिक्स से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए आली ब्रियों की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 2 PM। जगनाथ रोड रिवियर जुरान पॉमे 88 साल के 88 ईयर्स ओल्ड के प्रेमलाल रामधनी की मृत्यु हो गई है। लोग उन्हें प्रेम के नाम से अधिक जानते

0: थे उनके अर्थी आज दिन के 11 बजे उनके बेटे सुदेश रामधनी के मकान जगन्नाथ रोड रिव्या जुआ पौसे उठाकर अंतिम संस्कार के लिए लावांचियो की शमशान भूमि ले जाया जाएगी क्रिमेशन टुडे एट 11 AM रूट रॉयल मुसलमान सेंट अंदरमी रॉयल रोड मुसलमान सेंट अंद्रे में 78 साल की श्रीमती आदमा अपादू की मृत्यु हो गई है। पैदाइश नाम गेंगुडू, लोग उन्हें कामसेल के नाम से अधिक जानते थे। उनके अर्थी आज दिन के 12:30 बजे उन्हीं के मकान मुसलमान सेंट अंद्रे से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए तियामिनिस त्रियोले की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुडे हाफ पास नून। 15 कैंस कंटों वाकुआ में 64 साल की 64 years old के श्री सुनीदत्त जोनकी की मृत्यु हो गई है। लोग उन्हें अनिल के नाम से अधिक जानते थे। उनके अर्थी आज दोपहर बाद दो बजे उन्हीं के मकान कैंस कंटों वाकुआ से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए थ्वामा मेल की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 2 PM आनंद रोड लेस्पेरेंस ट्रिबुशे में 74 साल की 74 years old की दुलारी सिबालक की मृत्यु हो गई है। उनके अर्थी आज दिन के 1:30 बजे उन्हीं के मकान लेस्पेरेंस ट्रिबुशे से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए इलाके की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 1:30 PM मारीजानी कैट्रोबोन में 79 years old के श्री बिसुनत हरदोल की मृत्यु हो गई है। उनके अर्थी आज दोपहर 3 बजे उन्हीं के मकान कच्चा से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बोशों की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 3 PM मेजुनेट रोड रिवा दिसोंगी में 69 years old की 69 साल की हिराउती पतट रॉय की मृत्यु हो गई है। पैदाइश नाम जमन, लोग उन्हें वीना के नाम से अधिक जानते थे। उनके अर्थी आज दिन के 1 बजे उनके पत्नी अशोक कुमार के घर रिवेदिजोंगी से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए तायाक की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 1 PM रेजिडेंस लाशो मेबर्ग में 67 years old के श्री शिव सुंदर सालिग्राम तिवारी की मृत्यु हो गई है। श्री शिव सुंदर सालिग्राम तिवारी की मृत्यु हो गई है। उनके अर्थी आज दिन के 2 बजे उन्हीं के मकान में बर्ग से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए तोंबो में बर्ग की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 2 PM यंगटाउन ग्रांबोआ में 48 साल की 48 years old के कपिल देव राम सरन की मृत्यु हो गई है। लोग उन्हें संतोष के नाम से अधिक जानते थे। उनके अर्थी आज दिन के 1:30 बजे उनकी माँ एनुराधा किस्तु मोहन्ना के मकान से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए ग्रांबोआ की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 1:30 PM इकसठ साल के कुपुसामी मामुंदी की मृत्यु हो गई है। वे पाल्मा कैट्रोबोन के रहने वाले हैं। लोग उन्हें मनोज के नाम से ज़्यादा जानते थे। उनकी अर्थी आज सुबह के 10 बजे मुगा पेचित रिविया से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए गांधी पाल्मा की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 10 AM मुसलमान दीप रिवर ओलिविया बेलेरिविया सश में 75 साल की 75 years old की एलामा रामिया की मृत्यु हो गई है। लोग उन्हें कमला के नाम से अधिक जानते थे। उनके अर्थी आज दिन के 11 बजे उन्हीं के मकान बेलेरिविया उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बोशों की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 11 AM 93 साल की 93 years old की अनी रघु की मृत्यु हो गई है। लोग उन्हें अनी के नाम से ज़्यादा जानते थे। पैदाइश नाम लक्सिमो, वे कैट्रोबोन की रहने वाली थी। उनके अर्थी आज सुबह के 10:30 बजे एलियनसन बोबासा से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए थ्वामा मेल की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 1:30 AM प्रिंस देगाल रोजिल में 93 साल की 93 years old की श्रीमती सुकिया जीवलल की मृत्यु हो गई है। पैदाइश नाम चतु, उनकी अर्थी आज दिन के 2 बजे उन्हीं के मकान रोजिल से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए फिनिक्स की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 2 PM शोक में डूबे इन सभी परिवारों के प्रति हमारी गहरी सहानुभूति है।
1: News on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.
2: Chillax with Radio Masti,
3: your number one Bollywood radio station.

0: Chillax with Radio Musty.
1: गुड मॉर्निंग सभी को, 7:05 हो चुके हैं और रिलैक्स का तीसरा घंटा शुरू हो गया है सिर्फ रेडियो मस्ती पर। संडे का दिन, वीकेंड का आखिरी दिन और देखिए धीरे धीरे सूरज भी आसमान में अपनी जगह बना चुका है। सुबह शायद बारिश हुई थी, हवा में अभी भी वी कैन फील वो ठंडक, थोड़ी सी ब्रीजी है आउटसाइड, लेकिन मौसम अब काफ़ी अच्छा सा हो गया है, सुधर गया है। और हमने इस घंटे की शुरुआत की रुकी रुकी गाने के साथ है, एकदम संडे मॉर्निंग वाली फील के साथ है। आज का संडे सिंपल रखिए, अच्छे गाने, अच्छे लुक और अच्छा मूड, कल से फिर नया हफ्ता, नई भागदौड़, तो आज थोड़ा सा आराम से। और दोस्तों, अगस्त का आखिरी संडे है, सोचिए बस दो दिन पहले हम कह रहे थे अगस्त शुरू हुआ है और अब अगस्त हमसे कह रहा है चलता हूँ, लेकिन म्यूजिक और मस्ती अभी ख़त्म नहीं होने वाली, बिकॉज वी हैव समथिंग ग्रेट फॉर यू। एज यूजुअल आपको पता ही है हम ऐसे ही खाली हाथ नहीं आते हैं, लेकर आते हैं बहुत सारे ग्रीज, बहुत सारे गेम्स, गिफ्ट्स आपके नाम हमेशा। तो चलिए एक गेम अभी हम खेलते हैं एंड दिस गेम इज बाय योर विनर्स। जी हाँ, अगर आप खेलते हैं MBC रेडियो के साथ आपको मिल सकता है एक गिफ्ट वाउचर वर्थ 500 रुपीज ऑफर्ड टू यू बाय विनर्स। एंड यहां पर हम आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, ध्यान से सुनिए। अंटिल 6 सितंबर व्हाट इज द नॉर्मल प्राइस एंड द प्रमोशनल प्राइस ऑफ गैस स्टोव 805 फ्री F40? Until 6 September, what is the normal price and the promotional price of gas stove 805 free F40? चलिए

0: आप हमें ही ये बताइए सही जवाब पूरे नाम और पूरे पते के साथ है. एंड विशिंग यू ऑल गुड लक.
1: Chillax with Radio Masti,
2: your number one Bollywood radio station.

Chillax with Radio Musty. आशा जी की आवाज में ये खूबसूरत गाना डेडिकेटेड टू ऑल आवर लवली लिसनर्स. और यहाँ पर एक गेम हमने खेला था आपके साथ. क्वेश्चन था, अंटिल 6th ऑफ सितंबर व्हाट इज द नॉर्मल प्राइस एंड द प्रमोशनल प्राइस ऑफ गैस स्टोव 805 free F40. एंड लेट मी टेल यू दैट नॉर्मल प्राइस है 2000 रुपीज, जबकि प्रमोशनल प्राइस है 999 रुपीज 95 सेंट. और यहाँ पर सही जवाब देकर हमारे लकी विनर बने हैं मिस्टर प्रवेश मलुआ. एंड आप है कैथोबोन से, सो कंग्रेचुलेशंस आपको, आपने सही जवाब दिया है. एंड आपको मिल रहा है 500 रुपीज़ का गिफ्ट वाउचर ऑफर टू यू बाय विनर्स. आपको ये भी हम बता दें दैट ये वाउचर आप तक का पोस्ट किया जाएगा, इसलिए बार बार कहते रहते हैं कि पूरे नाम और पूरे पति के साथ जवाब भेजना चाहिए. सो कंग्रेचुलेशंस. और भी बहुत सारे गेम्स हैं, तो जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया और नहीं जीत पाए, कोई बात नहीं, आप फिर से ज़रूर ट्राई कर सकते हैं.

0: Chillax with Radio Musty.
1: Game time. iMedia brings to Mauritius Mukhtar Shah, the voice of Mukesh, for two very special shows on Friday 4th and Sunday 6th September at the Kudon Arts Centre. Mukhtar Shah, who hails from Ahmedabad, Gujarat, India, has been enthralling audiences worldwide with his remarkable Mukesh-like voice. And this khas concert mein Mukhtar Shah pesh karenge legendary singer Mukesh ji ki timeless melodies, jahan music lovers ko sunne ko milenge Indian cinema ki 50s, 60s aur 70s ki unforgettable masterpiece. और खास बात ये है कि मुख्तर शाह के साथ हमारे अपने रिप्यूटेड मोशन को सिंगर्स वर्षा रानी, विजय सर और विशाल मंगरू जी भी परफॉर्म करेंगे, अकॉम्पनीड बाय आवर फाइनेस्ट म्यूजिशियंस अंडर द म्यूजिकल डायरेक्शन ऑफ विजय मुनिस्वामी. और एमबीसी रेडियो आपको दे रहा है पार्टिसिपेट करके टिकट से जीतने का मौका है. जी हाँ, अगर आप पार्टिसिपेट करते हैं हमारे गेम में तो आपको मिल सकता है एक एंट्री टिकट फॉर द कंसर्ट ऑन 4th सितंबर 2026 ऑफर्ड बाय आई मीडिया. एंड यहाँ पर हम आपको टेस्ट करेंगे कि आप मुकेश जी को कितना जानते हैं. तो आज का सवाल है, क्या खूब लगती हो ये खूबसूरत गाना, क्या खूब लगती हो ये खूबसूरत गाना किस फिल्म का है? बस आपको यही हमें बताना है. और अगर आप जीत जाते हैं तो हमने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि आपको मिल सकता है एक एंट्री टिकट फॉर द कंसर्ट ऑन 4th सितंबर 2026 एंड दिस इज ऑफर्ड टू यू बाय आई मीडिया. चलिए सही जवाब पूरे नाम और पूरे पते के साथ ऑन 5499-1294. गुड लक टू ऑल ऑफ यू.
0: Chillax with Radio Musty.
2: Your number one Bollywood radio station.

0: Chillax with Radio Musty.
1: तो यहाँ पर बहुत सारे सही जवाब

0: अब हमें मिले लेकिन एज यू नो एक ही विनर चाहिए और लकी ड्रॉ के बाद हमें मिल गए हैं हमारे लकी विनर्स। तो सबसे पहले हम फिर से रिपीट करते हैं क्वेश्चन जो हमने पूछा था, क्या खूब लगती हो ये खूबसूरत गाना किस फिल्म का है? और सही जवाब है धर्मात्मा। जी हाँ, धर्मात्मा मूवी से है ये गाना। और यहाँ पर दिया किश्तू, आपने सही जवाब दिया है और आप है बॉम्बू से, सो कंग्रेचुलेशंस आपको। आपने पार्टिसिपेट किया है और आप जीत चुकी है एक एंट्री टिकट फॉर द कंसर्ट ऑन 4th सितंबर 2026 ऑफर्ड बाय आई मीडिया। और आपको ये बता रही है कि आई मीडिया ब्रिंग्स टू मॉरिशस मुख्तर शाह द वॉइस ऑफ मुकेश फॉर टू शोज ऑन फ्राइडे 4th एंड संडे 6th सितंबर एट कुडा ऑटिस सेंटर। मुख्तर शाह अहमदाबाद गुजरात इंडिया में वहाँ पर जा चुकी है एंड उनके जो कंसर्ट है बहुत ही खूबसूरत है, तो वहाँ पर वो कुडाउट सेंटर में वो परफॉर्म करेंगी द लेजेंडरी सिंगर मुकेश जी के टाइमलेस गाने। जी हाँ, बहुत ही खूबसूरत गाने आपको सुनने को मिलेंगे, 50s, 60s एंड 70s के अनफॉरगेटेबल मास्टरपीसेस ऑफ इंडियन सिनेमा। और उनके साथ हमारे रिप्यूटेड इमर्शन को सिंगर्स वर्षा रानी बिसे सर और विशाल मंगरू भी परफॉर्म करेंगे। तो चलिए, आप लकी विनर बन गए हैं। हु विल लिसन टू द मोस्ट पॉपुलर सॉन्ग्स ऑफ मुकेश जी, लाइक मैं पल दो पल का शायर हूँ और दोस्त दोस्त ना रहा इन द वॉइस ऑफ मुख्तर शाह। कंग्रेचुलेशंस। एंड ये वाउचर यानी ये एंट्री टिकट आपको कलेक्ट करना है 2 सितंबर से पहले, आपको कलेक्ट कर लेना चाहिए। एंड आप आ सकती है अपनी आईडी के साथ। एंड अगर आप नहीं आ पा रहे कोई बात नहीं, आप किसी और को भेज भी सकते हैं। मंडे से फ्राइडे तक आप आ सकती हो एंड फ्रॉम मॉर्निंग 9:30 बजे से दोपहर 3 बजे तक। और जो लोग नहीं जीत पाए दिल छोटा ना करें, बहुत सारे और भी गेम्स है। फॉर नाउ वो एक मैशअप सुनते हैं।
1: नीले नीले अंबर पर चांद जब आए प्यार बरसा।
2: पुराने गाने सिर्फ सुर और अल्फाज नहीं होते,

0: रेडियो मस्ती।
1: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
2: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। चलते

0: Sports Magazine is brought to you by Quality Deco, the floor expert.
1: Sports News.
2: Radio Musti in the mix.
3: घड़ी मिलाते चलिए 7:35 जी हाँ, तो चलिए हम सुनते हैं कि आजकल स्पोर्ट्स जगत में क्या कुछ हो रहा है। वेरी गुड मॉर्निंग आपको अरविंद।
4: गुड मॉर्निंग आपको। गुड मॉर्निंग RM2 लिसनर्स, द लेटेस्ट फ्रॉम द स्पोर्ट्स वर्ल्ड। वैसे ठंडी हवा है और सोने का मन कर रहा है ना, दो दो का मन। तो प्रीमियर लीग में भी इस सीजन लिवरपूल अभी तक दो दो मूड में है। न्यूकासल यूनाइटेड के खिलाफ स्कोर 2-2, नॉटिंघम फॉरेस्ट के खिलाफ भी 2-2। कल 2-2 से कब 2-2 से जागेंगे द रेड्स। इस बार एनफील्ड रोड में लिवरपूल मैच ड्रॉ कर गया 2-2। नॉटिंघम फॉरेस्ट के लिए एंडोय ने स्कोर किया, फिर इसाक ने इक्वलाइज किया, उसके बाद गिब्स वाइट पेनाल्टी पर एक गोल और लिवरपूल का नया खिलाड़ी म्यूनोज ने इक्वलाइज किया। बॉस एंटोनी इराओला बहुत आग बबूला, बहुत नाराज रहा जब लिवरपूल ने इक्वलाइज किया 1-1 इसाक का एक गोल। तब लिवरपूल 3 सब्स्टिट्यूशन करने जा रहा था। फोर्थ ऑफिशियल टिम रॉबिन्सन सब्स्टिट्यूशन बोर्ड को लेकर परेशान था, ठीक नहीं कर पा रहा था। इस बीच नॉटिंघम फॉरेस्ट को एक पेनाल्टी मिली और लिवरपूल 2-1 से पीछे। सब्स्टिट्यूशन करने में देरी हुई, नतीजा नॉटिंघम फॉरेस्ट का गोल। टेक्नोलॉजी के इस युग में ट्रिपल सब्स्टिट्यूशन के लिए 3 मिनट देर करना गलत है। अगर सब्स्टिट्यूशन समय पर होता, फोर्थ ऑफिशियल कर पाता, तो शायद पेनाल्टी नहीं होती। इसलिए कोच इराओला नाराज हो रहा है और स्काई स्पोर्ट्स और बीबीसी स्पोर्ट्स के फुटबॉल पंडित इसे जायज मान रहे हैं। वैसे मैच के अंत में जाते समय गोलकीपर अलिसन ने भी ये जो रिप्लेसमेंट बोर्ड है उसको लात से मारा। होता है, अभी आगे क्या होगा देखेंगे। टोटनहम हॉटस्पर की फिर से हार हुई, इस बार न्यूकासल यूनाइटेड स्पर्स के घर में जाकर तोड़ा मरोड़ा। 2-0 की हार। नए खिलाड़ियों पर 300 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग खर्च करने के बावजूद टोटनहम हॉटस्पर बॉटम ऑफ द टेबल अंतिम स्थान पर हैं। एंटोनी एलांगा और योआन विसा स्कोरर रहे। नए सीजन के दूसरे ही मैच में फैंस मैच पूरा होने से पहले जाने लगे, तब टोटनहम हॉटस्पर के लिए समस्या

गंभीर हैं। डेजेबी पर दबाव अभी से ठीक नहीं है। कल के अन्य दो मैचों के नतीजे, बोर्नमुथ 1 एवर्टन 1, कोवेंट्री 0 हल सिटी 1, हल सिटी की दूसरी जीत है ये लगातार। आज चेल्सी वर्सेस ब्राइटन 5 बजे, फिर लीड्स, ब्रेंटफोर्ड, संडरलैंड, फुलहाम और मैनचेस्टर यूनाइटेड अपने ओल्ड ट्रैफर्ड में होगा इप्सविच के खिलाफ 7:30 किक ऑफ। कल एस्टन विला वर्सेस आर्सेनल। अभी के लिए दो मैच खेलकर केवल दो सिटी के पास फुल पॉइंट्स हैं, 6 अंक, मैनचेस्टर सिटी और हल सिटी। न्यूकासल यूनाइटेड और एवर्टन के पास 4-4 अंक, लिवरपूल के पास 2 अंक। स्पेन के ला लीगा में लेवेंटे 5, 32, रियल सोसिएदाद 2, स्पैनियल 1, सेविला 1, एटलेटिको मैड्रिड 3। इसमें बकेना का डबल, फिर बाइना का डबल, फिर लुकमान का ही गोल। जर्मनी के बुंडेसलीगा में बोरुशा डॉर्टमुंड की जीत 2-0 से हैम्बर्ग एसवी पर। एल्वर्सबर्ग 3, बायर 04, एफसी कोल्न 3, होफनहाइम 2, माइंस 0, पादेबोन 0, फिर आरबी लेप्ज़िग 3, बोरुशा मोनकेनगलादबाख 0, यूनियन बेर्लिन 3, फ्रैंकफर्ट 3। इटली के सेरी आ में यूवेंटुस 2, पार्मा 0, फ्लोरेंटिना 0, फ्रोजिनोने 3, मोन्ज़ा 2, उडिनीज़े 3, सासुएलो 2, टोरिनो 1। फ्रांस के लीग 1 में लियों 1, ले हावर 1, स्ट्रासबूर 2, लांस 1, ओसेर 1, एंजे 3, ब्रेस्ट 2, टूलूज़ 2, लोरियन 1, 3-2। फ्रांस न्यूज, सनसनी खबर, कोडी गाकपो को साइन करने के लिए मैनचेस्टर सिटी सीरियस हैं, बातचीत शुरू हो गई है, कंक्रीट इंटरेस्ट कहा जा रहा है। गाकपो को बेचा जा सकता है क्योंकि ब्राडले बाकोला को साइन करने के लिए लिवरपूल 123 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग देने के लिए तैयार है। पर खबर है बेचने से पहले लिवरपूल और एक खिलाड़ी को साइन करना चाहेगा, ब्राइटन के यंगकुम्बा मिंते और क्रिस्टल पैलेस से इस्माइल असार पर नजर है। पर फुटबॉल एक्सपर्ट और लिवरपूल के बहुत फैंस गाकपो को बेचने के फैसले को रिस्की मान रहे हैं। एक तो गाकपो का अच्छा परफॉर्मेंस चल रहा है, पिछले मैच में 1 गोल और 1 असिस्ट, और ऊपर से नए खिलाड़ी टिक पाएंगे या नहीं, अफेयर स्वीव। ट्रांसफर बाजार मंगलवार को बंद हो जाएगा। स्कॉटिश प्रीमियरशिप में सेल्टिक की जीत 2-1 से फाल्कर्क पर, हार्ट्स 2, सिट जॉनस्टन 1, किलमोनोक 0, डंडी यूनाइटेड 4। इंग्लैंड के लीग चैंपियनशिप में डर्बी 0, स्वानसी 3, मिडिलसब्रो 3, वेस्ट ब्रोमिच आल्बियन 1, वुल्व्स 4, स्टोक 1, ब्लैकबर्न 1, क्वींस पार्क रेंजर्स 2, बोल्टन 0, लिंकन 1, ब्रिस्टल सिटी 2, पोर्ट्समूथ 1, कार्डिफ 2, शेफील्ड यूनाइटेड 2, चार्ल्टन ने प्रेस्टन को 1-0 से हराया, नोविच 4, बर्नली 1, साउथहैम्पटन 5, मिलवॉल 1, वाटफोर्ड वेस्ट हैम के बीच मैच ड्रॉ। क्रिकेट, लॉर्ड्स में इंग्लैंड वर्सेस पाकिस्तान टेस्ट मैच में कल बारिश के कारण खेल रोका गया। अभी इंग्लैंड की टीम 357 यानी 357 रन से आगे है। आज फोर्थ डे, चौथे दिन का खेल, इंग्लैंड के पास 3 विकेट है, ज्यादा से ज्यादा रन स्कोर करके डिक्लेयर करना चाहेगा। साइकिलिंग, किम्बर्ले कुपियना क्लासिक लोरियन रेस पूरा नहीं कर पाई, फिनिश लाइन से 50 किलोमीटर पहले वो क्रैश कर गई, रिस्क न लेते हुए वो रुक गई। इधर वीमेंस क्रिकेट में वीमेंस एशिया कप के दूसरे मैच में कल श्रीलंका की महिला टीम ने 9 विकेट से यूएई को हराया। आज शाम इंडिया वीमेन वर्सेस थाईलैंड वीमेन। मॉरिशस में क्रिकेट, आइलैंड क्रिकेट एक्स्ट्रावागेंजा सीजन 4 के लिए कल एएमजी पैंथर्स ने टोमास कुक टाइगर्स को 8 विकेट से हराया। आज सुबह 9 बजे एपीपी लियोपार्ड्स वर्सेस वन हेल्थ जगुआर्स और शाम 1 बजे कॉन्टिनेंटल चीताज वर्सेस टोमास कुक टाइगर्स। इस आइलैंड क्रिकेट एक्स्ट्रावागेंजा का ग्रैंड फाइनल संडे 13 सितंबर को मापू के एसएसआर नेशनल क्रिकेट ग्राउंड में होगा। क्षेत्रीय स्तर पर रीजनल न्यूज, रोशनोई स्पोर्ट्स क्लब फुटबॉल टूर्नामेंट के लिए आज सतानिक रोशतेया का मुकाबला ओलंपिक ब्रामस्थान से होगा 3:30 बजे, फिर मोसेलमा सेंट एंड्रे के सैटरडे रोवर्स फुटबॉल क्लब की ओर से आज एक गाला मैच होगा। आज 4 बजे सैटरडे रोवर्स वेटरन कैडेट्स का स्वागत करेंगे बहुत मान और सम्मान के साथ। सो दैट्स इट द लेटेस्ट फ्रॉम द स्पोर्ट्स वर्ल्ड। चलते चलते प्रमुख खबर आपको फिर से बता दें, लिवरपूल को अभी तक जीतना नहीं आता, 2 मैच 2-2 ड्रॉ, अभी तक सो रहे हैं।

0: उधर टोटनहम हॉटस्पर दो दो बार टूट गया अंतिम पोजीशन पे। मैनचेस्टर यूनाइटेड क्या करेगा आज ओल्ड ट्रैफर्ड में, ये देखेंगे। हैव ए वंडरफुल टाइम लिसनिंग रेडियो मस्ती, टेक केयर, बाय बाय।
1: थैंक यू सो मच अरविन।
2: दिस मैगजीन वॉज ब्रॉट टू यू बाय क्वालिटी डेकोर, द फ्लो एक्सपर्ट।
3: Quality Déco finit ouvert ce nouveau showroom à Flac juste à côté MCB. Pour célébrer sa grande ouverture, la méga promo au plein de produits, morbe à partir de 25 roupies, granit à partir de 1000 roupies, lavabo, roche pour mur, robinetterie, sanitaire, toilette, baignoire et beaucoup les autres encore. Pas rater sa méga promo, viens découvrir un nouveau showroom de Quality Déco, Boulet Blanc à côté MCB, Flac, numéro téléphone 413 87 55 ou 413 10 53.
4: Sondero.

0: Chillax with Radio Masti.
1: Well, यहाँ पर कुछ बर्थडे मैसेजेस वी हैव, तो चलिए सबसे पहले हम व्हाट्सएप की ओर बैठते हैं और यहाँ पर हैप्पी संडे विश कर रहे हैं, एक मैसेज यहाँ पर आया है एंड हैप्पी बर्थडे टू

0: भाभी गुसिया सियुलाल जो इंग्लैंड में रहती है. एंड आज आपका जन्मदिन है, सो हैप्पी बर्थडे. आपको बहुत बहुत सारा प्यार एंड गुड विशेस कमिंग फ्रॉम ससुर सदन, सासू माँ किरण, सिस्टर इन लॉ है प्रीति एंड गिरिशा प्रशांत फ्रॉम नोवेल फॉन्स. वैसे नोवेल फॉन्स में बहुत ही ठंड होती है, सो आपको हम विश करते हैं वंस अगेन अ वेरी हैप्पी बर्थडे. एंड ऑल्सो आज जन्मदिन है जानी आसरिया का जन्मदिन, सो हैप्पी बर्थडे आपको भी. बहुत सारी बेस्ट विशेज आपको, बहुत सारे बेस्ट विशेज और लव कमिंग फ्रॉम सरिका, वीमा, पूनम, विश्वामित, कमलेंड और आपके सिक्स ग्रैंड किड्स भी है. हम भी हैं यहाँ पर विशिंग यू हैप्पी हैप्पी बर्थडे. एंड ऑल्सो आज आंटी आशा का जन्मदिन है. आशा आंटी आपको हैप्पी हैप्पी बर्थडे. बहुत सारा प्यार कमिंग फ्रॉम योर होल फैमिली, स्पेशली फ्रॉम काजल. एंड यहाँ पर काजल ने एक स्पेशल गाने की रिक्वेस्ट की है जो हम जरूर चलाएंगे, क्यों नहीं. तो ये गाना स्पेशली गुज़ आउट टू आंटी, आंटी आशा आपके नाम ही जाता है.
1: नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, ट्यून इन टू द वेरी बेस्ट Radio Masti, your number one beloved station.

एंड इसी गाने के साथ इस टाइम फॉर मी टू से बाय टू ऑल ऑफ यू. चलिए, बहुत सारा प्यार मिला और आई होप आपने गाने एंजॉय किए. सो हमारी मुलाकात होगी बहुत ही जल्द. बाय बाय, टेक केयर एंड कीप स्माइलिंग. हैप्पी संडे सभी को.

0: subscribe to Radio Masti.
1: The time is brought to you by
2: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
1: And Rapid Peanut Butter. Creamy and crunchy premium peanut butter.
0: Radio Masti.
3: North, South,
0: 103.5.
3: East, West,
0: 96.4.
3: Center,
0: 99.4.
4: RM2 Radio Musti.
0: Radio Musti.
4: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti.
5: Time check 8 baj rahe hai.
6: Fajr ke theek 8 baje tak suna Bhojpuri mein samachar. नमस्ते. मॉरिशस में तेज हवा और ऊंचा समुद्री लहर के चेतावनी सोमवार बिहान 10 बजे ले जारी रही. कुछ जगह हवा की झोंका 90 किलोमीटर प्रति घंटा ले पहुंच सकेला. समुद्र में लहर 4 से 6 मीटर ले ऊंचा हो सकेला. लोगन के समुद्र में नहीं जाए और सीमा पर ही सावधानी रखे के सलाह देवल गलबा. फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन में जानकारी बाहर जाए के शक पर अंदरूनी जांच शुरू कर रल गलबा. काला धन के गो मामला में गो संदिग्ध के पास एफसीसी के आधिकारिक कागज मिलल बा. जांच अधिकारी लोगन के लैपटॉप पर जांच खातिर ले लेवल गलबा. अब पता लगावल जाए कि कागज संदिग्ध ले कैसे पहुंचल. बैंक ऑफ मॉरिशस इंटरनेट पर निवेश के गो फर्जी योजना से लोगन के सावधान कर लेबा. इमे गवर्नर डॉक्टर प्रिसिला मथुरा ठाकुर के एआई से बनावल तस्वीर इस्तेमाल हुआ था. बैंक साफ बोलेबा कि ई योजना के कोनो मंजूरी नहीं बा. धोखा के शिकार लोगन से पुलिस में शिकायत करे के कहल गल बा. सीमा के गंभीर नियम तोड़े वाला लोगन के खिलाफ सरकार कड़ा कदम उठावे की तैयारी में बा. नवा बिल में गंभीर मामला में गाड़ी जब्त करे और शराब चाहे नशीला पदार्थ के असर में गाड़ी चलावे पर ही कड़ा सजा के प्रस्ताव बा. मॉरिशस के दो युवा टीम अक्टूबर महीना में सिंगापुर के स्टेम रेसिंग वर्ल्ड फाइनेंस में हिस्सा ले. सरकार सेंटिस्प्री कॉलेज के सीएसओ वेलोसिटी के आर्थिक मदद देवता रेसिंग वोटेक्स भी मॉरिशस के प्रतिनिधित्व करी. सैन ब्रांडो में अब इंटरनेट के सुविधा मिल गल बा. इससे वहां काम करे उला लोगन खातिर मॉरिशस के संपर्क करी आसान हुई. परियोजना खातिर एमटेल के चुनल गल बा. दूसर देश की खबर में नेपाल के उत्तरी इलाका में भयंकर बाढ़ से मरे वाला लोगन की संख्या बढ़ के 675 हो गल बा. सैकड़ों लोगन अभी भी लापता हवन जा. भारी वर्षा से कई गो बस्ती तबाह हो गल बा और री खोज बचाव के काम जारी बा. तो ये रहा हमनी के भोजपुरी में समाचार. हमनी के सुनला जा. धन्यवाद.
0: Your news on NBC Play, NBC Play, NBCRadio.tv, NBCRadio.tv. Your news on NBC Play, NBC Play, NBCRadio.tv, NBCRadio.

दीदिया ए दीदिया पीस दीदी पीस मसाला तजा तजा तका दी बा हरिन के मच्छी के पीस दीदी पीस।

0: RM2. Feel the musty.
1: It's the weather broadcast with winners.
2: On est tous winners.
3: मॉरिशस में तेज हवा और ऊंची समुद्री लहरों की चेतावनी जारी है। ये चेतावनी सोमवार 31 अगस्त सुबह 10 बजे लागू रहेगी। मस्करीन के दक्षिण में बने मजबूत उच्च दबाव के क्षेत्र के कारण देश में तेज हवा के साथ ठंड का असर बना हुआ है। अगले 24 घंटों में बीच बीच में बादल छाए रहेंगे, खासकर पूर्व दक्षिण और मध्य के ऊंचे इलाकों में रुक रुक कर बारिश हो सकती है। तापमान सामान्य से कम रहेगा। ऊंचे इलाकों में दिन का तापमान 17 से 20 डिग्री सेल्सियस और दूसरे इलाकों में 23 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। रात में ऊंचे इलाकों में तापमान 13 से 15 डिग्री और समुद्री किनारे 16 से 18 डिग्री सेल्सियस के बीच होगा। हवा दक्षिण पूर्व से 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी। कुछ जगहों पर हवा के तेज झोंके 90 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकते हैं। लोगों को हवा में उड़ने वाली चीजों से सावधान रहने की सलाह दी गई है। ऊंची इमारतों और दूसरे ऊंचे ढांचों पर काम करने से बचें। खुले रास्तों पर गाड़ी चलाते समय भी खास सावधानी बरतें। सूर्योदय 6:20 पर और सूर्यास्त शाम 6 बजे होगा।
1: Your weather forecast on RM2.
0: Radio Musti.
4: La foire Bilbil Kadi retourne Côte Winners.
5: Bilbil Kadi de retour Côte Winners.
6: Du samedi 29 août au lundi 31 août, le shampoing ou après shampoing ultra doux à 179,95 € et le lait entier en poudre Farmland de 1 kg à 259,95 €. Découvrez notre brochure sur notre page Facebook et sur winners.mu.
4: Nous ramène, nous la
7: On est tous winners!
0: RM2
2: Radio Musty.
0: Feel the Musty.
1: Timeless Tarka.
0: RM2
1: Timeless Tarka.

0: US Tarka.
1: RM2
2: बजकर 14 मिनट हो गया है सबका वेलकम ऑन रेडियो मस्ती स्पेशल थैंक यू टू आवर लवली रिया शी वाज हियर टू गिव अस द वेक अप कॉल आज का चिलक्स शो जो था 8 बजे तक और अभी वो जा रही है घर वापस सो विश यू अ सेफ ड्राइव बैक तो यहां पर बिल्कुल शुरुआत हो गई है फॉर अनदर शो अनदर संडे मॉर्निंग वाला जर्नी और ये तो है हमारा और आपका टाइमलेस सतर का आप सुन रहे हो रेडियो मस्ती राइट और मैं हूँ आपकी अपनी दोस्त हंसनी और आज है संडे का दिन यानी कि आराम का दिन मस्ती का दिन और सबसे जरूरी देर तक सोने का दिन राइट बिल्कुल सही हमने कहा ना लेकिन एक सवाल है जो लोग अभी तक सो रहे हैं उन्हें हमारी आवाज सुनाई दे रही है अगर ये सच है तो ये रविवार का जो मूड है एकदम मस्त हो गया है शायद रेडियो भी तकिए के नीचे रखकर आप सुन रहे होंगे तो हम सभी का वेलकम करते हैं वैसे कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो सुबह सुबह उठकर चाय बना चुके हैं और न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं और सोच रहे हैं कि आज का पूरा दिन आराम करेंगे ये भी बिल्कुल आपने सही सोचा है हफ्ते भर के लिए कितना सारा काम हो गया है एंड इट्स संडे इट्स वीकेंड चलिए एक साथ हम लेंगे वो स्पेशल ब्रेक यहाँ पर मुलाकात हमारी होगी इन दिस म्यूजिकल वर्ल्ड और संडे का ये दिन जो आया है 30th of August 30 अगस्त है आज तो यहाँ पर कई हमारे फ्रेंड्स आज अपने स्पेशल दिन मना रहे हैं जन्मदिन के साथ ही हम बधाइयाँ शेयर करेंगे आप लोगों के लिए सो आप भी शेयर करें अपने मैसेजेस को ताकि हमको भी पता चले कि क्या कुछ हो रहा है क्या कुछ है स्पेशल या फिर ऐसे ही यू वांट टू शेयर समथिंग जो दिल कहना चाहता है सो हंसनी इज हियर एंड हम तो बिल्कुल तैयार है टू लिसन टू यू आपकी बातों को सुनने के लिए ऑन 5491294 आपके मैसेजेस आपके प्यारे डेडिकेशंस के लिए तो सबका वेलकम इन आवर शो जो है आपका और हमारा टाइमलेस तड़का
0: टाइमलेस तड़का
1: RM2
0: टाइमलेस तड़का

आज की सुबह है और आराम की, खुशियों की और उन छोटी छोटी बातों की जो हमारे चेहरे पर मुस्कान ले आती है. दिस इज आवर संडे मॉर्निंग वाला शो. इट्स टाइमलेस सतरका, जहां पर हम लेकर आएंगे डेफिनेटली वो वंडरफुल सॉन्ग, ताकि जो सुबह है वो कुछ और खिल जाए. और रविवार की सुबह का सबसे खूबसूरत हिस्सा क्या है आपको पता है? वेल, बिना अलार्म का सोना और अलार्म बंद करके फिर से सो जाना. कई लोग आज फुल आराम कर रही है, क्योंकि हफ्ते भर के लिए कितना सारा भागदौड़ होता है, कितनी सारी भागा दौड़ी होती है, लेकिन आज का ये दिन जो आया है, इट्स लाइक फुल डे एट रेस्ट. सो बिल्कुल लोनी के साथ हम रहेंगे टू प्ले सम ग्रेट सॉन्ग्स, जिससे थोड़ा सा सुकून, थोड़ा सा और प्यार आ जाए. दिस इज आवर शो जो चलेगा यहाँ पर हमारे साथ दिन के 12 बजे तक. कुछ कहना आप चाहेंगे, मे बी समथिंग वेरी स्पेशल. इट्स संडे मॉर्निंग, कुछ फ्रेशनेस है, पॉजिटिव एंड हैप्पी वाइब्स है ऑल अराउंड. सो इसके लिए हम करेंगे आप लोगों का इंतजार 5499 1294 पर. एंजॉय द शो, एंजॉय टाइमलेस तड़का.

RM2. Radio Musty. In the mix. Radio

0: RM2
1: Radio Musty.
0: Feel the Musty.
2: Le sport, c'est de l'énergie, de la sueur, des sacrifices.
3: Milo, libère ta force.
4: Riche en lait, cacao et orge maltée, Milo, libère ta force.
5: Nestlé, good food, good life.
6: Thank you for connecting with Radio Musty, your यहाँ पर टाइम हो चला है to have a quote of the day. आप वह बदलाव बनाइए जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं. अगर हम दुनिया को बेहतर बनाना चाहते हैं तो शुरुआत दूसरों से नहीं खुद से ही करनी होगी. Quote by the great Mahatma Gandhi.
2: Le sport, c'est de l'énergie, de la sueur, des sacrifices.
3: Milo, libère ta force.
4: Riche en lait, cacao et orge maltée, Milo, libère ta force.
5: Nestlé, good food, good life.

0: एस दरगाह
1: RM2
2: अगर मस्त है ये गाने मदमस्त है ये रेडियो स्टेशन तो और क्या चाहिए इस वीकेंड को और भी जबरदस्त बनाने के लिए हेलो गाइस कभी कभी ऐसा होता है जिंदगी को बस एक छोटी सी उम्मीद की जरूरत होती है ना कल तक जो रास्ता बंद लग रहा था आज वही रास्ता मंजिल की तरफ ले जा रहा है रुकी हुई जिंदगी से घबराए मत वक्त कभी एक ऐसा मोड़ ले आता है वक्त कभी एक जैसा नहीं रहता ना बस भरोसा रखिए अच्छे दिन अचानक दस्तक दे सकते हैं एक छोटी सी खुशखबरी ने पूरी जिंदगी को बदल दी है ऐसा होता है तो जस्ट और बाकी का जो होगा बस देखा जाएगा रविवार के इस खूबसूरत सुबह बस इतना कहना है अगर आपकी जिंदगी अभी रुकी लग रही है तो उम्मीद मत छोड़िए आपकी कहानी का अलग पन्ना बहुत खूबसूरत हो सकता है सो यहाँ पर जो पेशेंस है जो धैर्य है वो बस मेंटेन आप कर लीजिए कभी एक इंसान मिलता है और कभी एक मौका और कभी एक फैसला और अचानक वही जिंदगी को बिल्कुल और भी इंटरेस्टिंग दिख जाएगी और अचानक वही जिंदगी जो कल तक ठहरी हुई थी फिर से दौड़ने लगेगी सो ट्रस्ट द यूनिवर्स यहाँ पे गुड वाइब्स के साथ हंसनी है टू कीप मोटिवेटिंग यू टू कीप एनकरेजिंग यू कभी ऐसा होता है कि एक छोटा सा वर्ड एक छोटा सा लफ्ज आपकी पूरी जिंदगी को बदल सकती है राइट सो वी आर हियर विद द बेस्ट डोज ऑफ म्यूजिक एंटरटेनमेंट यहाँ पर जारी है कुछ अच्छी अच्छी बातें हो रही है और साथ में मैसेजेस की बरसात भी हो रही है वैसे कई जगहों पर इस समय कुछ बारिश हो रही है कुछ बरसात हो रही है सो इसी मौसम में टेक द ग्रेट प्रिकॉशंस ताकि जो आपकी सेहत है वो बस ऐसे ही ठीक रहे और कई जगहों पर कल बहुत ठंड हुई थी रेली हो कि आज बहुत ठीक हो आप और तबीयत बिल्कुल ठीक है अदरवाइज़ जो गर्म चाय कॉफ़ी है गर्म दूध है ये सब प्लीज़ आप ले लीजिए एंड टेक गुड केयर ऑफ योर हेल्थ सेहत का अच्छे से ख्याल आप रखें सो वी आर हियर लेकर दिस मैजिकल डोज़ ऑफ म्यूजिक जो बस आपके इस दिन को और भी मदमस्त बनाने वाला है एंड वी आर हियर टू मेक इट अ हैप्पी संडे तो हम आपके साथ हैं जी अगर आपके हाथों में है चाय की प्याली या फिर गरम गरम कॉफी आपने तैयार बस कर ली है सो कम ऑन लेट अस एंजॉय दिस कॉफी टाइम साथ साथ
0: टाइमलेस तड़का
1: RM2
0: टाइमलेस तड़का

0: RM2, feel the musty.
1: Yes, we are all connected with our Radio Musti radio station, जो आपका और सबका फेवरेट रेडियो स्टेशन है. और इस समय वी आर ट्यूनिंग फॉर द बेस्ट ऑफ सॉन्ग्स जो बस आप एंजॉय कर रहे हो इन अ टाइमलेस सदर का. चलिए इसे

0: के गाने के साथ हम बढ़ेंगे ठीक 9 बजे के समाचारों की ओर और इसके बाद हंसनी विल बी बैक विद द सेकंड आवर ऑफ द शो. कहीं मत जाइए, ऐसे ही साथ निभाते रहिए. वी आर हियर टू एंटरटेन यू टू एंजॉय दिस लवली वीकेंड.
1: लाइक दैट.

0: Welcome to RM2
1: Radio Musti.
2: North, South,
1: 103.5,
2: East, West,
1: 96.4,
2: Center,
1: 99.4.
0: RM2 Radio Musti.
1: Radio Musti.
0: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti.
3: Good morning to you all. I check your time. It's subah ke 9 baje hain. सुनते हैं संक्षिप्त समाचार आस्था के साथ आपको नमस्कार
4: नमस्कार 9 बजे के समाचारों में स्वागत है आप सभी का मौसम में तेज हवा और ऊंची समुद्री लहरों की चेतावनी जारी है यह चेतावनी सोमवार सुबह 10 बजे तक लागू रहेगी देश में आज मौसम काफी ठंडा और तेज हवा वाला रहेगा पूर्व दक्षिण और ऊंचे इलाकों में बीच-बीच में बारिश होने की भारी संभावना है हवा दक्षिण पूर्व से 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी जिसके झोंके कुछ इलाके में 90 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकते हैं समुद्र बेहद खराब रहेगा प्रवाल रेखा के बाहर 4 से 6 मीटर तक ऊंची लहरें उठ सकती हैं सड़क पर गंभीर नियम तोड़ने वालों के खिलाफ सरकार अब और सख्ती की तैयारी में है मंत्रिमंडल ने रोड ट्रैफिक अमेंडमेंट बिल 2026 को राज्यसभा में पेश करने की मंजूरी दे दी है बिल में गंभीर मामलों में गाड़ी जब्त करने और कुछ मामलों में चालक को गाड़ी चलाने से रोकने का प्रावधान है शराब या नशीले पदार्थों के असर में गाड़ी चलाने सड़क पर हिंसक व्यवहार और गैर कानूनी रेसिंग के लिए भी सजा कड़ी करने का प्रस्ताव है फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन में जानकारी बाहर जाने के शक को लेकर अंदरूनी जांच शुरू की गई है एफसीसी के मुताबिक ड्रग्स की तस्करी से जुड़े काले धन के एक मामले में एक संदिग्ध के पास कमीशन का एक आधिकारिक दस्तावेज मिला है उसके बाद इसके बाद मामले से जुड़े जांच अधिकारियों के लैपटॉप जांच के लिए ले लिए गए हैं बैंक ऑफ मॉरिशस ने इंटरनेट पर चल रही निवेश की एक फर्जी योजना को लेकर लोगों को सावधान किया है इस समय लोगों को पैसा लगाने के लिए लुभाने के मकसद से बैंक ऑफ मॉरिशस की गवर्नर डॉक्टर प्रिसिला मथुरा ठाकुर की एआई से बनाई गई तस्वीर और एक कारोबारी की तस्वीर का इस्तेमाल किया जा रहा है बैंक ऑफ मॉरिशस ने साफ किया है कि इस योजना को उसकी या देश की किसी भी बैंक की मंजूरी नहीं है अगर कोई व्यक्ति इस धोखाधड़ी का शिकार हुआ है तो उसे तुरंत पुलिस में करने की सलाह दी गई है अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खबरों में नेपाल के उत्तरी इलाके में भीषण बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 675 हो गई है राहत और बचाव अभियान जारी है इसलिए मृतकों की संख्या और बढ़ सकती है भारी बारिश के बाद पहाड़ी इलाकों में अचानक आई बाढ़ से कई बस्तियां तबाह हुई हैं और जरूरी बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा है इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए
1: On NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.

0: Shameless Tadka.
1: RM2.
2: संडे की शांत सुबह है, खुला आसमान और हाथ में है छाया। इससे बेहतर सुकून और क्या हो सकता है। वैसे कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी ये फील होता है आसमान को देख के कि हमारी छोटी सी दुनिया से भी ऊपर कोई खूबसूरत कहानी लिखी जा रही है। सो फलक की तरफ हम देखते हैं तो बस किसी की याद आती है, एंड वी आर हियर टू मेक इट लाइक फन, मो मस्ती हम ऐड करेंगे टू मेक इट वंडरफुल संडे। किसी की याद आ रही है, किसी से दूर है अभी तो दूरियों को बस पार कर लेंगे। ये तो है रेडियो मिस्टी का कमाल, ऑलवेज हियर, ऑलवेज साथ साथ, जहां पर भी आप कनेक्टेड हो, जैसे भी हो हालात, वी आर हियर टू मेक इट लाइक अ लविंग। अगर है कोई दर्द, दिल कुछ भारी है तो उनको हल्का बनाने के लिए बिल्कुल कोशिश यहाँ पर हम करेंगे। दिस इज आवर म्यूजिकल शो, जहाँ पर ये अपनापन है, प्यार है, ये दोस्ती है आपकी। थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग विद रेडियो मस्ती। संडे वाला दिन है, इट्स वीकेंड, और इसी को सेलिब्रेट करने के लिए आपके साथ जुड़ गई है हंसनी, और मुलाकात बस रंगीन होती जाएगी जब तक आपका साथ रहेगा। तो कुछ ही पल में हम लेकर आएंगे आपके मैसेजेस, जहाँ पे आपने कुछ टाइम तो निकाला है ना। आपके मैसेजेस जो आ गए हैं, आ रहे हैं और आते रहेंगे, ये उम्मीद हम रखेंगे डेफिनेटली। सो वेटिंग फॉर यू 105.4 FM 1294, जहाँ पर आपके मैसेजेस आएंगे टू सेलिब्रेट दिस संडे वाला दिन। इट्स आवर टाइमलेस तड़का, ब्रिंगिंग यू सम ग्रेट सॉन्ग्स जो आपको पसंद आए। और ये जो संडे वाला दिन आया है, मे बी कई लोग जा चुके हैं काम पर, या फिर ऑलरेडी काम पर जुड़े हुए हैं, या फिर अभी तैयार हो रही हैं टू गो टू वर्क। सो मिलकर हम आपको विश करेंगे बोन क्वाश।
0: Timeless Tadka.
1: RM2.
0: Timeless Tadka.

40 years old. Happy birthday, Mummy Ji. Lots of wishes here to Geeta Ji from Pawan. Ritika, Pooja and Priya, the good lens say I here to share the wishes. Thank you very much. Good morning, Hansani. Good morning to you too. Yahan par gana hai for Anusha Sampat ke liye, celebrating her birthday aaj. Anusha, happy wala birthday aapko. Wishes coming aapki mama Aarti ki taraf se, papa hai Sibiraj, didi Pooja, Ashna, bhai Prashant and Jiju Kevin, Keshav aur dadi maa hai aapki Surya Mati, chacha Arvind, chachi Esha aur behan hai Janvi aur NS Florent ke sab parivaron ki taraf se hum Asha Sampat ko wish karenge. Happy birthday to you. And I've got Vidusha Kusau Singh from Sebastopol. Aapka welcome hai, my dear. Aapko ek Raksha Bandhan wala gana chahiye aapke bhaiyon ke liye. Ye to hum koshish karenge to play it aapke liye. Thank you for sharing your feelings. Hello to all the team. Good morning. Just back from the market. ये तो है संडे वाला काम. कई लोग तो बाजार जाते हैं खरीदारियां करने के लिए और गत पीमा ब्रेड चाय ये तो सब इंक्लूड हो जाता है इसके बाद, राइट? और बरसात के साथ एंजॉयिंग द लवली सॉन्ग्स. हाँ जी, बिल्कुल. कई जगहों पर कुछ बारिश हो रही है. मौसम बहुत ही ठंड है, तो प्लीज़ टेक मैक्सिमम प्रिकॉशंस. आप सब सेफ रहे, ये हमारे गुड विशेस हैं. आई हंसनी, गुड मॉर्निंग टू यू. गुड मॉर्निंग माई डियर, वेलकम इन द शो. चाय हो गई है और ऐसे मौसम में अब वापस कंबल के नीचे जाना आप चाहती हूँ. ये तो है, आज आराम फरमाने का दिन जो आया है, लेकिन काम तो करना पड़ेगा. यस, साफ सफाई तो करनी पड़ेगी. ये तो है संडे वाला काम, राइट? सो विशिंग यू कुराज. हम तो है ही आपके साथ. जो एनर्जी लेवल है उनको बस थोड़ा सा और बढ़ाएंगे. थैंक यू फॉर कनेक्टिंग विद द बेस्ट ऑफ सॉन्ग्स. इट इज आवर म्यूजिकल शो जो बस आप लोगों के लिए तय है. हम सफर हम बन जाएंगे. दिस इज आवर संडे टाइम. इट्स टाइमलेस. तड़का ऑन रेडियो मस्ती.

0: तड़का
1: RM2
2: संडे मॉर्निंग का ये म्यूजिकल शो चल रहा है. इट्स आवर टाइमलेस तड़का जहां पर हंसनी आपके साथ बिल्कुल दे रही है. एंड चलिए अब मैसेजेस टाइम हो गया है 5499124 पर. लेट्स गो एंड चेक आउट किसने किसको याद किया है. डेडिकेशन फॉर मामा गीता के लिए सेलिब्रेटिंग हर

0: Express Tadka.
1: RM2.
2: हमें लगातार आपके खूबसूरत मैसेज मिल रहे हैं, इसके लिए दिल से आपको थैंक यू तो कहना चाहेंगे। दिस इज आवर म्यूजिकल शो, संडे वाला दिन, वी आर हियर टू सेलिब्रेट वीकेंड आपके साथ। हम सुनी है, इट्स ऑलरेडी 9:35 इन द मॉर्निंग, और बिल्कुल जहां पर भी आपका साथ जारी है, आप सभी का वार्म वेलकम। वैसे पूरे हफ्ते का इंतजार सिर्फ इस दो दिन के लिए रहता है ना, वीकेंड आते ही लगता है अब जिंदगी थोड़ी सी अपनी है, कुछ आराम फरमाने का टाइम हमको मिल जाएगा। वैसे वीकेंड का सबसे अच्छा हिस्सा ये है कि परिवार के साथ बैठकर कुछ टाइम बिताने का वक्त मिलता है। मे बी आप जाएंगे नानी माँ के यहाँ, दादी माँ के यहाँ, जहाँ पर कुछ पुरानी बातें याद आएंगी, डेफिनेटली सम चाइल्डहुड मेमोरीज, बचपन की वो खास यादें वापस आएंगी। लेकिन बी केयरफुल, और आज तो बस चेतावनी जारी है तेज़ हवाओं की, और मौसम जो है कुछ ख़राब है, कई जगहों पर बारिश और ठंड भी बहुत बस बढ़ रही है। तापमान में जो गिरावट आई है इसकी वजह से ठंड बिल्कुल महसूस हो रही है। सो ट्राई टू अवॉइड सी साइड, जहाँ पर समाचार में हमने सुना है यहाँ पर न्यूज़ जो मौसम के बारे में था, समुद्र खराब होने वाला है। सो बेटर डू नॉट वेंचर, कोई प्लान नहीं बना है अगर अब तक, सो यू कैन स्टे इंडोर बच्चों के साथ, परिवार के साथ कुछ क्वालिटी वाला टाइम बिताने के लिए, राइट? सच में खुशियाँ हमेशा बड़ी चीज़ों में नहीं होती हैं, कभी कभी एक कप चाय या फिर अपनों का साथ ही इसमें काफ़ी होता है टू फील हैप्पी, राइट? सो वी आर हियर आपके साथ टू मेक इट फन, जहाँ पर भी यू आर कनेक्टिंग विद द बेस्ट मिक्स ऑफ म्यूजिक। हेलो टू अनुषा लविशा फ्रॉम बंतिया। वैसे काफ़ी धमाल उन्होंने की है यहाँ पर रिसेप्शन में, और आई गेस पैरों में अभी कुछ दर्द है, काफ़ी डांस किया है ना, टेक सम रेस्ट। कुछ काम बाकी है घर की साफ सफाई, और ऊपर से आपके छोटे से बेबी जय और दिलान, और आपकी प्यारी से मम्मा के लिए भी एक सुपर गाना तो बनता है ना। हैव अ नाइस वीकेंड एंड कीप एंजॉयिंग द शो अप टिल द एंड। एंड बढ़ेंगे मोथा ब्लॉश की तरफ, रामदिकल परिवार के वहाँ चलते हैं, जहाँ पर फुल वॉल्यूम के साथ कनेक्टिंग विद द टाइमलेस तड़का। हेलो टू नितेश, प्यारे मामा के लिए एक गाना बिल्कुल चल जाएगा आपके लिए, फॉर योर लवली मॉम, और सभी रामदिकल परिवार के लिए भी। सो आप भी अपने परिवारों को याद करें, हंसनी है आपके साथ साथ, एंड अभी का इंतजार हो रहा है, यस, ऑन 549-1294।
0: Timeless Tadka.
1: RM2.
0: Timeless Tadka.

0: Chris Thodica.
1: RM2.
2: The magical songs on Radio Masti to make it a happy weekend. चलिए जुड़ जाइए हमारे साथ on Radio Masti और बिल्कुल है आपके साथ साथ जो चले आए आपके messages, आपके प्यारे words. Good morning to everyone. Now we have it for Anita, जो Ficon Flux से इस समय connected है, enjoy कर रही है ठंडे ठंडे मौसम और साथ में है the lovely songs. Wishing you happy Sunday, my dear, and thank you for connecting. Happy 35th birthday to Akash Chetan Mansook of Bamboo. हैप्पी बर्थडे टू यू जी, हमेशा आपका साथ रहता है, आपके मैसेजेस आते हैं, दिल से जो अप्रिसिएशन आप पहुंचाते हो इसके लिए थैंक यू. विशेज आपके लिए लट्स ऑफ लव एंड ब्लेसिंग्स कमिंग फ्रॉम मामा प्रीति, फ्रॉम पापा क्रिस, आपकी बहन उर्वशी एंड विश्नी, जीजू विनेश, नेफ्यू केहान, नीस नव्या और पूरे मनसुख परिवार जो बॉम्बू से हैं. आई हैव टू विश आकाश चेतन मनसुख अ वेरी हैप्पी वाला बर्थडे. गॉड ब्लेस यू एंड स्टे हैप्पी ऑलवेज. विशिंग हैप्पी बर्थडे टू वर्षा दिबिदयाल जो आज अपनी 47 years मना रही है. विशेस कमिंग फ्रॉम दीदी वेदना जो बबासे से है एंड रोजबर्ग की रहने वाली बर्थडे गर्ल के लिए वी हैव गॉट ऑल दी हैप्पी विशेस. अच्छे अच्छे गाने चल रहे हैं हंसनी, दैट्स नाइस, थैंक यू फॉर अप्रिशिएटिंग. यहाँ पर गाना है पति आतिश के लिए और साथ में है आपके दो बच्चे आकाश एंड अर्नव. आप हो अनु फ्रॉम रिवियर जुपस्ट, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर लव एंड फीलिंग्स. और रिवियर जुपस्ट के जितने भी परिवार जुड़े हुए हैं सभी का वेलकम. हाई ग्रेट संडे प्ले लिस्ट है, थैंक यू सो मच दीदी नम्रता को हैप्पी बर्थडे. एक अच्छा सा गाना उनके लिए भी हो जाए. सो जितने भी हमारे दोस्त आज अपने स्पेशल दिन मना रहे हैं, चलिए धूमधाम से मनाएंगे हैप्पी हैप्पी बर्थडे.

0: to Radio Misty.
1: The time is brought to you by
2: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
1: And Rapid Peanut Butter. Creamy and crunchy premium peanut butter.
0: Radio Musti.
3: North, South,
4: 103.5.
3: East, West,
4: 96.4.
3: Center,
4: 99.4.
5: RM2, Radio Musti.
0: Radio Musti.
5: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti.
6: Wish you all a very good morning. Check your time. It is 10 o'clock. चलिए सुनते हैं संक्षिप्त समाचार आस्था के साथ आपको नमस्कार।
7: नमस्कार, 10 बजे के समाचारों में स्वागत है आप सभी का। फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन में जानकारी बाहर आने के शक को लेकर अंदरूनी जांच शुरू हुई है। एफसीसी के मुताबिक नशीले पदार्थों की तस्करी से जुड़े काले धन के एक मामले में एक संदिग्ध के पास कमीशन का एक आधिकारिक दस्तावेज मिली है। इसके बाद मामले से जुड़े जांच अधिकारियों के लैपटॉप जांच के लिए ले लिए गए हैं। अब ये पता लगाया जा रहा है कि ये दस्तावेज संदिग्ध तक कैसे पहुंची और इसके लिए कौन जिम्मेदार है। सीसी का कहना है कि जांच के नतीजे के आधार पर जरूरी कदम उठाए जाएंगे। बैंक ऑफ मॉरिशस ने इंटरनेट पर चल रही निवेश की एक फर्जी योजना को लेकर लोगों को सावधान किया है। इस समय लोगों को पैसा लगाने के लिए लुभाने के मकसद से बैंक ऑफ मॉरिशस की गवर्नर डॉक्टर प्रिसिला मथुरा ठाकुर की एआई से बनाई गई तस्वीर और एक कारोबारी की तस्वीर का इस्तेमाल किया जा रहा है। बैंक ऑफ मॉरिशस ने साफ किया है कि इस योजना को उसकी या फिर देश के किसी भी बैंक की मंजूरी नहीं है। अगर कोई व्यक्ति इस धोखाधड़ी का शिकार हुआ तो उसे तुरंत पुलिस में शिकायत करने की सलाह दी गई है। मॉरिशस में तेज हवा और ऊंची समुद्री लहरों की चेतावनी जारी। ये चेतावनी सोमवार सुबह 10 बजे तक जारी रहने वाली है। देश में आज मौसम काफी ठंडा और तेज हवा वाला होने वाला है। पूर्व दक्षिण और ऊंचे इलाकों में बीच बीच में बारिश होने की भारी संभावना है। हवा पूर्व से 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी जबकि कुछ जगहों पर तेज होंगे 90 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकते हैं। लोगों को सावधानी बरतने को कहा गया है। समुद्र बेहद खराब रहेगा, लहरें 4 से 6 मीटर तक पहुँच सकती है। सैंबोंदों में संचार के सेक्टर में एक नया कदम। लंबे समय से वहां मॉरिशस से संपर्क के लिए मुख्य रूप से सैटेलाइट फोन और रेडियो का सहारा लिया जाता रहा है। अब सैंबोंदों में इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध हो गई है। इस परियोजना के लिए कॉन्ट्रैक्ट एमटेल ने हासिल किया है। समझौते पर हाल में हस्ताक्षर किए गए। विदेश स्तर पर नेपाल में कुदरत की तबाही के बीच जिंदगी बचाने की जंग जारी है। पहाड़ों से आया पानी, बर्फ, पत्थर और कीचड़ का तेज सैलाब अपने रास्ते में घर, सड़कें, पुल और गाड़ियां बहा ले गया। कई परिवार अपनों की तलाश में हैं और बड़ी संख्या में लोग अभी भी लापता हैं। ये तबाही बुधवार को नेपाल तिब्बत सीमा के पास एक ग्लेशियर का बड़ा हिस्सा टूटने से शुरू हुई। मुश्किल की इस घड़ी में भारत ने नेपाल की मदद की ओर मदद बढ़ाई है। राहत सामग्री के साथ डॉक्टर और सुरंगों में बचाव के विशेषज्ञ भी भेज दिए गए हैं। प्रभावित इलाकों में फंसे लोगों, खासकर सुरंगों में लापता कर्मचारियों तक पहुंचने की कोशिशें जारी हैं। इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। बढ़ते हैं शोक समाचारों की ओर।
8: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.
7: जगन्नाथ रोड रिविया जुरान पामी 88 साल के 88 साल के श्री प्रेमलाल रामधनी श्री प्रेमलाल राम

0: ठनी की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के 11 बजे उनके बेटे सुदेश रामधनी के मकान खिविया चौपा से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए लावांचिया की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 11 AM। स्कूल लेन सेंचुरी बी एम ए 93 साल की 93 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती सगुना येसु की मृत्यु हो गई है। लोग उन्हें हीरा के नाम से ज्यादा जानते थे। उनकी अर्थी आज सुबह तीन बजे उन्हीं के मकान सेंचुबिया से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सेंसिलिया की शमशान भूमि ले जाए जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 3 PM। रॉयल रोड मोसेलमान सेंट एंड्रे में 78 साल की 78 ईयर्स ओल्ड की आदमा अपादू की मृत्यु हो गई है। पैदाइश नाम गेंगुडू, लोग उन्हें कमसेल के नाम से अधिक जानते थे। उनकी अर्थी आज दिन के 12:30 बजे उन्हीं के मकान मोसेलमान सेंट एंड्रे से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए तेमिनिस त्रियोली की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 12:30 PM। शोक में डूबे तीनों परिवारों के प्रति हमारी गहरी सहानुभूति है।
1: RM2 Radio Musti. Feel the Musti.

0: Tadka.
1: RM2.
2: दस बजकर 11 मिनट और सभी का हम ऑफकोर्स स्वागत करना चाहेंगे ऑन रेडियो मस्ती। शुरुआत हो गई है द थर्ड आवर ऑफ अ टाइमलेस तड़का। वैसे अगर आप अभी हमारे साथ हैं तो दिल से आपको शुक्रिया, और अगर अभी अभी जुड़े हुए हैं तो आपका भी बहुत स्वागत। संडे के ये जो दिन आया है, इट्स लाइक अ वेरी स्वीट मॉर्निंग आप लोगों के लिए। धीरे धीरे तो आगे बढ़ रही है, लेकिन मूड एकदम फ्रेश है, एकदम सेम, एकदम फ्रेश एंड हैप्पी वाला जो मूड है छाया हुआ है। तो बस उनको मेंटेन रखने की पूरी कोशिश हम करेंगे आपके साथ और जो हंसनी, और मिलकर हम इस वीकेंड को और भी स्पेशल बनाते जाएंगे। धमाल के साथ कुछ धमाका तो करके जाएंगे। बिल्कुल, चाय का दूसरा कप हो चुका है, वेरी नाइस, मूड एकदम सेट है। और अब बारी है थोड़ी और मस्ती, थोड़ी सी कुछ खास बातें और आपके ढेर सारे मैसेजेस। ये जो संडे वाला दिन आया है, छोटी सी खूबसूरत याद तो बिल्कुल दिलाता है ना। जिंदगी सिर्फ काम जिम्मेदारियां नहीं होती है, बल्कि कुछ आराम फरमाने का टाइम भी होता है। अपने आप को देने के लिए कुछ टाइम ये जरूरी है। सो टेक योर ब्रेक, अपने आप को खुश रखें। मे बी आज कुछ टाइम आपको मिलेगा लेडीज टू लुक आफ्टर योर सेल्फ, यू नो, यहाँ पर होममेड वाले रेमेडीज के साथ एक फेशियल, व्हाई नॉट। कभी कभी रुकना भी ज़रूरी है, कभी आसमान को देखना भी ज़रूरी है, और कभी बिना किसी खास वजह से मुस्कुराना भी ज़रूरी है। तो आज खुद से एक वादा कर लीजिए, कम से कम आज के दिन छोटी छोटी खुशियों को नजरअंदाज नहीं करेंगे, राइट? सो बी विद अस, बी विद रेडियो मस्ती। दिस इज आवर म्यूजिकल शो जो चलेगा दिन के 12 बजे तक हमारे साथ। इट्स अ प्लेजर टू वेलकम एवरीवन।
0: टाइमलेस तड़का,
1: RM2,
0: टाइमलेस तड़का।

0: RM2
1: Radio Musty.
2: Un bon petit déjeuner, c'est le repas le plus important de la journée. Et les vies plus agréables avec un bon dipé à pistache. Rapid Peanut Butter, un produit premium, 0% cholestérol, 0% transfat et riche en protéines. Qui dans ce l'emballage bleu crunchy ou l'emballage rouge creamy ou pour régaler avec Rapid Peanut Butter. Rapid Peanut Butter, a premium product at half the market price. Importé et distribué par RR Rapid Services Limited.
3: Promotion Rak Chabandan côte magasin Sia Collection à Floréal. 50% discount, leur tout nouveau arrivage. Sari, Lehenga, Kulta, Shelvani et Crope Moyer Blanc. Tout à petit prix à partir du 22 août jusqu'à le 6 septembre. Magasin Sia Collection à Floréal, ouvert lundi à dimanche, 10h matin à 6h tantôt. Numéro téléphone 5807-5357.
0: RM2
1: Radio Musty. RM2
4: Radio Musty.
1: Feel the Musty.
5: Fashion tips powered by Halkori Fashion, house of ready-made garments.
6: Timeless Tadka.
1: RM2
7: Welcome on the Radio Musty. Yes, the time hotel I had to have some interesting fashion tips. और आज हमारे प्यारे ladies के लिए, हमारे sweet girls के लिए जो पसंद करते हैं blue saree, अगर आपके wardrobe में है blue saree और आपको लगता है कि maybe आज you can try, या फिर आने वाले दिनों में जो events आने वाले हैं you can try your blue saree, तो इससे related कुछ tips हम आपको दे रहे हैं. स्टाइलिश बनाने के लिए, आपके लुक को और भी एलिगेंट बनाने के लिए बिल्कुल ये टिप्स आप अपना सकते हैं. ब्लाउज के बारे में कुछ टिप्स, सिल्वर, गोल्डन या फिर ब्लैक या फिर वाइट भी, उसी ब्लू शेड के कलर भी आप ब्लाउज के साथ मैच कर सकते हैं. ज्वेलरी की बात करें तो यू कैन सेलेक्ट रॉयल ब्लू. रॉयल ब्लू के साथ सिल्वर ज्वेलरी बहुत ही क्लासी लगती है. नेवी या डॉग ब्लू के साथ गोल्डन ज्वेलरी भी शानदार रहती है. सो इट डिपेंड्स जो आपका ब्लू साड़ी है वो किस तरह से है, रॉयल ब्लू वाला है या फिर नेवी ब्लू, ये तो डिपेंड करेगा. और उसी के साथ आप मैच कर लीजिए अपने ज्वेलरीज को.

0: मेकअप आपके लिए सॉफ्ट मेकअप बिल्कुल सूट लगेगा आपके ब्लू साड़ी पर. सॉफ्ट मेकअप रखें, हल्का आईलाइनर और रोजी लिपस्टिक और हाइलाइटर भी एकदम लाइट वाला. ये जो आपका लुक है वो कुछ ज़्यादा ग्लैमरस लग जाएगा. फुटवेयर सिल्वर या फिर न्यूड और मेटालिक हील्स को भी आप चुन सकते हैं. हील्स पहन सकते हैं तो सैंडल्स साड़ी के साथ आसानी से मैच हो जाते हैं. और बैग आप लेना चाहते हो तो ये भी ठीक रहेगा. छोटा सा सिल्वर वाइट या मेटालिक क्लच लुक को और भी कंप्लीट करेगा आपके एलिगेंट लुक को. बालों को खुले सॉफ्ट कर्ल्स या फिर लो पोनीटेल तीनों जो लुक है, यू कैन हैव अ स्लीक बन एज वेल. तीनों लुक में भी आप ग्लैमरस लगेंगे आपके ब्लू साड़ी के साथ और भी एलिगेंट आप लगेंगे. छोटी सी ब्लैक बिंदी या फिर मैचिंग ब्लू बिंदी एकदम ट्रेडिशनल लुक के लिए बिल्कुल अच्छी रहेगी. For a modern look, a blue sari, you can add your sleeveless blouse and minimal jewelry और बिल्कुल आपका जो weekend वाला look है छा जाएगा. ये थे कुछ छोटे से tips आपको और भी stylish बनाने के लिए on Radio Masti.
1: Fashion Tips was powered by Halkori Fashion, House of Ready-Made Garments.

0: Bez Tadka.
1: RM2.
2: थैंक यू फॉर कनेक्टिंग विद आवर रेडियो मिस्टी. यहाँ पर जो आपका रेडियो है, जो हमारा रेडियो है, वो बस हम सफर बन जाता है कहीं ना कहीं. जहाँ पर आपका साथ जारी रहता है, इट्स ऑलवेज हियर टू सपोर्ट यू, टू लव यू एज ऑलवेज. तो यहाँ पर एक चांस जो रेडियो मिस्टी आपको दे रहा है, इट्स वीकेंड राइट, सो कुछ और मस्ती तो होनी चाहिए क्यों. तो यहाँ पर गेम के लिए बिल्कुल आप रेडी हो जाइए. इट्स टाइम फॉर द गेम, इट्स टाइम फॉर दर्शकों को, जहाँ पर गेम is powered by ticketbox.mu. तो यहाँ पर एक ऐसा सफर जो होने वाला है एकदम झकास आप लोगों के लिए नेक्स्ट सैटरडे को, जहाँ पर वो लाइव आने वाले हैं. He will be live in Mauritius. वो आ रही है. अब the countdown begins. Yes, a great concert जो होने वाला है शान के साथ, a journey filled of melodies, कुछ उनके लाजवाब गानों के साथ उनकी आवाज. And he is the one and only Shan, one of the best playback singer in Bollywood. The Radio Musti RM2 is here to give you this chance to experience this concert live, this magic live. So khelie hamare saath and stand a chance, jahan par aapko diye ja rahi hai ye mauka to win a gold ticket. So aapka jo ticket hai gold wala, bilkul taiyar, ready aap logo ke liye, and you are just connecting with the best of radio. यहाँ पर to give you this chance, वहाँ पर जाने के लिए spectacular Shan live concert, जहाँ पर होने वाला है धमाका at SBI CCPI on 5th of September, यानी कि next Saturday को, as from 8 p.m. proudly organized by ticketbox.mu. यहाँ पर details हमने आपको बता दिया है. Gold ticket किसको बस हासिल करना है, जल्दी जल्दी आइए on Radio Masti. यहाँ पर ये chance, Lady Luck है आसपास, घूम रही है, क्या पता आपके घरों में आ जाए, you never know. अभी के लिए टाइम फॉर द क्वेश्चन. हाउ लॉन्ग हैज शान बीन इन द म्यूजिक इंडस्ट्री? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है. आई नो आपके पास सही जवाब है क्योंकि आप जो सब फैन फॉलोअर्स है शान, राइट. हाउ लॉन्ग हैज शान बीन इन द म्यूजिक इंडस्ट्री? यहाँ पर आपको तीन ऑप्शंस दे रही है. ऑप्शन ए, इज इट 10 ईयर्स, ऑप्शन बी 20 ईयर्स, ऑप्शन सी मोर देन 30 ईयर्स. ऑप्शन ए 10 ईयर्स, ऑप्शन बी 20 ईयर्स, ऑप्शन सी मोर देन 30 ईयर्स. इनमें से सही जवाब क्या है? अगर आपके पास आ गया है बिल्कुल राइट आंसर, सो जल्दी से आप हमको याद करें विद योर नेम्स, फुल डिटेल्स लाइक योर एड्रेस, याम, ये सब प्लीज आप लिखें ताकि आप इन हो जाए फॉर द लकी ड्रॉ, राइट. सो ऑन 5499 1294 पर हंसनी है और पूरे टीम के साथ मिलकर हम आपका इंतजार कर रही है टू विश यू ऑल द वेरी बेस्ट.

0: Seamless तड़का
1: RM2।
2: ये तो definitely best of गाना है जहाँ पर जिंदगी के बारे में बहुत कुछ कहा गया है। ऐसे ही आपको बस यकीन माना पड़ेगा कि वक्त वापस तो नहीं आता है ना, लेकिन खूबसूरत यादें हमेशा साथ रहती हैं। अपना हर दिन अपनों के नाम थोड़ा सा जरूर कीजिए। अपना हर दिन ऐसे जिए जैसे ये जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन हो, क्योंकि आने वाला कल कैसा होगा ये तो कोई नहीं जानता। अपना हर दिन मुस्कुराकर शुरू करो। छोटी छोटी खुशियों को महसूस आप कर लीजिए, क्योंकि असली खुशी इन्हीं पलों में छुपी होती है। तो आपके इस दिन को और भी मदमस्त बनाने के लिए आपके साथ कौन? आपके साथ द वन एंड ओनली रेडियो मस्ती, जो हमेशा आपके साथ ही रहता है, हमारा बेस्ट म्यूजिकल कंपेनियन। तो वी आर हियर। बस आप लोगों के लिए सवाल तो था, यस इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन, हाउ लॉन्ग हैज अशान बीन इन द म्यूजिक इंडस्ट्री। यहाँ पर आपको तीन ऑप्शन दिए हमने, ऑप्शन ए 10 years, ऑप्शन बी 20 years, ऑप्शन सी मोर देन 30 years, और यहाँ पर सही जवाब इट्स ऑप्शन सी मोर देन 30 years। शान द ग्रेट प्लेबैक सिंगर, वो तो इंडियन सिनेमा में है, बॉलीवुड इंडस्ट्री में है, म्यूजिक इंडस्ट्री में है, एंड म्यूजिक इंडस्ट्री एक्चुअली मोर देन 30 years, और बॉलीवुड सिंगिंग में भी उनके काफ़ी साल उन्होंने बिताए हैं। वो द ग्रेट गाने जो वो लेकर आए उनके सभी फैन फॉलोअर्स के लिए, एंड बेशक ये चांस हम आपको मिल रही हैं टू सी हिम लाइव, वो तो आ रही है मॉरिशस अपने लाइव कंसर्ट देने के लिए। तो यहाँ पर गोल्ड टिकट किसको हासिल हुई है, लेट्स गो एंड चेक आउट।

बस है। रागिनी सामू, मेनी कंग्रेचुलेशंस टू यू रागिनी जी, आपकी जीत हो गई है। यस, विद योर राइट आंसर विद मोर देन 30 इयर्स रागिनी सामू जो बुबासे से है, मेनी मेनी कंग्रेचुलेशंस टू यू, आपकी जीत हो गई है माय डियर। और बिल्कुल गोल टिकट के साथ आप देखने जा रही हो द ग्रेट कंसर्ट, शान की आवाज में उनका कंसर्ट जो धमाका होने वाला है नेक्स्ट सैटरडे को 5th of September एट SBICC शुरू होगा आज फ्रॉम 8 PM, प्राउडली प्रेजेंट बाय ticketbox.mu।

0: R.M.2 रेडियो मस्ती श्री श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव 3, 4 और 5 सितंबर 2026 हर शाम 6 बजे से हर कृष्ण मंदिर लॉन्ग माउंटेन 3 दिन का दिव्य उत्सव भक्ति आनंद और कृष्ण प्रेम का रंगों में रंगने का अवसर। भारत से पधारने वाले ऋषिगण मधुर कीर्तन गूंजती मृदंग की ताल और श्री कृष्ण की मनमोहक लीला में सबका एक ही हाल। बच्चों के लिए आनंद मेला, नाटक, नृत्य, गौ पूजा, श्लोक रेसिटेशन, क्विज और स्वादिष्ट महाप्रसाद। अपने परिवार के साथ जरूर आइए और बनिए श्री श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव का हिस्सा।
1: RM2
0: रेडियो मस्ती।
2: नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, ट्यून इन टू द वेरी बेस्ट रेडियो मस्ती।

0: RM2
1: रेडियो मस्ती,
0: फील द मस्ती।
2: शादी या सगाई वाला मौका है तो हमारी बधाइयाँ, हमारी पूरी टीम की तरफ से भी लत सब शुभकामनाएं हैं। हैव अ वंडरफुल एंड ब्लेस्ड वीकेंड। चलिए इसी गाने के साथ हम बढ़ेंगे अब 11 बजे के समाचारों की ओर। इसके बाद बिल्कुल मुलाकात तो बस जारी रहेगी इन द म्यूजिकल वर्ल्ड, जहां पर हम सेट करेंगे एक अलग टाइप का म्यूजिक। दैट विल बी बॉली ब्रंच आफ्टर 11 AM। तो यहां पर साथ निभाते आप जाइए म्यूजिक हम सफर, आप बने रहिए हमारे संग ओनली ऑन रेडियो मस्ती।
3: Power play part 2. Come on girl, I'm ready for you.

0: सुनते हैं संक्षिप्त समाचार आस्था के साथ, आपको नमस्कार।
1: नमस्कार, 11 बजे के समाचारों में स्वागत है आप सभी का। पोटली में प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों के खिलाफ पर्यावरण पुलिस की कार्रवाई, 5 डीजल बसों पर जुर्माना लगाया गया है। 28 अगस्त को जांच के दौरान इन बसों से निकलने वाले धुएं का स्तर तय सीमा से काफी अधिक पाया गया। अधिकतम सीमा 50% है, जबकि पांचों बसों में ये स्तर 92 से 98% के बीच दर्ज किया गया। इन बसों के इस्तेमाल पर रोक का नोटिस लगाया गया है, साथ ही प्रत्येक बस पर ₹10,000 का जुर्माना लगाया गया है। मॉरिशस में फिलहाल तेज हवा और ऊंची समुद्री लहरों की चेतावनी जारी है। चेतावनी सोमवार सुबह 10 बजे तक लागू रहेगी। देश में आज मौसम काफी ठंडा है और तेज हवाएं भी चल रही हैं। पूर्व दक्षिण और ऊंचे इलाकों में बीच बीच में बारिश भी हो रही है। हवा दक्षिण पूर्व से 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है, जबकि कुछ जगहों पर तेज झोंके 90 किलोमीटर प्रति घंटे तक दर्ज किए जा रहे हैं। समुद्र बेहद खराब है, लहरें 4 से 6 मीटर तक उठ रही हैं। फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन में जानकारी बाहर जाने के शक को लेकर अंदरूनी जांच शुरू की गई है। एफसीसी के मुताबिक ड्रग्स की तस्करी से जुड़े काले धन के एक मामले में एक संदिग्ध के पास कमीशन की एक आधिकारिक दस्तावेज मिली है। इसके बाद मामले से जुड़े 5 अधिकारियों के लैपटॉप जांच के लिए ले लिए गए हैं। अब ये पता लगाया जा रहा है कि दस्तावेज संदिग्ध तक कैसे पहुंची और इसके लिए कौन जिम्मेदार है। सड़क पर गंभीर नियम तोड़ने वालों के खिलाफ सरकार अब और सख्ती की तैयारी में है। कैबिनेट ने रोड ट्रैफिक अमेंडमेंट बिल 2026 को राज्यसभा में पेश करने की मंजूरी दे दी है। विधेयक में गंभीर मामलों में वाहन जब्त करने और कुछ मामलों में चालक को गाड़ी चलाने से रोकने का प्रावधान है। नेपाल में कुदरत की तबाही के बीच जिंदगी बचाने की जंग जारी। पहाड़ों से आया पानी, बर्फ, पत्थर और कीचड़ का तेज सैलाब अपने रास्ते में घर, सड़कें, पुल और गाड़ियां बहा ले गया। कई परिवार अपनों की तलाश में हैं और बड़ी संख्या में लोग अब भी लापता बताए जाते हैं। अब तक 700 से अधिक लोगों की जानी चली गई है। इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए, बढ़ते हैं शोक समाचारों की ओर।
2: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.
1: महर्षि लेन कौनसे फ्लैक में, कौनसे फ्लैक में 85 साल की 85 years old की जयरानी बिकी की मृत्यु हो गई है। जयरानी बिकी की मृत्यु हो गई है। वे दिवंगत डॉक्टर कुसिया की माँ थी। उनकी अर्थी आज शाम के 3:30 उन्हीं के मकान फ्लैक कौची फ्लैक से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए इलाके की शमशान भूमि ले जाया जाएगा। क्रिमेशन टुडे एट 3:30 PM। शोक में डूबे इस परिवार के प्रति हमारी गहरी सहानुभूति है।
2: RM2 रेडियो मस्ती।
3: RM2 Radio Musti. Musti.
2: Body Branch. RM2 Radio Musti.

0: collation et pour faire le plein d'énergie. Unique, car Weetabix est le petit déjeuner idéal pour bien commencer la journée. Alors, choisissez Weetabix. Weetabix, pour une meilleure santé de ma famille.
1: RM2 Radio Musti.
2: Bolly Branch RM2 Radio Musti.
3: नमस्कार दोस्तों, विशिंग यू ऑल अ ग्रेट संडे, ग्रेट वीकेंड. संडे का जो दिन आया है, बिल्कुल मदमस्त बनाएंगे इस मूड को, इस म्यूजिकल जर्नी को. वी आर इन द बॉली ब्रंच मूड और अब तक बस इस साथ जारी है हमारा और आपका ऑन रेडियो मस्ती. हंसनी आपके साथ है इस बॉली ब्रंच और कई संडों के लिए यहाँ पर जो हमारे फ्रेंड्स हैं वो तो ना तो अपने ब्रेकफास्ट लेते हैं ना तो लंच, सीधे ब्रंच कर लेते हैं. तो इसके हिसाब से वी हैव गॉट म्यूजिक टू सेट इट राइट. तो बस आप साथ निभाते रहिए. यहाँ पर बॉलीवुड का तड़का होने वाला है, गानों का मजा होने वाला है और आपकी बातें जो भरपूर मस्ती देने वाली है सबको. सो थैंकिंग यू इन एडवांस फॉर जॉइनिंग इन एंड ऑफ कोर्स आपके मैसेजेस जो भरपूर आएंगे यहाँ पर ऑन 5499 1294. ये जो संडे आया है, फैमिली टाइम बना लीजिए. वैसे जो संडे आता है किसी फिल्म की तरह ही नहीं जीनी चाहिए. थोड़ा सा रोमांस, थोड़ी सी कॉमेडी, थोड़ा सा ड्रामा लेकिन टेंशन बिल्कुल नहीं. आज टेंशन की कोई जगह नहीं है, उनको बस भगाते जाएंगे. आज तो सीधे आराम की तरफ हम बढ़ेंगे जो आज काम नहीं करने वाले हैं. सो चिल आउट, रिलैक्स करें घर पर. और बाहर मौसम के बारे में बात करें तो कई जगहों पर कुछ बारिश, कई जगहों पर बहुत ही ठंड महसूस हो रही है. सो बट अगर प्लान नहीं बना है, इंडो आप रहेंगे, परिवार के साथ कुछ वक्त आप बिता लीजिए. अपने आप को देने के लिए कुछ वक्त, ट्राई टू स्पेंड सम क्वालिटी वाला टाइम एंड मेक इट अ स्पेशल वन. इट्स अ वीकेंड स्पेशल एंड रेडियो मस्ती तो है ही आपके साथ टू ऐड सम मोर मस्ती.
2: बॉडी ब्रांच RM2 रेडियो मस्ती.

0: पॉली ब्रांच RM2 रेडियो मस्ती।
1: सही गाना था और स्पेशली उन लोगों के लिए हम लेकर आए हैं बेस्ट विशेस, जो सात समुद्र पार होते हुए भी कितने दूर होते हैं लेकिन स्टिल हमेशा रेडियो मस्ती का साथ वो निभाते हैं। दिल से आपको धन्यवाद। यहाँ पे जो रिश्ता है कुछ ऐसा ही है, दिल का नाता है और जब भी रेडियो ऑन होता है तो ये जो प्यार है बस आप बरसा लेते हो हम सब ऑडियंस पर, हमारी टीम पर और आपके और हमारे बंधन को जो है रेडियो मस्ती। थैंक यू सो मच। अपना हर दिन शिकायतों में नहीं शुक्रिया और मुस्कान में बताइए, अपना हर दिन थोड़ा अपने लिए, थोड़ा अपनों के लिए और थोड़ा उन सपनों के लिए भी रखिए जिन्हें आपने कभी पूरा करने का वादा किया था। राइट, सो वी आर हियर टू विश यू अ हैप्पी संडे। इट्स अ वीकेंड टाइम, ब्रेक लेने का टाइम है और रेडियो मस्ती तो हमेशा है ही आपके साथ टू ऐड ऑन सम मोर मस्ती इस पल में और भी खुशियाँ भरने के लिए। वैसे आज क्या प्लान्स है, आपने क्या सोचा है? घर पर अभी भी कुछ काम हो रहा है, साफ सफाई हो रही है क्योंकि हफ्ते भर के लिए कितना बिजी आप रहते हो काम की वजह से, इतने सारे जिम्मेदारियां जो होती है ना, बच्चों को संभालना, घर को संभालना और आज लाइक इट्स फुल डे साफ सफाई। सबों को आश आपको म्यूजिकल जो सफ़र है बस ऐसे ही तय आप कर लीजिए, एनर्जी लेवल थोड़ा सा और बढ़ाएंगे, अगर आप बताएंगे तो बढ़ाते रहेंगे, वाई नॉट, ये तो हमारा काम होता है टू मेक इट ईजी। और काम जारी है, इट्स ऑलरेडी वर्किंग डे फॉर यू, तो कुराज आपको और बस साथ यूं ही आप निभाते रहिए। वी हैव गॉट सो मच ऑन रेडियो मस्ती, कुछ प्यार, ये अपनापन, ये दोस्ती और आपके मैसेजेस जो आने वाले हैं थोड़ी ही देर में। स्टे कनेक्टेड, यहाँ पर हंसनी हैरा आराम से आपके मैसेजेस को पढ़ने वाली है कुछ ही पल में। राइट, जहाँ पर आपने हमको याद किया है ना, 5491294 पर
0: बॉडी ब्रांच RM2 रेडियो मस्ती।

0: Household and decoration tips brought to you by Lolo Hypermarket.
1: Bolly Brunch RM2 Radio Masti.
2: वेलकम अगेन ऑन रेडियो मस्ती. यस, यहाँ पर कुछ आसान बनाते हैं. अगर आप साफ सफाई कर रही हो तो घर को कैसे सजाएं, यहाँ पर एक छोटा सा, एक नहीं बल्कि दो तीन देंगे ताकि और एक आसान हो जाए आपके लिए तरीका टू मेक इट लुक मोर कम्फी एट होम. सो अगर आपको पसंद है प्लांट्स तो यू कैन ऐड इंडोर प्लांट्स. एक छोटा सा पौधा खाली कोने या खिड़की के पास रख कर कमरे में फ्रेशनेस लाई जा सकती है. सो अगर आप प्लांट लवर हो तो ये बिल्कुल आपके घरों में आप रख सकते हो. एक छोटा सा पौधा अगर आपके आसपास है सो लुक फॉर इट और जल्दी से घर के अंदर आप उनको ले आइए ताकि जो ताजगी है, जो फ्रेशनेस है वो एकदम आ जाए उनके साथ. अगर कशन लवर हो आप, कशन कवर्स को आप बदल सकते हो फ्रॉम टाइम टू टाइम मौसम या त्यौहार के अनुसार. कशन कवर्स बदलना कमरे का लुक आसानी से बदल देता है. और आप यूज़ कर सकते हो लेट्स से सम वार्म लाइटिंग, वार्म टोन्ड लैंप्स या डेकोरेटिव लैंप्स जो होता है ना, डेकोरेटिव लाइट्स अगर आपको पसंद है, हर तरह के मिलते हैं अब. कमरे को कोजी और वेलकमिंग ये तो बिल्कुल बना सकते हैं. लेट्स से डेकोरेट विद मेमोरीज, तो अगर आपको फैमिली फोटोग्राफ्स बहुत है तो ये भी आप ऐड कर सकते हो. फैमिली फोटोग्राफ या ट्रैवल मेमोरीज अगर आप अब्रोड जाते हो और बहुत सारी मेमोरीज जुड़े हुए हैं उन ट्रिप के साथ, तो बिल्कुल ये छोटे फ्रेम्स में आप लगा सकते हो. इससे क्या होगा, इससे एकदम पर्सनल टच आप दे जाएंगे विद योर मेमोरीज. दो या तीन कंप्लीमेंट्री कलर्स को चुने ताकि जो कमरा है आपका एकदम बैलेंस्ड और एलिगेंट लगे. और डाइनिंग टेबल पर, डाइनिंग या सेंटर टेबल पर अगर आपके लेट्स से सालों में आपके डाइनिंग रूम में भी आप लगा सकते हो एक छोटा सा फूलदान. इससे जो आपका कमरा है वो कुछ और लाइवली बना सकता है. सो ये थे कुछ टिप्स, कुछ आसान वाले ताकि जो घर है वो कुछ और फ्रेश दिखे, एकदम क्लासी दिखे. एंड जो घर का फ्लेवर्स है स्वीट होम ये भी आपके घर में रहे हमेशा के लिए.
3: Julien en poudre, Omega 1 kg full cream, Asté desaché, gain and spaghetti en cadeau, pour 10, 399 roupies. Milo sachet 200 grammes à

0: तो बचकर कहां जाएंगे, यहीं पर आना पड़ेगा क्योंकि ये तो है हमारा और आपका रेडियो मस्ती, द वन एंड ओनली राइट पूनम। हेलो जी, वेलकम।
1: हेलो जी, वेलकम। मेरा क्या वेलकम तो मुझे आप सबका करना है। सुबह मॉर्निंग इतनी ठंड में रिया ने किया और उसके बाद आप आ गए और आपने ले लिया चार्ज, और हमारे सारे जो लिसनर्स हैं ना जिनको थोड़ी सी गर्माहट चाहिए थी, आपने वो गाने वो तड़के लगाए हैं जो आज वो चाहते जाते कह रहे होंगे अरे अब मजा आ गया।
0: और पूनम तो आ गई है और वो तो कह रही थी कि सीधे फ्रीजर से आई है।
1: मैं बाहर इतनी ठंड है, मैं क्या बताऊँ आपको। मैं तो आज ऐसे लग रही थी जैसे वो कार्टून होता है ना जोकर चलता हुआ आ रहा है, हैट डाल के, कैप डाल के, ग्लव्स डाल के, जैकेट डाल के, पता ही नहीं चल रहा था, सिर्फ आंखें दिख रही थी।
0: लेकिन वी हैव टू टेक द सेफ्टी प्रिकॉशंस। हां बिल्कुल, ले तो ये लेने चाहिए क्योंकि इतनी ठंड है और कुछ जगहों पर तो बारिश भी हो रही है। पूनम,
1: बारिश भी हो रही है और पता है ये टाइम होता है, एक तो हमारे यहाँ पे पानी के इश्यूज हो रहे हैं तो हमें बॉइल करके पीना है और गला खराब हो जाएगा, फिर वो दवाइयाँ। और फिर मैं कल जब आई ना, जब रात को वापस गई तो नोज रनिंग शुरू हो गया था, तो मुझे लगा भाई गया काम से, तो इसलिए गरम गरम चाय साथ में 5-6 बार पी मैंने।
0: ये बिल्कुल ये ना हो तो ऐसा लगता है कि सब कुछ हो रहा है।
1: बिल्कुल, आप बताओ आप पियेंगे और हमारे लिसनर्स पियेंगे।
0: अच्छा तो हाउ स्वीट हो पूनम, वो तो बना रही है चाय हमारे लिए। हाउ स्वीट हो, यहाँ पर एक म्यूजिकल ब्रेक ले लेते हैं, तब तक मैं एक चाय पी लेती हूँ। पूनम गेटिंग रेडी फॉर आज का बॉली ब्रंच, वो भी तो साथ निभाने वाली है और बिल्कुल शी विल बी हियर अस फ्रॉम नून राइट पूनम, और विद ग्रेट गाने और साथ में इतनी सारी मस्ती होने वाली है, नॉन स्टॉप बातें एंड ऑल, तो सब कुछ यहाँ पर सेट है फॉर अ जबरदस्त वीकेंड।
2: Body Branch RM2 Radio Masti.

जी बिल्कुल, यहाँ पे म्यूजिक में इमोशन है, ये जज्बात फीलिंग से सब कुछ है, इसीलिए वी मेक इट बेस्ट ऑन रेडियो मस्ती. थैंक यू सो मच इतना सारा प्यार हमको पहुँचाने के लिए. अभी इट्स नॉट द एंड, एक्चुअली इट्स द बिगिनिंग ऑफ अ न्यू जर्नी विद आरजे पूनम. शे से ऑलरेडी ठीक 12 बजे सुनेंगे समाचार, और इसके बाद पूनम के साथ वी कंटिन्यू द जश्न द एनर्जी विद बॉली ब्रंच. स्टे वेल कनेक्टेड. हंसरी की तरफ से अब गुड बाय, विशिंग यू ऑल अ हैप्पी वीकेंड.

0: subscribe to Radio Masti.
1: The time is brought to you by
2: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
1: And Rapid Peanut Butter, creamy and crunchy premium peanut butter.
0: Radio Masti.
3: North, South,
0: 103.5.
3: East, West,
0: 96.4.
3: Center,
0: 99.4.
4: RM2 Radio Musty.
0: Radio Musty.
4: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musty.
5: Time check दोपहर के 12 बज रहे हैं. सभी को नमस्कार. अब सुनते हैं संक्षिप्त समाचार विधिमा से. विधिमा आपको नमस्कार.
6: नमस्कार पूनम. सभी सुनने वालों को नमस्कार. सुरिचुद में मरियामन कोविल के लिए एक नया अध्याय लिखा जा रहा है. एक नई इमारत के निर्माण के लिए पुरानी संरचना को जल्द ही गिरा दिया जाएगा. इस परियोजना की शुरुआत करते हुए आज सुबह आधारशिला रखने की रस्म आयोजित की गई, जिसके निर्माण कार्य जल्द ही शुरू होंगे. ये समारोह प्रधानमंत्री डॉ

0: नवीन राम गुलाम की उपस्थिति में संपन्न हुआ। और फिर अपने भाषण में प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने आध्यात्मिकता के महत्व पर जोर दिया, जिसे वे हमारे समाज के आधारों में से एक मानते हैं। उन्होंने ये भी रेखांकित किया कि धर्म द्वारा प्रसारित मूल्य समाज का मार्गदर्शन करने के लिए एक वास्तविक दिशा सूचक का काम करते हैं। पर्यावरण पुलिस ने डीजल वाहनों से होने वाले धुएं के उत्सर्जन की जांच के लिए शुक्रवार 28 अगस्त को पोटली में स्मोक अभियान चलाया। इस अभियान के दौरान कुल 5 चालान काटे गए। जांचे गए वाहनों में धुएं का ओपेसिटी स्तर अनुमत सीमा 50% से काफी अधिक पाया गया। दर्ज किए गए आंकड़े 92.5% और 98.6% के बीच थे। संबंधित वाहनों पर आवाजाही प्रतिबंध के नोटिस दिए गए और प्रत्येक चालक पर ₹10,000 का निश्चित जुर्माना लगाया गया। यह अभियान सड़कों पर अत्यधिक धुएं के उत्सर्जन से होने वाले प्रदूषण को कम करने के उद्देश्य से चलाए जा रहे नियंत्रण कदमों का हिस्सा है। करीब 18 साल से बंद पोटली थिएटर जल्द ही खुल सकता है। कला और संस्कृति मंत्री महेंद्र गुंदिया ने अगले कुछ हफ्तों में इसे दोबारा खोलने की घोषणा की है। इस सिलसिले में गुरुवार 3 सितंबर को उनके मंत्रालय, प्रांतीय प्रशासन मंत्रालय और पोटली नगर पालिका के बीच बैठक होगी। सरकार पोटली थिएटर और रोसिल के प्लाजा के संचालन के लिए सरकारी और निजी क्षेत्र की साझेदारी को प्राथमिकता दे रही है। पोटली थिएटर वर्ष 2008 से बंद है। विदेश के खबरों में, स्थानीय पुलिस के अनुसार उत्तरी स्विट्जरलैंड में एक कार्यक्रम के दौरान हुई गोलीबारी में एक व्यक्ति की मौत हो गई और 5 अन्य घायल हो गए। और उधर कीव के बाहरी इलाके में एक रिहायशी इलाके के पास यूक्रेनी सेना के लिए हथियार रखने वाले डिपो पर हुए रूसी ड्रोन हमले के बाद 37 लोगों की मौत हो गई है और लगभग 400 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। तो इन्हीं खबरों के साथ ही 12 बजे के संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। थोड़ी देर में शोक समाचार। महर्षि लेन कोइंसे फ्लैक में 85 साल की 85 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती जयरानी बिकी की मृत्यु हो गई है। उनके अर्थी आज सुपहर 3:30 बजे उनके घर महर्षि लेन कोइंसे फ्लैक से उठाकर कोइंसे की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 3:30। अरब लेन कोयलोफ पोटली में 89 साल की 89 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती फिफिन मोहाबल, पैदाइशी नाम रामहित और जो तौचिन शांति नाम से भी जानी जाती थी, की मृत्यु हो गई है। उनके अर्थी आज दोपहर 3 बजे उनकी बेटी फिदू मोहाबल के घर अरब लेन कोयलोफ पोटली से उठाकर सिपाही भोले वाले दिपैत की शमशान भूमि ली जाएगी। क्रिमेशन टुडे 3:00 PM। शोक में डूबे इन परिवारों के प्रति हमारी संवेदना है।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.
2: Body Branch, RM2, Radio Must See.

0: ब्रांच RM2 रेडियो मस्ती।
1: 12:10 हो चुके हैं। वेरी गुड आफ्टरनून, नमस्ते, आदाब, क्या बात है, क्या गाना है, मतलब क्या जो मूड बनता है ना। सब लोग कहते हैं कि तू पहला ये गाना क्यों चलाते हैं, क्योंकि मैं बता

0: क्योंकि पहला गाना मैं चलाती हूँ अपने लिए, अपने आप को उठाने के लिए। मेरी ये कहते हैं ना कि जब जब वो गानों की जो ताकत होती है, जो एनर्जी होती है, जैसे ही वो मुझ में आ जाती है, फिर मैं ट्रांसफॉर्म करती हूँ आप सबके लिए, क्योंकि हम लेकर आते हैं आपके लिए वो प्यारे प्यारे से गाने जो कि गर्माहट वाले होते हैं। क्योंकि बाहर हो गया भाई बहुत ठंड, कई लोगों को काम करना है, ऑफिस जाना है, तो उन्होंने भाई ऊपर से लेकिन नीचे तक अपने आप को कवर कर लिया है, और जिनको पानी में हाथ डालना है उन्होंने भाई डालना ही है, क्या करें, काम के बिना तो जी नहीं सकते, काम तो करना ही पड़ेगा। तो इसीलिए हमने सोचा कि ऐसे गाने लेकर आए जिससे आपको थोड़ी सी गर्माहट मिले, थोड़ा सा इंजॉय कर सकें और थोड़ा सा रिलैक्स कर सकें, थोड़ा सा अपने आप को हल्का कर सकें, क्योंकि सुबह से जो लोग काम कर रहे हैं और अभी है आज प्यारा सा संडे, तो भाई वीकेंड का तो जो एंड है आज हो जाना है, फिर कल से काम की शुरुआत हो जानी है, तो क्यों ना ऐसे गानों को चलाया जाए जिससे आपका मूड रिफ्रेश हो। तो मैं हूँ आपके साथ पूनम, इंजॉय कीजिए अपने गानों को साथ में। अगर आपने कोई मैसेज करना है तो आप बिल्कुल मैसेज करना मत भूलिए 5499124 पर। गानों के साथ, आपके मैसेजेस के साथ, आपके प्यार के साथ, आपकी मोहब्बत के साथ हम हैं हाजिर आपके प्यारे से प्रोग्राम बॉली ब्रंच में। एंजॉय कीजिए अपने गाने।
1: बॉली ब्रंच RM2 रेडियो मस्ती।

0: Brunch RM2 Radio Must See. Poly Brunch RM2 Radio Must See.
1: बारह बजकर 24 मिनट हो चुके हैं दोस्तों और आप जुड़े हैं अपने ही प्रोग्राम बॉली ब्रंच के साथ. और यहाँ पर इस समय जो मैसेजेस आ रहे हैं वो ये कह रहे हैं बाहर बहुत ठंड है, मुझे पता है बहुत ठंड है, पर क्या करें, आपको कुछ ऐसा करना है कि जिससे आपकी बॉडी भी वार्म रहे. थोड़े से ऐसे कपड़े जो आपने बहुत टाइम से अंदर रखे हुए थे उनको निकाल लीजिए, ब्लैंकेट्स को थोड़ा सा कवर वगैरह चेंज कर दीजिए. एक या दो या तीन मुझे लगता है ब्लैंकेट सबको लग ही रहे होंगे क्योंकि ठंड है, क्या कर सकते हैं. और सबसे अच्छी बात है एहसास हो रहा है कि हम विंटर्स में हैं, नहीं तो इतने टाइम से हम सोच रहे थे हम विंटर्स आ गया पर विंटर गया कहाँ, अब विंटर दिख रहा है ना, एहसास हो रहा है ना. तो कहीं कोई बात नहीं, बट आप कुछ ऐसा खाइए जिससे थोड़ी सी बॉडी वार्म रहे. और साथ में हम आपको इतना ही कहेंगे जो इस टाइम में जैसे लंच आवर का टाइम है तो कई लोगों ने लंच कर लिया होगा या कई लोग कह रहे होंगे कि अब क्या खाएं क्या पकाएं, तो आप जो भी पकाएंगे अच्छा ही पकाएंगे, इंजॉय कीजिए अपने खाने को. और जिनको सुस्ती आने लग गई है ना, जिनको थकान आने लग गई है, जिनकी आंखें थोड़ी भारी भारी हो रही है खाने के बाद, ऐसा मूड होता है ना कि भाई थक गए हैं अब थोड़ा सा रेस्ट मिल जाएगा, क्योंकि कई लोग सुबह 5 बजे 4 बजे से उठे होते हैं तो ये टाइम होता है उनका थोड़ा सा नैप लेने का. तो मैं जो मॉर्निंग में बहुत जल्दी उठे हैं उनके लिए तो ये कहूँगी कि आप थोड़ा सा 5-10 मिनट अगर कोई सेफ प्लेस है वहाँ रेस्ट कर सकते हैं, नैप ले सकते हैं, घर पर है तो कम्फर्ट जोन में रहें. और पर जो ड्राइव कर रहे हैं बिल्कुल आंखें पूरी खोल के चलिए, आगे पीछे देख के चलिए और साथ में गानों के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि गाने जो है ना आपको एक तो मस्ती दे देते हैं और साथ में आपको एहसास देते हैं कि हम भी आपके साथ जुड़े हैं. बातें करो, गप्पे शप्पे मारो, मैसेज करो और बताओ कि आपका कैसा दिन चल रहा है, क्या किया, कुछ स्पेशल हो रहा है ज़िंदगी में, नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है. चलो भाई गाने चलाते हैं, ये गाना बहुत ही खास है, स्पेशल है, सोनू निगम की आवाज़ में और सुनिधि चौहान की आवाज़ में. मस्त है, इंजॉय कीजिए इस गाने को.

0: धड़कन अधूरी थी, अधूरे हम, मगर अब चांद पूरा है फलक पे और अब पूरे हैं हम।
1: तब दिल कहे

0: पॉली ब्रांच RM2 रेडियो मस्ती।
1: 12:35 हो चुके हैं दोस्तों, आप जुड़े हैं अपने ही प्रोग्राम बॉली ब्रंच के साथ। और बॉली ब्रंच है भाई ऐसा कि जहाँ पे गाने चलते हैं धमाकेदार मस्ती वाले, जिससे आपकी टेंशन फुर हो जाए और गानों के साथ आप ऐसे ड्राइव करें, मस्त इंजॉय कीजिए। अगर आप घर पे हैं तो घर पे अपने मूड को रिफ्रेश करें, क्योंकि कल से काम पर जाना है। और अगर ड्राइव कर रहे हैं तो बस हमारे साथ जुड़े रहिए। आप जानते ही हैं कि शान आने वाले हैं 5th of September को, और वहाँ पर जैसे कि उनकी आवाज़ है, मतलब जो न्यू जनरेशन है वो भी उन्हें सुनना चाहता है। जो ऐसे हमारी एक ऐसी जनरेशन होती है जिनको बहुत पुराने गानों को ज़्यादा पसंद करते हैं, उन्हें भी शान अच्छे लगते हैं। क्योंकि शान को हमेशा से बनना था

0: किशोर दा की आवाज़, क्योंकि वो हमेशा कहते थे कि मैं किशोर दा जैसा बनना चाहता हूँ, पर क्या कहें, जो वो ऊपर वाला है ना उसकी गेम बड़ी अच्छी होती है, उसने बना दिया शान से शान को शान में। तो चलिए भाई, बॉलीवुड की जो भी जितने भी आज की भी डेट में जितने भी सिंगर्स हैं, सभी उनकी आवाज़ को पसंद करते हैं और उनके ऊपर मूवीज़ बनी जाती हैं, और जहाँ पर वो इतना अच्छा काम कर रहे हैं वो ही इंडिया से चल के यहाँ पर आने वाले हैं एक कॉन्सर्ट के लिए। और मुझे उम्मीद है कि आप सब ने अपनी टिकट्स खरीद ली होंगी, जिन्होंने नहीं खेली वो नहीं ली अभी तक वो भी ले लें, नहीं तो बाकी जो हैं वो तो हम एवरीडे बहुत सारी मॉर्निंग में गेम्स खेलते ही हैं, जिसके साथ में वेदिता होती हैं या और भी बहुत सारे हमारे आरजेस होते हैं जो रेगुलरली गेम्स खेलते हैं, और उसके बीच में आप जीत पाते हैं कॉन्सर्ट्स की टिकट्स। तो हम आपको बोलेंगे कि अभी भी टाइम है आपके पास, आप टिकट्स ले सकते हैं। फिर लास्ट मोमेंट पर मत बोलिएगा कि हमारे को टिकट नहीं मिली, कुछ अरेंजमेंट्स हो सकते हैं कहीं, ये वो ऐसे मत कीजिएगा, अभी टाइम है आपके पास बहुत सारा है। 3-4 दिन में आप टिकट्स ले लीजिए, फैमिली के लिए लीजिए, अपने लिए लीजिए, अपने परिवार मम्मी पापा के लिए लीजिए, क्योंकि कई बार होता है, या गर्लफ्रेंड के लिए ले लीजिए। वैसे तो मैं नहीं सपोर्ट करती हूँ, बट फिर भी कभी कभी होता है ना कि लेना बनता है। तो चलिए इंजॉय कीजिए गानों को, एक प्यारा सा गाना सुनते हैं शान की आवाज़ में, शान से ये है गाना उनकी आवाज़ में, पर बहुत ही प्यारा है, तो थोड़ा सा डांस करना बनता है, दिल करे तो डांस भी कीजिएगा मेरे साथ, मैं यहाँ करूँगी आप वहाँ कीजिए।
1: Body Brunch RM2 Radio Masti.

0: ब्रांच RM2 रेडियो मस्ती।
1: 12:46 हो चुके हैं दोस्तों और आप जुड़ चुके हैं अपने ही प्रोग्राम वाली ब्रंच के साथ में। यहाँ पर अगर लंच कर रहे हैं तो एंजॉय कीजिए, साथ में ले लेते हैं आपके प्यारे प्यारे से मैसेजेस। बड़ी देर से इंतज़ार में हैं कई लोग, तो हम भी चाहते हैं कि भाई एक बार एक स्टॉक इकट्ठा हो जाता है ना, फिर पढ़ने में भी मज़ा आता है। तो चलिए सबसे पहले हमारे साथ जुड़ी हुई हैं प्रिया, सुनीशा, सिद्धार्थ, कमल, ललित जी USA से, रश्मि, शिक्षा जी, सोना एंड सुमित। इंजॉय कर रहे हैं इस प्रोग्राम को और कह रहे हैं बस गाने चलाते रहो, हमारा तो दिल कर रहा है डांस करने का। तो किसने मना किया, डांस करो, जो भी काम कर रहे हो करते रहिए, क्योंकि यही टाइम है आप सबका इंजॉय करने का, क्योंकि संडे का दिन है प्यारा सा, तो क्यों ना इंजॉय किया जाए। साथ में डैरन, श्वेता, रविश, प्रिशा, लोवेशा एंड होल अपादू फैमिली साथ दे रही है। और श्वेता जी, हेलो जी, हाय, आपके मैसेजेस हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, थैंक यू सो मच। और आज है आकाश, चेतन, मनसुख जी का बर्थडे, 35th बर्थडे, मामा, पापा, सिस्टर, जीजू की हाँ नव्या विश कर रहे हैं, और सारी फैमिली, सभी रिलेटिव्स आपके लिए। 2-3 मैसेजेस और भी आए हैं और सभी कह रहे हैं कि आपका बर्थडे बहुत स्पेशल है एंड यू आर वेरी स्पेशल। तो हम भी आपको कहेंगे, अगर आप स्पेशल है, आपके परिवार आपको इतना प्यार दे रहा है, तो हम पीछे कैसे रह सकते हैं। हम सब भी आपके लिए, आपके इस आपके बर्थडे में हम सेलिब्रेट करना चाहते हैं। तो इंजॉय कीजिए अपना बर्थडे और हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और सभी वो लोग जिनका आज बर्थडे है, इंजॉय कीजिएगा, और जिनकी एनिवर्सरी है, आप लोग भी इंजॉय कीजिएगा, एक बेस्ट कपल बनिए। ये है आप सबके लिए जिनका बर्थडे है।

0: रेडियो मस्ती।
1: बॉडी ब्रंच RM2 रेडियो मस्ती।

0: Welcome to RM2
1: Radio Musty.
2: North, South,
1: 103.5,
2: East, West,
1: 96.4,
2: Center,
1: 99.4.
0: RM2 Radio Musty.
1: Radio Musty.
0: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musty.
3: टाइम चेक दोपहर के 1 बज रहे हैं। सभी को नमस्कार। अब सुनते हैं संक्षिप्त समाचार अदिति से। अदिति, आपको नमस्कार।
4: नमस्कार पूनम, श्रोताओं को भी नमस्कार। सोलिचीद में मारियामिन कोविल के लिए एक नया अध्याय लिखा जा रहा है। एक नई इमारत के निर्माण के लिए पुरानी संरचना को जल्द ही गिरा दिया जाएगा। इस परियोजना की शुरुआत करते हुए आज शिलान्यास विधि संपन्न की गई। निर्माण कार्य जल्द ही शुरू होंगे। ये समारोह प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम की उपस्थिति में संपन्न हुआ। अपने संदेश में प्रधानमंत्री ने आध्यात्मिकता के महत्व पर जोर दिया, जिसे वे हमारे समाज के आधारों में से एक मानते हैं। उन्होंने ये भी उल्लेख किया कि धर्म द्वारा प्रसारित मूल्य समाज का मार्गदर्शन करने के लिए वास्तविक दिशा निर्देश का काम करते हैं। पर्यावरण पुलिस ने डीजल वाहनों से होने वाले धुएं के उत्सर्जन की जांच के लिए शुक्रवार 28 अगस्त को पोर्ट लुइस में स्मोक डिटेक्शन अभियान चलाया। इसके अंतर्गत कुल 5 चालान काटे गए। जांचे गए वाहनों में धुएं का ओपेसिटी स्तर अनुमत सीमा 50% से काफी अधिक पाया गया। दर्ज किए गए आंकड़े 92.5% और 98.6% के बीच रहे। संबंधित वाहनों पर आवाजाही प्रतिबंध के नोटिस जारी किए गए और प्रत्येक चालक पर ₹10,000 का फिक्स्ड पेनल्टी लागू किया गया। ये अभियान

सड़कों पर अत्यधिक धुएं के उत्सर्जन से होने वाले प्रदूषण को कम करने के उद्देश्य से चलाए जा रहे हैं। और अंतर्राष्ट्रीय खबरों में स्थानीय पुलिस स्विट्जरलैंड में स्थानीय पुलिस उत्तरी स्विट्जरलैंड में एक कार्यक्रम के दौरान हुई गोलीबारी की में एक व्यक्ति की मौत हो गई है और पुलिस इसकी जांच चला रही है। कम से कम 5 लोग घायल हुए हैं और एक व्यक्ति की मौत बताई जाती है। उधर रशिया में कीव के बाहरी इलाके में एक रिहायशी इलाके के पास यूक्रेनी सेना के लिए हथियार रखने वाले डिपो पर हुए रूसी ड्रोन हमले के बाद 37 लोगों की मौत हुई है। लगभग 400 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है। ये थी अब तक की खबरें। थोड़ी देर में शोक समाचार। शोक समाचार सुनिए। अरब लेन काउंसिल ऑफ पोर्ट लुइस में अरब लेन काउंसिल ऑफ पोर्ट लुइस में 89 साल की 89 ईयर्स ओल्ड श्रीमती फिफिन मोहबल पैदाशी नाम रामहीद जो तोंचिन शांति नाम से ज़्यादा जानी जाती थी इनकी मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी आज दिन के तीन बजे इनकी बेटी श्रीमती फिदू मोहबल के मकान अरब लेन काउंसिल ऑफ पोर्ट लुइस से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सिपाही भूले वाले देपद की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे 3 PM। महर्षि लेन काउंसिल फ्लैक में 85 साल की 85 ईयर्स ओल्ड श्रीमती जयरानी बिकी जो स्वर्गीय डॉक्टर खुसिया की माँ थी इनकी मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी आज दिन के साढ़े तीन बजे इनके मकान महर्षि लेन कौंचे फ्लाक से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए कौंचे की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे 3:30 PM। मारामाजो गुडलैंड्स में 32 साल के 32 ईयर्स ओल्ड श्री जेविन ग्रीधर जो चिपची नाम से ज़रा जाने जाते थे इनकी मृत्यु हो गई है। इनके अर्थी कल दिन के ढाई बजे इनके पिता श्री भगवान दास ग्रीधर के मकान मारामाजो गुडलैंड से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए दाहुची की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुमारो 2:30 PM। शोक में डूबे परिवारों के साथ हमारी गहरी संवेदना है।

0: ब्रांच RM2 रेडियो मस्ती।
1: 1:12 हो चुके हैं दोस्तों और आप जुड़े हैं अपने ही प्रोग्राम बॉली ब्रंच के साथ और मैं हूं आपके साथ पूनम। क्या बात है, ये जो गाने होते हैं ना, ये सच में रेली में मूड को बदल देते हैं। जरा से भी टेंशन होती है बस रेडियो मस्ती ऑन कर लो, देखो कोई भी आरजे आएगा मतलब आपका दिल ही खुश हो जाएगा। कोई भी आरजे आएगा वो अपने हिसाब से गाने चलाएंगे, बट वो बिल्कुल सटीक आपकी सिचुएशन के ऊपर बैठेंगे। अगर इस समय आपका थोड़ा सा भी मूड इधर उधर डोल रहा था तो देखो हमने आपका मूड बिल्कुल सेट कर दिया है। सिर्फ इसीलिए किया है कि थोड़ा सा आपका दोपहर बहुत अच्छी हो जाए और उसके बाद जब शाम हो तो आप बहुत ही रिलैक्स फील कीजिए और इन्जॉय कीजिए गानों के साथ अपने जो आपका टाइम है, आपकी लाइफ है, आपकी जो सिचुएशंस है। तो चलिए भाई, बहुत सारे नाम हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत सारे लोग जुड़ चुके हैं पर उनका नाम अभी हम नहीं लेंगे। अभी आपको और मैसेजेस करने हैं 5499124 पर एक सर है हमारे जिनका नाम है मिस्टर राम देवन जी। उनका एक क्वेश्चन है, वो कह रहे हैं कि मैं क्या करूं। वैसे तो इस प्रोग्राम में हम टिप्स नहीं देते हैं पर उन्होंने क्वेश्चन किया तो हमारा फ़र्ज़ बनता है आंसर देने का। तो वो कहते हैं कि मेरे स्पेक्स बहुत गंदे जल्दी जल्दी हो जाते हैं, मैं क्या कर सकता हूं, क्या कुछ बता सकते हो? क्यों नहीं बता सकते सर, आपको सिर्फ ऐसे ही करना है। सबसे पहले अपने जाके आइस टेस्ट करवाइए, हो सकता है कि आपके नंबर बदल गए हों और आपको एहसास हो रहा हो कि आपके मतलब आपके स्पेक्स जल्दी गंदे हो जाते हैं। अगर जो वो आपकी ग्लासेस डालेंगे, जो न्यू डालेंगे, वो आपके न्यू नंबर के अकॉर्डिंगली होंगे और उसके साथ हो सकता है कि उसके अंदर कई बार ऑयल आ जाता है, मतलब जैसे हमारे बार बार हम उतारते हैं पहनते हैं, और हो सकता है आपका जो फ्रेम हो बहुत हैवी हो जो आपको सूट ना करता हो और आपको टायर्डनेस लगती हो और आप बार बार उसे उतारते हो फिर पहनते हो उतारते हो, तो उससे क्या होता है आपके जो हाथ में मॉइस्चर होता है, ऑयल होता है, वो आपके ग्लासेस पे लग जाता है जिससे आपको थोड़ा सा धुंधला धुंधला दिखाई देता है। तो आप अपने जो ग्लासेस हैं उसको चेंज करा सकते हैं, नहीं तो आप एक और ट्रिक अपना सकते हैं। ये तो बहुत ही प्यारा सा सिंपल है। आपको क्या करना है, अपने फ्रीज़र में, नॉट फ्रिज में, आपको अपने फ्रीज़र में सिर्फ टाइम चेक करके सिर्फ 2 मिनट के लिए अपने स्पेक्स को फ्रीज़र में रखना है, उसको बाहर निकालना है और बिल्कुल सॉफ्ट टिश्यू पेपर से, जो सॉफ्ट टिश्यू पेपर होगा उससे क्लीन करना है। आसानी से क्लीन नहीं होगा, आपने पानी नहीं लगाना है, आपने बस सिर्फ उसको उस टिश्यू से क्लीन करना है। हो सकता है आपको 30 सेकंड्स 1 मिनट भी लग जाए वो क्लीन नहीं हो, तो आपको टेंशन नहीं लेनी है, आपको धीरे धीरे धीरे धीरे क्लीन करते रहना है। और आपको अगर लगेगा कि अभी तक क्लीन नहीं हुआ है तो आपको क्या करना है, अपने माउथ से थोड़ी सी उधर थोड़ी सी सांस देनी है, गर्माहट देनी है। जैसे ही आप गर्माहट देंगे और फिर टिश्यू यूज़ करेंगे तो आप देखिएगा आपके जो स्पेक्स हैं, जो आपके ग्लासेस हैं, एकदम एकदम मतलब एकदम क्लीन हो जाएंगे। उसमें कुछ स्क्रैचेस होंगे, ऑयल होगा, सब निकल जाएगा। तो ये तो टिप है तो दे दिया हमने, अब आप इंजॉय कीजिए गानों को, इंजॉय कीजिए। ये वाला गाना बहुत ही खास है,
0: Body Branch RM2 Radio Masti.
2: Here we go.

0: Holly Branch RM2 Radio Masti.
1: जी बिल्कुल, जिया चले जान चले भाई, जान चले उसकी जिसको अभी लगी है बड़ी ज़ोर से भूख और वो बस कहे कि बस मुझे खाना दे दो, ऐसे ही हालात होते हैं। पर अगर आपने खाना खा लिया है तो कुछ नहीं, बस टेंशन नहीं लेनी है, हंसना है, मुस्कुराना है, गानों के साथ जुड़े रहना है और अपने जो भी काम कर रहे हैं वो करते रहने हैं। तो चलिए जी, बहुत सारे मैसेजेस आ गए हैं, हम भी सोच रहे हैं क्यों उनकी जान जलाएं, क्योंकि सब लोग कह रहे हैं प्लीज़ हमारा मैसेज पढ़ दो। तो बिल्कुल जी, कृषि जी साथ दे रहे हैं, सोनी सुनीता जी, देवीना, रहमत, ललित जी साथ दे रहे हैं यूएसए से, और उन्होंने एक बहुत ही प्यारा सा मैसेज किया है, तो चलो पढ़ ही लेते हैं। कह रहे हैं कि प्लीज़ मेरी ब्यूटीफुल वाइफ के लिए एक प्यारा सा गाना मैसेज पढ़ दो, क्योंकि वो भी इंडिया से आपको सुन रहे हैं। तू मेरी ज़िंदगी है, तू मेरी हर खुशी है। क्या बात है, क्या बात है, बस ऐसे ही हमेशा ज़िंदगी बनाए रखिए, उनको खुशी बनाए रखिए और हमेशा उनका साथ देते रहिए। साथ में इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं मनीष जी, अमर, राजा, बानी, जिसिक एंड खूबलाल फैमिली साथ दे रही है, उसके साथ में एलिना, कृष्णा एंड प्रतिभा जी साथ दे रही हैं, ललिता जीतन जी भी आ चुकी हैं और इन्जॉय कर रही हैं सुसाइड के सामने और फुल वॉल्यूम में गाने सुन रही है। थैंक यू सो मच आपका इन्जॉय करने का। और राम कबीर सिंह जी भी साथ दे रहे हैं और इन्जॉय कर रहे हैं। साथ में हमारी श्याम देवी चरण जी भी जुड़ चुके हैं और कह रहे हैं हॉट हॉट कॉफ़ी के साथ मैं भी पहुँच गया, पहले बीच के सामने से इन्जॉय कर रहा हूँ। साथ में हमारे एक और बहुत ही प्यारे से दोस्त हैं, नाम लिखना भूल गए शायद, बट कह रहे हैं मैं सुबह से साथ निभा रहा हूँ, पर प्लीज़ मेरे लिए एक बार वीर जारा का एक गाना चला दीजिए, क्योंकि अभी आपने एक गाना चलाया था वीर जारा का, तो क्यों नहीं चलाएंगे, आप कहें और हम ना चलाएं, ऐसा कभी हो नहीं सकता। इंजॉय कीजिए अपने गानों को और साथ में हम आपको इतना ही कहेंगे, शान के गाने सुनते रहिए, क्योंकि अभी बहुत जल्दी वो हमारे बीच में आने वाले हैं, तो जब वो आएंगे तो हमें उनके गाने या सारे रटे होने चाहिए, क्योंकि वो कई बार कहते हैं ना कि चलो हमारे साथ गाओ, फिर होता है अरे यार हमने लिरिक्स याद कर लिए होते तो आज साथ गा पाते। तो इंजॉय कीजिए उनके गाने।
0: Body Branch RM2 Radio Masti.

0: मॉर्निंग ब्रंच RM2 रेडियो मस्ती।
1: 1:42 हो चुके हैं दोस्तों, और कई लोग इस समय तो कह रहे होते हैं कि भाई थोड़ा सा रेस्ट चाहिए, दोपहर का टाइम है, क्योंकि उनको थोड़ा सा रिवाइव करना होता है, क्योंकि कल से जाना है ऑफिस, बच्चों जिन्हें जाना है स्कूल, जैसे मामा

0: होंगे, वो तैयारी कर रहे होंगे पूरे वीक के लिए, बच्चों को पढ़ा रहे होंगे, एग्जाम्स आने वाले हैं, और कई लोग आज भी रात को छोटी मोटी पार्टी तो मना ही लेते हैं, बोलते हैं भाई चलो किसी के घर में डिनर पे चले जाते हैं या थोड़ा सा राउंड ले लेते हैं, थोड़ा सा मॉरिशस में यहाँ पर कहीं इधर उधर घूमे आते हैं, पेरेंट्स को मिले आते हैं, किसी को फ़ोन कॉल कर लेते हैं, किसी के साथ बातें शातें कर लेते हैं। तो भाई हम आपको ये बोलते हैं, ये सब जो भी आप कर रहे हो ना, सब बहुत अच्छा कर रहे हो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है दिमाग के लिए, दिल के लिए, फैमिली के लिए, इंजॉयमेंट के लिए। और साथ में कहते हैं ना कि घर में बैठ के क्या करोगे, तो हमारे साथ तो हो ही जुड़े, पर दुनिया के साथ भी तो जुड़ के रहना होता है। तो आप दुनिया के साथ में जुड़े हैं तो इंजॉय करो, पर हम यही कहेंगे कि अगर अभी तक कोई भी प्लान नहीं बनाया, मतलब कुछ भी जो मैंने अभी तक बोला उसमें कोई भी प्लान नहीं बनाया, तो कुछ तो प्लान बना लो, कहीं तो चले जाओ, कुछ खा पी आओ थोड़ा सा, बस यही नहीं कि घर पर बैठे रहो, ये अच्छा नहीं है। तो संडे का दिन है तो इसको थोड़ा सा तो हैप्पी बनाने के लिए थोड़ा सा कुछ किसी के साथ दोस्त को फ़ोन कर लो, किसी को मैसेज करके पूछ लो कोई प्लानिंग है, कहीं मिलते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। हम तो यही कहेंगे आपको कि कुछ प्लान है, किसी का दीदार कर लो, किसी के साथ बहाने जो 10 बहाने हैं उसको हटवा के अपना बहाना ऐड कर लो, उनको बोलो कि थोड़ा सा हमारे को भी ले लो अपनी पार्टी के अंदर, थोड़ा सा इन्जॉयमेंट आप भी कर लो। तो चलिए जी, बहुत ही सारे गानों के साथ इन्जॉय कर रहे हैं और हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। अगर आप भी कोई मैसेज करना चाहते हैं, किसी को स्पेशल, किसी को सरप्राइज़ देना चाहते हैं, किसी को एक प्यारा सा मैसेज देना चाहते हैं, दिल वाला मैसेज देना चाहते हैं, तो मैसेज कीजिए 5491294 पर। मैं हूँ आपके साथ पूनम।
1: Body Branch RM2 Radio Masti.

0: कुछ कुछ होता है राहुल, तुम नहीं समझोगे।
1: लड़की बड़ी अनजानी है।
2: Radio Musti, all the way.
3: जब तक टाइगर मरा नहीं, तब तक टाइगर हारा नहीं।
2: Radio Musti, the latest news and the greatest mix of music.

0: रेडियो मस्ती, फील द मस्ती।
1: रेडियो मस्ती।

0: north, south, east, or west. Tune into the very best. Radio Masti, your number one Bollywood station.
1: Dost, zara chehra to dekho dost ka. ये तोबड़े का डिजाइन तो पहली बार देखा हूँ।
2: ये बस क्या सलू, एक बार घर नहीं आया और इतना नाराज।
1: ओए, तू घर कभी आया रे?
2: अरे नाराज क्यों रहा है सलू, अगली बार घर आऊंगा ना बिरयानी खाने।
1: अबे घर तो क्या, तू कभी रास्ते में भी दिखाई दिया ना तो चेहरे का डिजाइन बदल दूंगा।
2: देखा हमारी यारी दोस्ती, तू जा जेनी, ऑर्डर बुक ला, जल्दी जा।
3: ओके,
2: चलता रहेगा।
4: सुरवान भाई,
2: सॉरी, क्या है ना, जेनी मुझे बहुत अच्छी लगती है। और जेनी को आप अच्छे लगते हैं, फैन है आपकी, इसलिए उसे इम्प्रेस करने मैंने छोटा सा झूठ बोला। क्या मेरे फ्रेंड है?
1: और क्या क्या बोला तू?
2: यही कि मैंने आपको बॉडी बिल्डिंग सिखाई है।
0: प्रेम?
2: थाइमा से लूज हो गए सलू, क्या कर रहे, मेरे जैसे नहीं रहा क्या तू? नहीं करा जो मैंने सिखाया था।
1: हाँ वो भी करूंगा, वो भी करूंगा, अपनी दोस्त को मुझसे नहीं मिलाएगा।
2: जेनी सलमान

0: सभी को नमस्कार। अब सुनते हैं संक्षिप्त समाचार अदिति से। अदिति आपको नमस्कार।
1: नमस्कार पूनम, श्रोताओं को भी नमस्कार। सोलिचिड में मारियामेंको विल के लिए एक नया अध्याय लिखा जा रहा है। एक नई इमारत के निर्माण के लिए पुरानी संरचना को जल्द ही गिरा दिया जाएगा। इस परियोजना की शुरुआत करते हुए आज शिलान्यास विधि संपन्न की गई। निर्माण कार्य जल्द ही शुरू होंगे। ये समारोह प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन रामगुलाम की उपस्थिति में संपन्न हुआ। अपने संदेश में प्रधानमंत्री ने आध्यात्मिकता के महत्व पर जोर दिया, जिसे वे हमारे समाज के आधारों में से एक मानते हैं। उन्होंने ये भी रेखांकित किया कि धर्म द्वारा प्रसारित मूल्य समाज का मार्गदर्शन करने के लिए एक वास्तविक दिशा निर्देश का काम करते हैं। तोबिश के समंदर के बढ़ते जल स्तर और इरोजन की समस्या से निपटने के लिए जरूरी उपाय लागू करने से पहले कहीं ज्यादा आवश्यक हो रहा है। अनुमान है कि 2026 से हर साल कुछ इलाकों में 1 से 2 मीटर तक जमीन का कटाव होगा। इस बेहद संवेदनशील इलाके में समुद्र तट, समुद्री इकोसिस्टम और आसपास के मूल ढांचों को खतरा है। रेत की भरपाई, समुद्री सुरक्षा के ढांचे बनाने से लेकर प्राकृतिक सुरक्षा उपाय बनाए रखने तक संबद्ध विशेषज्ञ लगूनों की स्थितियों और तूफानों के खतरों को ध्यान में रखते हुए अब हाइब्रिड समाधान अपनाने की सलाह दे रहे हैं। वैश्विक स्तर पर खाद्य सामानों के आयात को लेकर अनिश्चितताओं को ध्यान में रखते हुए फागे खुद को फिर से व्यवस्थित कर रहा है। इस दिशा में देश के खेतीहरों और पशुपालकों के लिए विभिन्न सहायता योजनाओं में बदलाव लाए जा रहे हैं। मकसद है मौजूदा चुनौतियों का बेहतर सामना करना और कृषि क्षेत्र की मजबूती बढ़ाना। याद रहे कि मॉरिशस में स्थानीय उपभोग का लगभग 70% भाग आयात किया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय खबरों में यूक्रेन की राजधानी कीव के पास एक आवासीय इलाके में रूसी ताकतों द्वारा किए गए ड्रोन हमले में कम से कम 37 आम नागरिकों की मौत हुई है। 400 से ज्यादा लोग घायल बताए गए हैं। इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
2: Plug and play. RM2. Plug and play.

0: Tag and play.
1: RM2.
2: 2:08 हो चुके हैं, एंजॉय कर रहे हैं आप प्लग एंड प्ले, क्योंकि बॉली ब्रंच हो गया अब हमारा ख़त्म। ये ऐसे प्रोग्राम बनाया गया ना, प्लग एंड प्ले, मतलब बस लगाओ प्लग और स्टार्ट हो जाओ गाने सुनने के लिए, क्योंकि इस समय आपका, आपने खाना खा लिया, थोड़ा सा रेस्ट कर लिया, अब आपको चाहिए मस्ती रात के लिए, शाम के लिए, और उसके बाद कल सुबह से फिर से शुरू हो जाएगा वो प्यारा सा वीक जहाँ पर आपके बहुत सारे सपने होंगे, बहुत सारे वादे होंगे, बहुत सारी मीटिंग्स होंगी, खुद को कुछ करके दिखाने के लिए बहुत सारे आपके पास पैकेज होगा। आपने बॉस ये सोचा होगा कि बॉस को ये करके दिखा दूँ, वो करके दिखा दूँ, जिससे बॉस खुश हो जाए और बताए कि हाँ भाई तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो। तो हम तो यही कहेंगे कि आप अगर ऐसा कुछ कर रहे हैं जो आपके दिमाग में है, कई बार तो बिल्कुल नहीं कुछ होता, दिमाग में आता ही नहीं कि हम ऐसा क्या करें जिससे हमारा बॉस खुश हो, हम खुद खुश हो। तो इसलिए हम आपको इतना ही कहते हैं कि थोड़ा सा ना दिमाग को रेस्ट देने के लिए गानों का जो सहारा है बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि गानों के साथ में थोड़ा सा आप रिलैक्स हो जाते हो, क्योंकि कई बातें ऐसी होती हैं जो आप खुद से ही नहीं कर पाते, परिवार से क्या कहेंगे। तो जब गाने सुनते हैं तो वो जो डिस्ट्रैक्शन होती है, जो परेशानी होती है, वो फटाफट से निकल जाती है। और फिर से कहते हैं हम आपको कि आप सभी का वेलकम है आपके प्लग एंड प्ले प्रोग्राम में। यहाँ पर 2 से 4 में आपके साथ रहूँगी अभी 2 घंटा और अब आप इसको क्या बोल सकते हैं, जो भी बोलना दिल करे बोल दो है, पर हमने बातें बड़ी सारी करनी है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप कुछ मैसेजेस भेज सकते हैं जो आपके दिल वाले हों, मतलब वैसे तो इतने लगातार मैसेजेस आते हैं, बट ऐसा कोई दिल वाला जो खास स्पेशल हो ना, कहते हैं ना कि जिससे किसी का मूड अच्छा हो सके, किस खुद आपका मूड अच्छा हो सके, तो मैं तो यही कहूँगी 5491294 हमेशा आपके साथ है, MBC आपके साथ है, RM2 रेडियो मस्ती आपके साथ है, और इस समय जो मैं RJ बैठी हूँ आपके साथ, पूनम, वो भी आपके साथ है। तो इन्जॉय कीजिए गानों को और साथ रहिए इस प्रोग्राम के साथ।
0: Plug and play.
1: RM2.
0: Plug and play.
3: Oh, Logan!

0: Tag and play.
1: RM2.
2: दो बजकर 20 मिनट हो चुके हैं दोस्तों और आप जुड़े हैं अपने ही प्रोग्राम प्लग इन प्ले के साथ और यहाँ पर इतने सारे मैसेजेस आ गए, मुझे इतनी हंसी भी आ रही थी बट मैं क्या करूँ, मैं रोक नहीं पा रही, पर फिर भी आपको उनके मैसेजेस सुनाने बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो सब कह रहे हैं कि प्लीज़ हमारा मैसेज ज़रूर पढ़ना। तो सबसे पहले हमारे साथ हैं शापू पेडू जी, साथ दे रहे हैं और बस वो कह रहे हैं कि मैं थोड़ा सा बीमार हूँ और प्लीज़ मेरे लिए प्रे करना कि मैं जल्दी से ठीक हो जाऊँ। मैं तो सर आपके लिए यही प्रे करूँगी कि आप जल्दी से ठीक हो जाएं, अगर ये सब कुछ चलता रहता है ज़िंदगी में और जब आप ठीक हो जाएंगे तो आराम से गाने भी सुनना, प्रोग्राम भी सुनना, इन्जॉय भी करना और हमको आके मिलना भी अगर आप आ सकते हैं, और हम यही दुआ करेंगे कि आप बिल्कुल फिट एंड फाइन हो जाएं और अपनी फैमिली के साथ में रहें। चलिए जी, ये जो नेक्स्ट मैसेज है बहुत ही प्यारा सा है, सोनिया जी साथ दे रही हैं और कह रही हैं, रात को मैं कहीं गई थी और आइसक्रीम खा ली और मेरे हस्बैंड ने मना किया था, इतनी ठंड है मत खा, और मैंने बोला अरे नहीं नहीं ठंड को ठंड काटती है, और मैंने आइसक्रीम खा ली और अब मेरा नोज़ रनिंग हो रहा है और मैं पता है क्या कर रही हूँ, एक कमरे से दूसरे कमरे में भाग रही हूँ और मेरे हस्बैंड को पता ना चले कि मैं बीमार होगी, मैं क्या करूँ, मैं कैसे छुपाऊँ अपने आप को। अब कुछ नहीं हो सकता सोनिया जी, आप नहीं छुप सकती, अब आप एक काम कर सकती हैं, 2-3-4 बार थोड़ा सा जिंजर टी पीजिए, थोड़ा सा उसमें कोई कहवा टाइप बना लीजिए, थोड़े से ड्राई फ्रूट्स उसमें डाल दीजिए और आराम से सिप सिप करके पीते रहिए और थोड़ी सी स्टीम लीजिए, क्योंकि अगर आपने जो ये करा है और जो आपके हस्बैंड ने बोला है तो अब उन्होंने तो बस यही कहना है ना, मैं तुझे कह रहा था ना, कहना नहीं मानते हैं ना, बट क्या करें, कभी कभी मुंह में टेस्ट आ जाता है सर, आपको क्या पता लेडीज़ का, जब हमको खट्टा खाने का मन करता है या आइसक्रीम खाने का मन करता है तो हमारे से रुका नहीं जाता, इसलिए आज के लिए सोनिया जी को करें एक्सक्यूज़। और सोनिया जी आपने करना है बस चाय पीनी है, गर्म दूध पीना है और जो भी आपको लगता है कि जिंजर टी वगैरह जो भी आपको लगता है वो पीजिए, और वैसे ना पता चले उनको तो ज़्यादा अच्छा है, मैं तो इतना ही कहूँगी। चलिए साथ में हमारे साथ एक और हमारे दोस्त जुड़े हुए हैं और कह रहे हैं कि मेरी वाइफ उषा के लिए मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ और प्रार्थना करना चाहता हूँ ऊपर वाले से कि तुम मेरी ज़िंदगी का बहुत खूबसूरत तोहफा हो ऊपर वाले का, जिसने मुझे तुमसे मिलाया, और मैं ज़िंदगी में सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि हमेशा तुम मेरे साथ पास रहो, साथ रहो, क्योंकि तुम्हारे बिना मेरी ज़िंदगी बिल्कुल अधूरी सी है। ओ बाबा क्या बताऊँ, इतना ब्यूटीफुल मैसेज, उषा जी यू आर वेरी लकी, हमेशा ऐसे बस इनका ख्याल करते रहिए, क्योंकि उन्होंने अपना नाम तो बताया नहीं है तो हम तो ये इनका ही बोलेंगे, तो हम आपको इतना ही कहेंगे सर का ध्यान रखिए, अपना ख्याल रखिए और हमेशा ऐसे गुड कपल के जैसे हमेशा आस पास रहे, एक दूसरे के साथ रहिए, इंजॉय कीजिए अपने गानों को और साथ में ब्यू

0: ब्यूटीफुल नून को, तो नून तो चला गया पर फिर भी हमारा तो दोपहर अभी चल ही रही है ना, तो आप इस सिर्फ इतना आपने करना है, आपने अगर अपने दिल की कोई बात कहनी है तो हमें मैसेज करना है 5491294 पर। इंजॉय कीजिए अपने गानों को।
1: Plug and play.
2: RM2.
1: Plug and play.

0: Plug and play.
1: RM2.
2: 2:42 हो चुके हैं. जब ये म्यूजिक चलता है ना, दिल ऐसे मतलब अपने आप से ही पता नहीं थोड़ा सा मूवमेंट देने लगता है, एहसास होता है कि अरे ये ऐसा म्यूजिक क्यों बनाया गया होगा. सिर्फ इसलिए बनाया गया क्योंकि दोपहर का जो टाइम होता है ना, इस टाइम थोड़ी सी आलस आने लगता है और उसके बाद एहसास होता है चलो थोड़ा सा सो जाए. और वैसे भी बाहर ठंड है, आई डोंट नो, क्योंकि मैं तो बहुत देर से स्टूडियो के इनसाइड हूँ तो मुझे पता नहीं कि बाहर अभी कैसा हो रहा है. तो आप हमें मैसेज करके बता सकते हैं कि बाहर का माहौल कैसा है, ठंडक कैसी है. उससे जो आपको चुपके से बस एहसास होता है ना कि चलो थोड़ी देर सो जाए, 5 मिनट सोएंगे और उसके बाद 1 घंटे के बाद एहसास होता है अरे 1 घंटा सो गया मैं.

0: हाँ, तो एक घंटा नहीं सोना, इसलिए हम बीच बीच में ऐसे गाने चलाते रहते हैं जिससे आपकी नींद साथ साथ टूटती रहे और आप साथ में हमारे जुड़े रहें। और जो आपको बहुत सारे काम करने, कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो पेंडिंग में पड़ी होती हैं और आपने कहा होता है कि नहीं भाई सैटरडे आएगा संडे आएगा तो मैं उस दिन उसको ज़रूर फिनिश कर लूँगी। लेडीज़ के लिए कई बार होता है, कब होती हैं उसको क्लीन करना होता है, किचन क्लीन करना होता है, और कई बार जेंट्स को होता है कि भाई थोड़ा राशन लाना है, थोड़ी सी कोई मीटिंग को रिफ्रेश करना पड़ता है, कई बार कोई ऐसी हॉबी होती है जिसको आप बहुत टाइम से कहीं ना कहीं पेंडिंग में रख के बैठे होते हैं और फिर कहते हैं अरे आज पक्का आज से जिम जरूर जाऊंगा, आज से एक्सरसाइज जरूर करूंगा। तो आपने जो भी चीजें अपने दिमाग में रखी हुई है प्लीज़ रिक्वेस्ट है उसको आज करो, क्योंकि आपने अगर उसके ऊपर इतना एक सेकंड भी काम कर लिया ना तो आपको एहसास होगा कि आपके वो जो आगे नेक्स्ट वीक्स आएंगे ना उसमें आप उसको फोकस भी कर पाएंगे, काम भी कर पाएंगे, और साथ में एहसास होगा आपने फिर से वो चीज़ करनी शुरू कर दिया है जिसकी आपको इच्छा थी, आपका दिल चाह रहा था, जो कि जिसे करना चाह रहे थे आप। तो हम तो आपको ये कहेंगे आलस को छोड़ दो, रेस्ट को अब बस हो गया, अगर आपने रेस्ट कर लिया है तो उठो अपनी थोड़ी सी उसके ऊपर काम करो जो की हॉबी है, और जिन्होंने रेस्ट नहीं किया है थोड़ा सा 5-7 मिनट कर लो, 10 मिनट रेस्ट कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, साथ में जुड़े रहो। RM2 रेडियो मस्ती हमेशा आपके साथ है, आपके आपका ख्याल रखता है, इसीलिए हम आपके साथ हैं। तो चलिए एंजॉय कीजिए इस ब्यूटीफुल सॉन्ग को, मैं हूँ आपके साथ पूनम।
1: प्लग एंड प्ले RM2 प्लग एंड प्ले।

0: track and play.
1: RM2.
2: 2:54 हो चुके हैं दोस्तों और आप जुड़े हैं अपने ही प्रोग्राम प्लग एंड प्ले के साथ. अभी इससे थोड़ी देर में हम सुन पाएंगे संक्षिप्त समाचार और उसके बाद जो आवर होगा वो बहुत एक्साइटिंग होगा, इसलिए क्योंकि वहाँ पे हम खेलेंगे एक गेम जिसकी डिटेल्स हम बाद में देंगे. बस हम आपको यही कहेंगे, रेडी रहिएगा गेम खेलने के लिए. इंजॉय कीजिए गानों को.
0: प्लग एंड प्ले.
1: RM2.
0: प्लग एंड प्ले.

0: subscribe to Radio Masti.
1: The time is brought to you by
2: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
1: And Rapid Peanut Butter, creamy and crunchy premium peanut butter.
0: Radio Masti.
3: North, South,
4: 103.5.
3: East, West,
4: 96.4.
3: Center,
4: 99.4.
5: RM2 Radio Musti.
0: Radio Musti.
5: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti.
6: Time check दोपहर के 3 बज रहे हैं. सभी को नमस्कार. अब सुनते हैं संक्षिप्त समाचार अदिति से. अदिति आपको नमस्कार.
7: नमस्कार पूनम. श्रोताओं को भी नमस्कार. सुरिचित में मारियामेन कोविल के लिए एक नया अध्याय शुरू हो रहा है. एक नई इमारत के निर्माण के लिए पुरानी संरचना को जल्द ही गिरा दिया जाएगा. इस परियोजना की शुरुआत करते हुए आज सुबह शिलान्यास विधि संपन्न की गई. निर्माण कार्य जल्द ही शुरू होंगे. ये समारोह प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम की उपस्थिति में संपन्न किया गया. इस मौके पर अपने भाषण में प्रधानमंत्री ने आध्यात्मिकता के महत्व पर जोर दिया, जिसे वे हमारे समाज के आधारों में से एक मानते हैं. उन्होंने ये भी रेखांकित किया कि धर्म द्वारा प्रसारित मूल्य समाज का मार्गदर्शन करने के लिए वास्तविक दिशा निर्देश का काम करते हैं. तो विश्व में समुद्र के बढ़ते स्तर और इरोजन की समस्या से निपटने के लिए जरूरी उपाय लागू करने से करने पहले से कहीं ज़्यादा आवश्यक हो रहा है. अनुमान है कि 2026 से हर साल कुछ इलाकों में 1 से 2 मीटर तक ज़मीन का कटाव हो सकता है. इस बेहद संवेदनशील इलाके में समंदर तट, समुद्री इकोसिस्टम और आसपास के मूल ढांचों को खतरा है. रेत की भरपाई, सुरक्षा के ढांचे बनाने से लेकर प्राकृतिक सुरक्षा उपाय बनाए रखने तक संबद्ध विशेषज्ञ लगूनों की स्थितियों और तूफानों के खतरों को ध्यान में रखते हुए अब हाइब्रिड समाधान अपनाने की सलाह दे रहे हैं. वैश्विक स्तर पर खाद्य सामानों के आयात को लेकर अनिश्चितताओं को ध्यान में रखते हुए फागे खुद को फिर से व्यवस्थित कर रहा है. इस दिशा में देश के खेतीहरों और पशुपालकों के लिए विभिन्न सहायता योजनाओं में बदलाव लाए जा रहे हैं. मकसद है मौजूदा चुनौतियों का बेहतर सामना करना और कृषि क्षेत्र की मजबूती बढ़ाना. याद रहे कि मॉरिशस में स्थानीय उपभोग का लगभग 70% भाग आयात किया जाता है. अंतर्राष्ट्रीय खबरों में यूक्रेन की राजधानी कीव के पास एक आवासीय इलाके में रूसी ताकतों द्वारा किए गए ड्रोन हमले में कम से कम 37 लोगों की मौत हुई है. 400 से ज़्यादा लोग घायल बताए गए हैं. ये हमला यूक्रेनियन सेना के एक हथियार भंडार को निशाना बनाकर किया गया था. ये थी अब तक की खबरें. थोड़ी देर में शोक समाचार. शोक समाचार सुनिए. शांतिलाल दाजी स्ट्रीट रोजिल में 39 साल की 39 years old श्रीमती शालिनी धनपत भवानी दीन पैदाशी नाम धनपत, जो शालिनी नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, इनकी मृत्यु हो गई है. इनकी अर्थी मंगलवार

0: पहली सितंबर को दिन के 10 बजे इनके मकान शांतिलाल दाजी स्ट्रीट रोजिल से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए गांधी पालमा की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन ऑन ट्यूसडे 1 सितंबर। शोक में डूबे इस परिवार के साथ हमारी गहरी संवेदना है।
1: Plug and play. RM2. Plug and play.

0: Plug and play.
1: RM2.
2: 3:07 हो चुके हैं दोस्तों और आप जुड़ गए हैं अपने ही प्लग इन प्ले के साथ, जहां पर हम पिछले 3 घंटे से एक साथ हैं और आप सबके मैसेजेस बता रहे हैं कि आप बहुत इंजॉय कर रहे हैं, आपका संडे बिल्कुल फिट एंड फाइन चल रहा है, तो इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। अगर आप स्माइल कर रहे हैं तो यहां पर डेफिनेटली मैं भी बहुत ही खुश हूं और स्माइल कर रही हूं। और अभी ये जो आप गाना सुन रहे थे अरिजीत सिंह के लिए आवाज़ में, सुकृति कक्कर और विशाल एंड शियाकर की आवाज़ में, बहुत ही प्यारा गाना, स्टाइल बहुत अच्छा बॉलीवुड का। हमें जब भी कोई स्टाइल शाहरुख लाए या कोई भी लेकर आता है तो वो कहते हैं ना कि वो फिर सबका ही वो स्टाइल बन जाता है। और आजकल अगर आप शाम को देखना किसी ना किसी पार्टी में, कोई ना कोई शाहरुख खान जैसा ज़रूर नज़र आएगा। ऐसा होता है कि हाँ भाई, उन्होंने उन्हें कॉपी नहीं किया, बट उनकी बस जो कर रहे हैं उनके स्टाइल को अपना रहे हैं। और ये चाहे लेडीज़ के साथ में होता है कि

0: जैसे ही कोई हमारी एक्ट्रेस आती है उसने बहुत ही अच्छी चीज़ डाली ऐसी होती है जिससे हमें लगता है कि हाँ हमारी भी थोड़ी सी पर्सनालिटी बन जाएगी, तो बस हमें करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए। बॉलीवुड है इसलिए क्योंकि उसने हमें बहुत कुछ सिखाया है, तो ऐसे ही सिखाते सिखाते हमने बड़े सारे गाने भी सीख लिए हैं और लिरिक्स भी सीख लिए हैं। तो आपको याद होगा बहुत सारे पुराने गाने, क्योंकि हम आने वाले हैं मेन बात पे, मेन मुद्दे पे, क्योंकि हम थोड़ी देर में खेलेंगे आपके साथ एक प्यारी सी गेम। तो जिनको जिनको पता है, चाहे वो कोई भी एज में हो, मैं तो आपको कहूँगी कि आप साथ रहिएगा, क्योंकि जब आप ये गेम खेलेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा और साथ में आपको वो गाना सुनने को मिलेगा जो बहुत टाइम से नहीं सुना होगा आपने। हो सकता है वो इस टाइम के हिसाब से नहीं हो, पर मज़ा बड़ा आएगा। चलो इंजॉय कीजिए इस गाने को।
1: Plug and play.
2: RM2.
1: Plug and play.

0: plug and play.
1: RM2.
2: जिसका ये बहुत देर से इंतज़ार हो रहा था कि वो मोमेंट कब आएगा जब गेम खेली जाएगी और वहाँ पर आप जीत पाएंगे, यस टिकट जीत पाएंगे। तो चलिए आपको सबसे पहले बता देते हैं कि आज विनर को क्या मिलने वाला है। आपको मिलेगी एंट्री टिकट कॉन्सर्ट ऑन 4th सितंबर 2026 ऑफर्ड बाय आई मीडिया। आई मीडिया ब्रिंग्स टू मॉरिशस मुख्तार शाह द वॉइस ऑफ मुकेश साहब फॉर टू शोज ऑन फ्राइडे Friday 4th and Sunday 6th September at Kudon Arts Center, जहाँ पर आपको टिकट मिलेगी दो शोज़ की, जो कि फ्राइडे को होगा 4th को और संडे को, और 6th September को Kudon Arts Center में मुख्तार शाह जी की जो आवाज़ है बिल्कुल मुकेश साहब की जैसे मिलती है, और वो अहमदाबाद गुजरात इंडिया से हैं और वो आ रहे हैं हमारे बीच में यानी कि मॉरिशस में, और उनकी जो वॉइस है आप मतलब 50s के गाने वो गाएंगे, 60s के गाएंगे, 70s के गाएंगे। हो सकता है कि वैसे तो मुकेश साहब की आवाज़ सभी को इतनी ज़्यादा पसंद है, न्यू जनरेशन को भी पसंद है, पर अगर आपके पेरेंट्स हैं जिनको उनकी आवाज़ पसंद है तो आप वो टिकट उनको दे सकते हैं, उनके साथ खेल सकते हैं, उनको बता सकते हैं कि आप ये गेम ज़रूर खेलिए, और उन्हें ये पता ज़रूर होगा। तो हम तो आपको ही कहेंगे कि आप वहाँ पर बहुत ही एक ऐसा एनवायरनमेंट देख पाएंगे जहाँ पर पुराने गानों का नज़ारा होगा। स्पेशली वहाँ पर उनके साथ को सिंगर होंगी वर्षा रानी बिसेसर एंड विशाल मंगरू जी, जो कि बहुत ही फाइनेस्ट म्यूजिशियंस के साथ में होंगे, जहां पर मिस्टर विजय मुन्ना सामी एमबीसी इज़ इनवाइटिंग यू फॉर टू विन अ टिकट, जो कि आपके लिए बहुत ही स्पेशल रहेगी। तो चलिए आपके साथ खेलते हैं एक बहुत ही प्यारी सी छोटी सी गेम, वहां पर आपको सुनने को मिल सकते हैं मैं पल दो पल का शायर हूं, दोस्त दोस्त ना रहा मुख्तार शाह जी की आवाज़ में। तो मैं तो आपको इतना ही कहूँगी, आपने बहुत सही समय चुना है इस गेम को खेलने के लिए। तो आपके लिए बहुत ही सिंपल है, मैं पहले आपको ये बता देती हूँ कि आपने अपने एक्साइटमेंट में ये नहीं भूलना है कि आप एड्रेस देना भूल जाएं, अपना नाम देना भूल जाएं या टेलीफोन नंबर देना भूल जाएं। आपको ये तीन चीज़ें ध्यान रखनी है तभी है आप एलिजिबल होंगे। आपको बताना है कि मुकेश साहब जो कि महान गायक हैं बॉलीवुड के, उनकी आवाज़ जो है वो सबसे ज़्यादा किस पर फिल्माई गई। आपका पहला ऑप्शन है जितेंद्र कपूर के ऊपर, बी ऑप्शन है धर्मेंद्र साहब के ऊपर, सी राज कपूर के ऊपर। तो आपको ये बस बताना है, आपके पास कुछ टाइम रहेगा, आपको फटाफट से बताना है कि उनकी आवाज़ जो है सबसे ज़्यादा किस पे, किस एक्टर पे फिल्माई गई, और साथ में उनकी सबसे अच्छी आवाज़ किस पर रही। तो जितेंद्र जी, सेकंड धर्मेंद्र जी, थर्ड राज कपूर जी। तो फिर हम खेलेंगे और विनर चूज़ करेंगे। तो आप बस, आपके पास थोड़ा सा टाइम है, इन्जॉय कीजिए इस गाने को और उसके साथ में जुड़ेंगे फिर से।
0: Plug and play.
1: RM2.
0: Plug and play.

मोहब्बतों में जीने वाले खुश नसीब हैं, मोहब्बतों में मरने वाले भी अजीब हैं। अजीम है हमारी दास्तां जाने मन, फासलों पे रहते हैं

0: Plug and play.
1: RM2.
2: क्या गाना है, क्या गाना है भाई, ये बहुत ही मज़ेदार गाना था, इसलिए मुझे पता है कि आपके दिल की धड़कनें तेज़ हो रही होंगी और एहसास हो रहा होगा कौन जीता होगा कौन जीता होगा। चलिए भाई, हम आपको बता देते हैं कि हमने आपके साथ एक प्यारी सी छोटी सी प्यारी सी मीठी मीठी सी गेम खेली थी और वहाँ पर आपको मिलने वाला था द विनर विल गेट वन एंट्री टिकट फॉर द कंसर्ट ऑन 4th September 2026 ऑफर्ड बाय आई मीटिया ब्रिंग्स टू मॉरिशस मुख्तार शाह द वॉइस ऑफ मुकेश फॉर टू शोज ऑन फ्राइडे 4th ऑफ सेप्टेम्बर संडे एंड 6th September एट Kudon Art Center. Mukhtar Shah is from Ahmedabad, Gujarat, India, and has been the worldwide there knows him as Mukesh voice. Mukhtar Shah jo hai, unki jo voice quality hai, usko koi nahi bhul sakta. Wo gayenge aapke liye 50s ke gaane, 60s ke gaane, 70s ke gaane, aur saath mein aapko milega saath co-singer वर्षा रानी बिसेसर और विशाल मंगरू जी के साथ में आवाज़, और साथ में बहुत ही फाइनेस्ट म्यूजिशियन होंगे अंडर द म्यूजिकल डायरेक्शन ऑफ विजय मुनासामी। एमबीसी इज इनवाइटिंग यू टू पार्टिसिपेट एंड विन दिस टिकट। तो हमने आपसे बड़ा प्यारा सा छोटा सा क्वेश्चन किया था जिसमें आप जीत सकेंगे, आपको हमने बता दिया, पर आपने वही गलती करी जो हमेशा कर जाते हैं, कईयों ने एक्साइटमेंट में एड्रेस नहीं डाला, कईयों ने एक्साइटमेंट में नाम नहीं डाला, कईयों ने एक्साइटमेंट में बस वो गलत आंसर दे दिया। तो कोई बात नहीं, हम तो एवरीडे खेलते हैं ना आपके साथ, पर आपको हम इतना ही बोलेंगे जो विनर होगा उसको क्या मिलने वाला है ये ले। चलो जी, विनर का भी नाम अनाउंस करते हैं। तालियां बजने देते हैं और हम आपको बताते हैं कि किसने क्या जीता। सबसे पहले बता देते हैं कि जीतने वाले का नाम, जी जी जी जी बिल्कुल, आप हैं रेशमा पितो से। कंग्रेचुलेशंस मैम, आपने जीता है, लकी विनर बने हैं आप, और आपको सुनने को मिलेगा मुकेश जी की आवाज़ में मैं दो पल का शायर हूँ, दोस्त दोस्त ना रहा, द वॉइस ऑफ मुख्तार शाह, और उनके बहुत से गाने जो मुकेश साहब के हैं, आपको मिलेगी एक एंट्री टिकट। तो बस आप रेशमा जी जाइए, इंजॉय कीजिए और हमारे साथ खेलते रहिए हमेशा। और आप सब ने जिन्होंने भी खेला है हमारे साथ, आपको भी बहुत बहुत थैंक यू। बस आपको इतना ही कहेंगे, हमेशा जब भी कोई गेम खेले एड्रेस, टेलीफोन नंबर और अपना पूरा नाम बताया कीजिए और आंसर थोड़ा सा ढूंढ लिया कीजिए। इंजॉय कीजिए गाने को।
0: Plug and play.
1: RM2.
0: Plug and play.

0: track and play.
1: RM2.
2: 3:43 हो चुके हैं दोस्तों और आप जुड़े हैं अपने ही प्रोग्राम के साथ और मैं हूँ इस समय आपके साथ पूनम। तो इन्जॉय कर रहे हैं मुझे 100% पता है क्योंकि हम पिछले 3 घंटे से एक साथ मस्ती कर रहे हैं और आपके मैसेजेस को ना पढ़े ऐसा हो नहीं सकता। इस समय हमारे साथ दे रहे हैं मेहन सी गोविंद जी जो कि लाल माटी से हैं, अपनी वाइफ इश्वानी के साथ और अपने पूरे परिवार के साथ यानी विद्यानी करुणा कियांचा आशी कुशाल रोशान जीतन लवाचा से सभी विश कर रहे हैं और एक दूसरे को बस कह रहे हैं अपना अपना ख्याल रखो। और मेहन जी स्पेशली कह रहे हैं मेरी वाइफ के लिए गाना ज़रूर चलाएगा बिकॉज़ आई लव हर। बिल्कुल जी चलाएंगे, थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए, उनको हमेशा खुश रखिए। और साथ में हमारे साथ जुड़ी हुई है रेणुका।

रघुवर जी जिनका आज बर्थडे है, जो कि आज 50 साल की हो गई है. लव एंड विशेस फ्रॉम सूरज चुरमुन जी एंड रघुवर फैमिली. वो बोल रहे हैं कि जितना आपने प्यार सबको दिया है, सभी रिलेटिव्स को, सभी फैमिली को, हमेशा आपको भी इतना प्यार मिलता रहे. और हम तो यही चाहते हैं कि ज़िंदगी आपकी खूबसूरत हो, फूलों भरी हो. क्या बात है, थैंक यू सो मच आप सबके प्यार के लिए. शिवांश जुड़े हुए हैं और उनका भी आज बर्थडे है. सुमित राजा, रवि, प्रियांशी उन्हें विश कर रहे हैं. तो चलिए भाई, ऐसा कैसे हो सकता है किसी का बर्थडे हो और हम एक प्यारा सा म्यूजिक ना चलाएं उनके लिए. एंजॉय कीजिए म्यूजिक को और विशिंग यू वेरी हैप्पी बर्थडे ऑल. बट जिनका भी बर्थडे है, जिन्होंने मैसेज नहीं किया, आप सब के लिए भी हम कहते हैं ये.

0: रेडियो मस्ती।
1: Plug and play.
2: RM2.
1: Plug and play.

0: Plug and play.
1: RM2.
2: 3:53 मिनट हो चुके हैं दोस्तों. ये शो बहुत ही कमाल का रहा क्योंकि आप सबके मैसेजेस आ रहे हैं. जिस तरह एहसास हो रहा है कि हाँ आप सभी को ये प्रोग्राम बहुत पसंद आया. तो उससे पहले हम चला रहे थे बॉली ब्रंच और उसके बाद हमने ज्वाइन किया सबको करवाया और कहा कि आज भाई प्लग एंड प्ले भी शुरू कर देते हैं. और प्लग एंड प्ले में आपने इतना साथ दिया. हमने गेम्स खेली, इंजॉय किया, बातें की, मैसेजेस पढ़े

0: और आप सब खुश हैं तो मैं भी इस तरीके से दिल करता है कि मतलब यहीं रहे, पर क्या करें, दूसरे के आने की एंट्री भी तो चाहिए ना। तो मेरे बाद मेरे जाने का टाइम हो चुका है, पर मेरे जाने के बाद आपको साथ मिलने वाला है संजय जी का, तो उनका साथ भी दीजिएगा, इंजॉय कीजिएगा, जो भी काम कर रहे हैं करते रहिएगा। बाहर थोड़ी सी ठंडक है तो थोड़ा सा अपना ख्याल रखिएगा, थोड़ा कुछ वार्म पहन के रखिएगा, कुछ गर्म गर्म खाइएगा, परिवार के साथ रहिएगा, गप्पे शप्पे मारिएगा, और फिर उसके बाद आपको हम इतना ही कहेंगे कि जब मॉर्निंग में उठें तो बिल्कुल फ्रेश फ्रेश उठिएगा, और बस यही है हमारा प्यार और आपका प्यार। तो चलिए इंजॉय कीजिए इस ब्यूटीफुल गाने को, और उसके साथ मुझे दीजिए इजाजत मेरी तरफ से, बाय बाय।
1: Plug and play.
2: RM2.
1: Plug and play.

0: subscribe to Radio Masti.
1: The time is brought to you by
2: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
1: And Rapid Peanut Butter. Creamy and crunchy premium peanut butter.
0: Radio Masti.
3: North, South,
0: 103.5.
3: East, West,
0: 96.4.
3: Center,
0: 99.4.
4: RM2 Radio Musti.
0: Radio Musti.
4: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti.
5: शाम के चार बज रहे हैं। सुनते समाचार अदिति जी के साथ नमस्कार।
6: नमस्कार संजय, श्रोताओं को भी नमस्कार। बैंक ऑफ मॉरिशस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनी एक झूठी तस्वीर को लेकर जनता का ध्यान आकर्षित कर रहा है, जिसमें केंद्रीय बैंक की गवर्नर प्रिसिला अमाथुरा ताकू को जनता से एक फर्जी इन्वेस्टमेंट स्कीम में शामिल होने के लिए आमंत्रित करते हुए दिखाया गया है। बैंक ऑफ मॉरिशस जनता से सावधानी बरतने और इस प्रकार की किसी भी धोखाधड़ी की स्कीम में निवेश न करने की मांग करता है। वैश्विक स्तर पर खाद्य सामानों के आयात को लेकर अनिश्चितताओं को ध्यान में रखते हुए फागे खुद को फिर से व्यवस्थित कर रहा है। दिशा में देश के खेतीहरों और पशुपालकों के लिए विभिन्न सहायता योजनाओं में बदलाव लाए जा रहे हैं। मकसद है मौजूदा चुनौतियों का बेहतर सामना करना और कृषि क्षेत्र की मजबूती बढ़ाना। याद रहे कि मॉरिशस में स्थानीय उपभोग का लगभग 70% भाग आयात किया जाता है। तोबिश में समंदर के बढ़ते जलस्तर और इरोजन की समस्या से निपटने के लिए जरूरी उपाय लागू करना पहले से कहीं ज्यादा आवश्यक हो रहा है। अनुमान है कि 2026 से हर साल कुछ इलाकों में 1 से 2 मीटर तक जमीन का कटाव होगा। इस बेहद संवेदनशील इलाके में समंदर तट, समुद्री इकोसिस्टम और आसपास के मूल ढांचों को खतरा हो सकता है। रेत की भरपाई, सुरक्षा के ढांचे बनाने से लेकर प्राकृतिक सुरक्षा उपाय बनाए रखने तक संबद्ध विशेषज्ञ लगूनों की स्थितियों और तूफानों के खतरों को ध्यान में रखते हुए अब हाइब्रिड समाधान अपनाने की सलाह दे रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में नेपाल में उत्तरी भयानक बाढ़ में मरने वालों की संख्या 787 तक पहुंच गई है और अभी भी 2500 से ज्यादा लोग लापता बताए जा रहे हैं। बचाव कार्य अभी भी जारी है और लोगों को कीचड़ से निकाला जा रहा है। भारत और चीन सहित कई देशों की तरफ से मदद प्राप्त हो रही है। इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए, आगे आ दीजिए। नमस्कार।
7: ये हवा चलती है तो बहुत सर्दी लगती है।
8: मैं आग जलाने की कोशिश करता हूँ।
7: लकड़ियाँ गीली हैं।
8: आज तो मैं पानी में भी आग लगा सकता हूँ।
7: मुझे बाहों में ले लो, खुद बखुद आग लग जाएगी।
8: नहीं,
7: देखो मुझे तड़पाओगे ना तो मैं तुम्हें
8: क्या
7: मैं तुम्हें दांतों से काट खाऊंगी और तुम्हारा दिल

0: आपकी बेकरारी को दूर करने साथ निभाने ऑन द फ्रीक्वेंसीज ऑफ रेडियो मस्ती आ चुके हैं हम एज एवरी संडे इवनिंग यस हमारा आपका साथ बना रहेगा रात के 7 बजे तक विशिंग यू ऑल अ वेरी वेरी नाइस लिसनिंग
1: Music, tuk-tuk-tuk.
2: RM2. Radio.

0: रेडियो मस्ती करके श्री श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव 3, 4 और 5 सितंबर 2026 हर शाम 6 बजे से हर कृष्ण मंदिर लॉन्ग माउंटेन 3 दिन का दिव्य उत्सव भक्ति आनंद और कृष्ण प्रेम का रंगों में रंगने का अवसर। भारत से पधारने वाले ऋषिगण मधुर कीर्तन घुंसी मृदंग की ताल और श्री कृष्ण की मनमोहक लीला में सबका एक ही हाल। बच्चों के लिए आनंद मेला, नाटक, नृत्य, गौ पूजा, श्लोक रेसिटेशन, क्विज और स्वादिष्ट महाप्रसाद। अपने परिवार के साथ जरूर आइए और बनिए श्री श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव का हिस्सा।
1: RM2
0: रेडियो मस्ती
1: म्यूजिक टकटकाता।
0: RM2 रेडियो मस्ती।
2: ऐसे क्या देख रहे हो?
3: सपना, बहुत दिनों बाद तुम्हें।
2: बहुत दिनों बाद क्या?
3: बहुत दिनों बाद तुम्हें इतना सजते सवरते देखा है।
2: तुम्हारा जन्मदिन जो है, हैप्पी बर्थडे। आई लव यू।
3: फिर कहो।
2: आई लव यू।
3: जोर से कहो।
2: आई लव यू। आई लव

0: म्यूजिक टकटकाता
1: RM2 रेडियो मस्ती।
2: यकीन अब कयामत का संगीत 4:20। थैंक यू डियर लिसनर्स फॉर कनेक्टिंग वेव रेडियो मस्ती एवरी संडे इवनिंग हमारे साथ। आई डू होप कि ये वीकेंड अच्छा गुजरा आप सबों के लिए एंड संडे की शाम भी अच्छी गुजर रही होगी। इट्स बीन रादर कोल्ड, हवा भी तेज, हवा के तेज झोंके भी बह रहे थे और यहाँ पर खास ध्यान हम जो ऑटोमोबिलिस्ट हैं, खासकर जो मोटरसाइकिल्स चला रहे हैं इन वेरी एक्सपोज्ड एरियाज। आज सुबह को मैं खुद ड्राइव कर रहा था और सुगेज के जो वहाँ पर जो टर्न है वहाँ पर ड्राइव करते हुए थे, आई जस्ट फेल्ट लाइक माई कार जस्ट मूव्ड बिकॉज ऑफ अ स्ट्रॉन्ग गस्ट ऑफ विंड। अब गाड़ी की ऐसी हालत है तो आई कैन इमेजिन जो मोटरसाइकिल्स हैं उनकी हालत कैसी होगी। सो प्लीज़ ड्राइव वेरी केयरफुली एंड बीवेयर ऑफ साइडवेज विंड्स व्हेन यू आर ड्राइविंग योर मोटरसाइकिल। लेकिन हाँ, तो ऑल दोज हु आर लिसनिंग व्हाइल ड्राइविंग एंड ऑल दोज एट होम एंड ऑल दोज एट वर्क, लेट मी टेल यू कि आज फ्रॉम 5 विल बी गिविंग यू लाइव जो कुछ बीत रहा इन इंग्लिश प्रीमियर लीग, जहां पर 3 मैचेस शुरू होने वाले हैं, चेल्सी, ब्राइटन, लीड्स, ब्रेंटफोर्ड और संडरलैंड, फुलहम, जबकि आज का लेट मैच होगा बिटवीन यूनाइटेड एंड इप्सविच टाउन। इन सबके इवॉल्विंग स्कोर्स हम आपको देंगे ही लाइव एंड डायरेक्ट।

0: म्यूजिक टकटकाटक
1: RM2 रेडियो मस्ती
2: तेरे हवाले हैं जिंदगी. Thank you for your numerous messages. Loud music echoing around and preparing biryani right now. Message hai Dagan Shweta Ravish Prashant Lavesha Kevar se from Ghosh Nova. Aaj ki raat achhi menu lag rahi hai aapke yahan on the side of Ghosh Nova in the northeast. Jyoti ji hamara saath nibha rahi hain from Chateau Benares. Unki or se next I'm going for a whole family. Thank you Jyoti ji. Hit music on Radio Masti. Ye message hai Geeta Shweta and Buraram family from Chateau Benares. Thank you for your messages. Dekhte hain ki WhatsApp par kya kya. Mala ji, Mala si Sahai ji likhte hain Jai Siya Ram bhai ji. Aise mausam mein aapka saath dena aur wo bhi ek garam pyaale chai ke saath. Oh my god. काश करी कोई मेरे लिए एक प्याली चाय लेकर आ जाता तो कोई बात नहीं. हम खूबसूरत गानों हिस्से काम चला लेंगे. लेकिन थैंक यू माला जी चाय की खुशबू हम तक पहुंचाने के लिए. एंड विशिंग ए वेरी हैप्पी 35th बर्थडे टू आकाश चेतन मनसुख. आकाश जी वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू फ्रॉम द होल मनसुख फैमिली ऑफ बाम्बू.

0: म्यूजिक टकटकाटक
1: RM2 रेडियो मस्ती,
2: तू ही हकीकत तू ही पिया, रोमांटिक गानों का सिलसिला ऑन द फ्रीक्वेंसीज ऑफ रेडियो मस्ती संजय के साथ। थैंक यू फॉर ऑल योर मैसेजेस। प्रीतम बीतू जी हमें याद करें फ्रॉम पीतो, नेक्स्ट आई एम गोइंग फॉर द होल फैमिली। ऑल्सो निशा जी from Chemegonier requesting next song for the Gokul family jisse mein hamare sath jure hue hain, and this message aayi hai flux se, jana ne agle gaane ki farmaish ki hai for the whole Shiv Saran family.

फैमिली थैंक यू। और ये मैसेज है इनकी ओर से जिन्होंने कहा है कि कृष्ण भगवान बहुत ही खुश होंगे क्योंकि आने वाले दिनों में वी आर ऑल गोइंग टू सेलिब्रेट कृष्ण जन्माष्टमी, सो ऑल द डिवोटीज ऑफ कृष्णा वेरी वेरी हैप्पी। यस, श्रावण मास तो पिछले शुक्रवार को समाप्त हुआ एंड वी आर ऑल इन भाद्रपद, और भाद्रपद में दो प्रमुख त्योहारें आती हैं जिनमें से पहला कृष्ण जन्माष्टमी। सो ऑल गियरिंग अप टू सेलिब्रेट कृष्ण जन्माष्टमी दिस कमिंग फ्राइडे, और तैयारियां तो अभी से शुरू हो चुकी हैं। सो विशिंग यू ऑल अ वेरी वेरी फ्रूटफुल प्रिपरेशन बिफोर जन्माष्टमी फॉर दिस कमिंग फ्राइडे।

0: म्यूजिक टक टक टक
1: RM2 रेडियो मस्ती।
2: प्यार प्यार प्यार जन्नत है, ख्वाबों की दुनिया में दिल की हर धड़कन उसका नाम लेती है, उसकी आंखों में जो जुनून है। दो दिन बस दो पल की तरह गुजर गए, अब बस

0: म्यूजिक टकटकाटक
1: RM2 रेडियो मस्ती
2: अ ब्यूटीफुल वेलकम टू ऑल दोस जो इस समय मॉरिशस में हमारा साथ निभा रहे हैं इक्वली फ्रॉम अब्रॉड थैंक यू आपकी इस वफादारी के लिए एंड फॉर लविंग द सिलेक्शन इट्स फ्रॉम द दिल दिल से मिले दिल तुम मिले इन द वॉइस ऑफ नीरज श्रीधर विशिंग यू ऑल अ वेरी नाइस लिसनिंग एंड वेलकम इन द सेकंड आवर ऑफ टक टक अटक

थैंक यू टू विनीती जी जो इस समय हमारा साथ निभा रही हैं फ्रॉम रिपाई आपके लिए एंड फॉर दोस लिसनिंग फ्रॉम द रीजन ऑफ साइपियर नेक्स्ट गाना आल्सो गोइंग फॉर ललिता जितन जी एंजॉयिंग एट द सीसाइड नाशन जी थैंक यू फॉर योर ब्यूटिफुल मैसेज And hi to all those listening from the region of Port Louis. Ajugana Abhi Charada, that was for lovely wife Hema from Katrubon, sister-in-law Hema, Yashwant Fem Silia Gaya. In fact, it was from Hematwar.

0: फैशन टिप्स पावर्ड बाय हलकरी फैशन हाउस ऑफ रेडीमेड गार्मेंट्स।
1: म्यूजिक टकटकाता
2: RM2 रेडियो मस्ती।
3: देखते हैं फर्स्ट टिप, टिप नंबर वन, द सेंस ऑफ कंफर्ट शुड बी द मेन प्रायोरिटी। आप अपने पहनावा में कितना कंफर्टेबल फील करते हैं, ये शुड बी आपका पहला प्रायोरिटी। लेकिन बात यह है कि इसके बारे में इसका इंपॉर्टेंस बहुत कम लोग जानते हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ एन इंडियन कुर्ती। If one enjoys wearing a particular style of fitting, it is important to choose the right tunic then. Kurtis from India are available in both well and ill-fitted designs. If one prefers wearing loose-fitted tops and makes a purchase for an ill-fitted one, chances are that they will be unhappy with the top. And therefore, understanding one's preference, apne aap ko janna pehchanna कि हम किस तरह की फिटिंग ज़रा पसंद करते हैं, ये बहुत ही ज़रूरी है। और इसको जानते हुए पुटिंग द कंफर्ट फर्स्ट इज एसेंशियल। टिप नंबर टू, यूज द अदर क्लोथिंग आइटम्स केयरफुली, क्योंकि जो मेन पहनावा है उसके अलावा और बहुत से एक्सेसरीज जो होते हैं वो भी आपके स्टाइल में काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। लेट्स टेक द एग्जाम्पल ऑफ इंडियन स्कार्व्स। And they are available in multiple fabric materials and designs and have a tendency to enhance the appearance of an individual. Not only are Indian shawls and scarves available for women, lekin ye sab kuch men ke liye bhi uplabdh hai. Shawls and scarves for women are colorful and available in tassels, jabki purushon ke liye the colors are more solid in nature. Wear the scarves or shawls in a stylish manner and you can add a new taste to your dressing.
0: Fashion Tips was powered by Halkori Fashion, House of Ready-Made Garments.
1: Music, Tak Tak Tak.
2: RM2, Radio Musti.

बॉलीवुड के सुरों से हम इस शाम को रंगीन बना रहे हैं और आप अपनी ओर से अपना साथ निभा रहे हैं. आप सबों को बहुत बहुत शुक्रिया. रोशनी जी, थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन एंड लविंग द सिलेक्शन. नेक्स्ट गाना आपके नाम. और ये प्यारा सा मैसेज आया है. Hi, good evening, Sanji. I'm listening to your program. Very interesting and it's very cool today. Please play a beautiful song for Hubby Vishal, Betty Yadav, Nilesh and Viresh and for the whole Masti team. Thank you. Aapko bhi bahut bahut shukriya. Krishti ji, Krishti Niket Singh ji, jo hamesha Rosebell se hamara saath nibhati hain. Aapko hamara salam. How is little Kara? Beautiful Betty Kara. Aapko hamara salam. Betty Prayan ko bhi. And for the Honiket Singh family goes the next song. Thank you for listening out there to all the listeners from Rosebell. Madhvi, next song going for wife, beautiful wife Madhvi. Unke pati ki or se, lekin bhai sahab ne apna naam nahi likha. Next song going for Bharadwaj ji of Tayak. Next gana also going for Viniti from Kripai. And all those listening out there. This one going for brother Creed Gasson from Sumita of Grand Sable. Or Sapna ji ki or se, next one going for John Prakash. Let's listen to Falak Shabbir from the film Sanam Re. इसी के साथ ही विल बी रीचिंग 6 o'clock. तब आप सुनेंगे समाचार और समाचार के बाद हमारी आपकी मुलाकात फिर से होगी. स्टे ट्यून्ड ऑन रेडियो मस्ती.

0: नमस्कार, सायंकालीन समाचारों में आपका स्वागत है। शुरुआत आज की सुर्खियों के साथ। प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने 50 साल पुराने कोविल के स्थान पर नए सुलिचित मारियामेन कोविल की आधारशिला रखी और समाज में आध्यात्मिकता तथा राष्ट्रीय विरासत के संरक्षण के महत्व पर जोर दिया। नेपाल में 26 अगस्त को आई विनाशकारी बाढ़ से 700 से ज्यादा लोगों की मौत और करीब 3000 से ज्यादा लापता। तोबिश में तटीय कटाव से निपटने के लिए विशेषज्ञ रेत भरने और कृत्रिम संरचनाओं के बजाय लगूनों की गतिशीलता और चक्रवातों के अनुकूल हाइब्रिड समाधान अपनाने पर जोर दे रहे हैं। और अंतर्राष्ट्रीय और MFDC जल्द ही स्थानीय प्रतिभाओं को तलाशने के लिए प्रतियोगिता का आयोजन करेगा। नमस्कार, इस बुलेटिन में एक बार फिर आपका स्वागत। प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने आज सुबह सुरीचित में नए मारियामेन कोविल की आधारशिला रखी। 50 साल से भी ज्यादा समय से पुराने इस कोविल की हालत समय के साथ खराब हो गई थी, इसलिए मौजूदा ढांचे को गिराकर एक नई इमारत बनाई जा रही है। डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने इस अवसर पर अपने संदेश में आध्यात्मिकता के महत्व पर बल देते हुए इसे समाज की नींव कहा। उन्होंने कहा कि सरकार राष्ट्रीय धरोहर के संरक्षण और उसे भावी पीढ़ियों तक पहुँचाने के लिए हर संभव कोशिश करेगी। सिलवाना पारिमामन रश्मि बीकर।
1: तमिल परंपरानुसार समारोह संपन्न हुआ और विधियां चलाई गईं। सुलिचित मारियामेन कोविल के लिए निर्माण के प्रारंभ का प्रतीक पुराना ढांचा 1972 का था, लेकिन इसका इतिहास इससे पूर्व 19वीं सदी से है। शर्तबंद कामगारों के आगमन के साथ सुलिचित मारियामेन कोविल के अध्यक्ष मुरुगा नारायणन ने कहा, काफी समय बीतता चला गया और कोविल पुराना हो चला। पुराने ढांचे को गिराना पड़ा और इसके बदले में एक नए कोविल को बनाया जाएगा। प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने कहा कि ये एक प्रतीकात्मक घड़ी है। उन्होंने भविष्य के लिए आस्था के कार्य की बात कही। नए कोविल के निर्माण की शुरुआत मंगलवार के लिए निर्धारित और कार्य एक वर्ष में पूरा होगा, तब यहां पर कई पर्व मनाए जा सकेंगे जैसे कि कावेदी आदि।
0: श्रावण मास हिंदुओं के लिए बहुत बड़ा महत्व रखता है। इस महीने के दौरान विशेष धार्मिक अनुष्ठान हुए। सप्ताहांत के दौरान श्रावण मास के समापन के संदर्भ में देश के कई इलाकों में पूर्णाहुति विधि संपन्न की गई। तोबिश में समंदर के बढ़ते जलस्तर और इरोजन की समस्या से निपटने के लिए जरूरी उपाय लागू करना पहले से कहीं ज्यादा आवश्यक हो रहा है। अनुमान है कि 2026

0: से हर साल कुछ इलाकों में 1 से 2 मीटर तक जमीन का कटाव होगा। इस बेहद संवेदनशील इलाके में समंदर तट, समुद्री इकोसिस्टम और आसपास के मूल ढांचों को खतरा है। रेत की भरपाई, सुरक्षा के ढांचे बनाने से लेकर प्राकृतिक सुरक्षा उपाय बनाए रखने तक संबद्ध विशेषज्ञ लगूनों की स्थितियों और तूफानों के खतरों को ध्यान में रखते हुए अब हाइब्रिड समाधान अपनाने की सलाह दे रहे हैं। सकाउनु गीता सुनरान।
1: त्वोबिश में समुद्र तट का कटाव लगातार तट को नुकसान पहुंचा रहा है। रेत के बहाव को रोकने के लिए अलग अलग उपाय किए जा रहे हैं। इनमें समुद्र तट पर दोबारा रेत डालना, लगून में ऐसी संरचनाएं बनाना जो लहरों की ताकत को कम करें और तट के किनारे सुरक्षा के लिए ढांचे बनाना शामिल हैं। डॉक्टर राजीव भीरू कहते हैं, फिलहाल 2 परियोजनाएं हैं। एक में पत्थर का इस्तेमाल किया जा रहा है और दूसरी में जियो टेक्सटाइल का। लेकिन क्या ये उपाय लंबे समय तक प्रभावी रहेंगे? समुद्री विज्ञान और तटीय समुद्र विज्ञान के विशेषज्ञ डॉक्टर राजीव भीरू का मानना है कि समुद्र तटों के पास अब भी मौजूद पक्के ढांचे कटाव को बढ़ावा देते रहेंगे। एक दीवार रेत के बहाव को नहीं रोकती बल्कि इसे तेज करती है। सभी समुद्री पौधों को नुकसान होता है। प्लेटफॉर्म मोरिस लॉविगनमों की आदि तिलक भी इसी राय से सहमत हैं। उनका कहना है कि समुद्र के किनारे होने वाले निर्माण की बेहतर और सख्त योजना जरूरी है। प्रकृति आधारित समाधान या प्रकृति और पत्थर के मिश्रण वाले समाधान, इनका मूल्यांकन करना चाहिए कि क्या ज्यादा अच्छा है हर जगह के लिए। हमारे लिए ये बेहतर समाधान है। फिलहाल त्वोबिश को तटीय सुरक्षा के लिए प्राथमिकता वाले इलाकों में शामिल किया गया है, जहां पत्थरों से सुरक्षा दीवार बनाने, दोबारा रेत डालने और समुद्र तट के विकास एवं सुधार के काम किए जाने की घोषणा की गई है।
0: वैश्विक स्तर पर खाद्य सामानों के आयात को लेकर अनिश्चितताओं को ध्यान में रखते हुए फागे खुद को फिर से व्यवस्थित कर रहा है। इस दिशा में देश के खेतीहरों और पशुपालकों के लिए विभिन्न सहायता योजनाओं में बदलाव लाए जा रहे हैं। मकसद है मौजूदा चुनौतियों का बेहतर सामना कर पाना और कृषि क्षेत्र की मजबूती बढ़ाना। याद रहे कि मॉरिशस में स्थानीय उपभोग का लगभग 70% भाग आयात किया जाता है। फाकोनाई गीता स्टार।
1: कृषि उद्योग मॉरिशस का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। ये आर्थिक विकास, खाद्य सुरक्षा और रोजगार पैदा करने में बहुत ही योगदान देता है। फागे से कई किसान और पशुपालक आर्थिक और तकनीकी सहायता प्राप्त कर रहे हैं। हालांकि फागे की 20 से ज्यादा सहायता योजनाएं हैं और उसका मानना है कि इन योजनाओं में बदलाव करना अब जरूरी हो गया है। फागे की CEO डॉक्टर माधवी मधु कहती हैं, कुछ सहायता योजनाएं 10 या 15 साल से भी ज्यादा पुरानी हैं, लेकिन समय के साथ परिस्थितियां बदल गई हैं, पैदावार की लागत, मौसम परिवर्तन, मजदूरों की समस्याएं आदि, इसलिए सब्सिडीज और ग्रांट्स पर फिर से गौर करने का समय आ गया है। अब फागे में किसी भी नई परियोजना के लिए आवेदन करने वाला व्यक्ति पहली आर्थिक सहायता मिलने के 3 महीने बाद दूसरी सहायता योजना के लिए आवेदन कर सकता है। कृषि भूमि के क्षेत्रफल और कृषि किराए की अवधि को लेकर भी अब नियमों में अधिक लचीलापन है। मेजिन कोडमास्क में सब्जियों की खेती के लिए ग्रीन हाउस चलाने वाले फरदीन लाल मोहम्मद इससे खुश हैं। वे कहते हैं, मैं और मेरा भाई दोनों के ग्रीन हाउस हैं। मेरे साथ ग्रीन हाउस हैं, टमाटर, खीरा और शिमला मिर्च रोपते हैं, कंपनियों और आम जनता के लिए खेती करते हैं। बजट में ऐलान किए कदमों के अनुसार हम और 2 स्कीम्स पाने के योग्य हैं, ताकि अपने कारोबार को हम बढ़ा सके। हमें इससे लाभ उठाना चाहिए। ग्रीन हाउस में खेती को बढ़ावा देना, यही शेल्टर्ड फार्मिंग स्कीम का उद्देश्य है। फागे के उप निदेशक अखिलानंद जी गुलुब कहते हैं, एक व्यक्ति के पास कम से कम 400 वर्ग मीटर जमीन होनी चाहिए 250 वर्ग मीटर ग्रीन हाउस बनाने के लिए। पहले एक व्यक्ति को कम से कम 2 ग्रीन हाउस दे सकते थे, अब इसे बढ़ा दिया गया है ताकि पैदावार ज्यादा हो। एक व्यक्ति को अब 4 ग्रीन हाउस मिल सकते हैं और मल्टी स्पान के लिए

0: 2000 वर्ग मीटर पर हर 500 वर्ग मीटर के लिए ग्रांट मिलेगा। मॉरिशस अपने उपभोग के लिए करीब 70% खाद्य पैदावार का आयात करता है। फागे के अनुसार ये नई योजनाएं आयात पर हमारी निर्भरता कम करने में मदद करेंगी और देश की खाद्य सुरक्षा को बेहतर ढंग से सुनिश्चित करने में मदद करेंगी।
1: बैंक ऑफ मॉरिशस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनी एक झूठी तस्वीर को लेकर जनता का ध्यान आकर्षित कर रहा है, जिसमें केंद्रीय बैंक की गवर्नर प्रिसिला मतुगाताकू को जनता से एक फर्जी इन्वेस्टमेंट स्कीम में शामिल होने के लिए आमंत्रित करते हुए दिखाया गया है। बैंक ऑफ मॉरिशस जनता से सावधानी बरतने और इस प्रकार की किसी भी धोखाधड़ी की स्कीम से निवेश न करने की मांग करता है। और स्थानीय स्तर पर ही स्थानीय अभिनेताओं अभिनेत्रियों उभरते हुए स्क्रीन राइटर्स तथा सिनेमा के शौकीन लोगों के लिए ये खबर। मॉरिशस फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन जल्द ही मॉरिशन प्रतिभाओं की तलाश के वास्ते एक प्रतियोगिता शुरू करेगा। देश में फिल्म उद्योग को नई गति देने के मकसद से इस परियोजना में एक मॉरिशस एंटरटेनमेंट अकेडमी का निर्माण शामिल है, जिसमें एक स्थानीय स्टूडियो और कैंपस की स्थापना भी होगा। पेश हैं अंजुराम गुलाम और रजनी बिकर की ये रिपोर्ट।
2: हल्की रोशनी वाले कक्ष के द्वार पर लाल रंग के सोफे मानो कोई महोत्सव। हर कोई अपने कार्य एवं भूमिका निभाने की तैयारी में। मॉरिशस फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन एक महत्वाकांक्षी परियोजना चलाना चाहता है, स्क्रिप्ट से लेकर स्क्रीन तक के सफर तक। इस तरह मॉरिशस एंटरटेनमेंट अकेडमी कायम करना, सिनेमा के एक स्टूडियो के साथ साथ मॉरिशस में एक कैंपस भी। एमएफडीसी के सीईओ केविन गति ने कहा, यही उम्मीद है कि बॉलीवुड का समा बंध जाए। आज जो ढांचे कायम कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय प्रोडक्शन के लिए तैयार खड़े हैं, साथ ही हमारी स्थानीय कहानियों को भी विदेश की ओर भेजने के लिए तैयार है। परियोजना की कुल लागत कोई 5 बिलियन रुपए। चूंकि ये रकम आसमान से तो मिलने वाली नहीं, ना ही किसी स्पेशल इफेक्ट से, अतः एमएफडीसी ने विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने के वास्ते एक कार्यक्रम का प्रस्ताव रखा। मकसद है उनसे पहली भूमिका निभाने के लिए प्रोत्साहित करना। द स्टूडियो ग्रुप के फाइनेंस एवं इन्वेस्टमेंट प्रमुख मेरेडिथ ऑरेंट ने कहा,
3: Sometimes sports and music, and at the heart of these campuses is education and training.
2: ये फिल्म स्ट्रीमिंग है, ब्रॉडकास्ट टेलीविजन, गेमिंग भी, कभी पोज, कभी संगीत। कैंपस में मुख्य रूप से शिक्षा एवं प्रशिक्षण पर जोर दिया जाएगा स्थानीय नौजवानों के लिए, ताकि यहाँ उद्योग कायम हो, न केवल स्टेज तैयार करें। कास्टिंग पर पॉल ब्रेट मौजूद, वे बर्तानी सिनेमा के प्रोड्यूसर एवं फाइनेंसर है। मुख्य रूप से उसका वाली फिल्म द किंग्स स्पीच या लेजिस्कू द रॉ और अमेरिकी कॉमेडी फिल्म शेफ के लिए, जिसमें डस्टिन हॉफमैन, रॉबर्ट डाउनी जूनियर और स्कारलेट योहानसन शामिल। द स्टूडियो ग्रुप के सह संस्थापक एवं प्रोड्यूसर पॉल ब्रेट ने कहा,
4: स्मॉल आइलैंड, यू हैव मेनी मेनी पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, बट
2: यहां पर भारी संभावनाएं हैं। एक छोटा टापू है, दुनिया के कई इलाकों के लोग हैं और जियोग्राफिकली भी अफ्रीका के साथ बहुत ही अच्छे संपर्क है। पूरे महाद्वीप में सबसे विकसित राष्ट्रों में से एक, गल्फ राष्ट्रों के साथ भी बेहतरीन संपर्क है, चीन के साथ भी ये एक बहुत ही लोकप्रिय गंतव्य है। दूसरी तरफ अपना रुमाल निकाल कर रखने की तैयारी कर लीजिए, मागी माओ या तुलसी की ही तरह एक शो होगा जिनके 200 एपिसोड्स होंगे। इसकी शूटिंग शुरू हो चुकी है।
5: Sur des histoires qui vont parler de Maurice.
2: मेजावा अफ्रीका के प्रोड्यूसर अलेक्जेंड्र रिडो ने कहा, ऐसी कहानियां हैं जो मॉरिशस के बारे में बताती हैं, मॉरिशन जनता के लिए, साथ में इलाकाई दर्शकों के लिए भी। दुनिया भर में लोगों को देखने और जानने का मौका मिलेगा कि किस तरह यहाँ लोग खास जिंदगी जी रहे हैं। ऐसे में स्थानीय प्रोड्यूसरों को भी कैमरा एक्शन बोलने की चाह। मॉरिशन प्रोड्यूसर निवेन पारिमानन ने कहा, आधारशिला रख रही है ताकि 10-15 वर्षों या इससे कम अवधि में ही एक वास्तविक फिल्म उद्योग हो, हर साल कलाकार हो, फिल्म निकले। तब तक पॉपकॉर्न तैयार रखिए। एमएफडीसी की ओर से जल्द ही स्थानीय लेजेंड पर आधारित एक फिल्म प्रसारित की जाएगी। संकेत के लिए यही बता

0: बता दें कि वे स्पाइडरमैन की तरह पोशाक तो नहीं पहनते पर नग्न ही घूमते थे। एक विनाशकारी तूफान के गुजरने के बाद लोगों को डराते थे।
1: बढ़ते अंतर्राष्ट्रीय खबरों की ओर, संयुक्त राष्ट्र ने कल जारी कम्युनिके में पहली बार नेपाल में आई आपदा के लिए ग्लोबल वार्मिंग को जिम्मेदार ठहराया है। नेपाल में हजारों लापता लोगों का पता लगाने की कोशिशें तेज की जा रही हैं। इस विनाशकारी बाढ़ से के 5 दिन बाद मरने वालों की संख्या 700 पार कर गई है और जीवित बचे लोगों के मिलने की उम्मीदें कम होती जा रही हैं। विधिवासी बोरन।
0: बुधवार को आई विनाशकारी बाढ़ के बाद नेपाल में विभिन्न जल विद्युत परियोजनाओं के 900 से अधिक लापता कामगारों की तलाश के लिए अभियान चलाया जा रहा है। आपातकालीन कर्मियों ने एक सुरंग में हवा पंप की है और भोजन गिराया है, लेकिन अभी तक अंदर मौजूद किसी भी व्यक्ति से संपर्क स्थापित नहीं हो पाया है। 3,000 से अधिक लोग अभी भी लापता हैं। अमेरिका पहले घोषित किए गए $500,000 से बढ़ाकर $3.6 मिलियन की मानवीय सहायता प्रदान कर रहा है। इस आपदा में कम से कम 750 लोगों की जान जा चुकी है। नेपाल में 700 से अधिक लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है और चीन में कम से कम 16 लोगों की मौत हुई है। नेपाली अधिकारी बढ़ते शवों की संख्या से निपटने में संघर्ष कर रहे हैं और चीनी अधिकारियों ने कहा है कि उनके खोज दलों को अभी तक कोई और जीवित व्यक्ति नहीं मिला है। भारत ने बाढ़ प्रभावित नेपाल के लिए 11 टन मानवीय सहायता लेकर अपनी चौथी राहत उड़ान रवाना की है, जिससे भारत की कुल हवाई मार्ग से भेजी गई राहत सामग्री 68.5 टन हो गई है।
1: यूक्रेन की राजधानी कीव के पास एक आवासीय इलाके में रूसी ताकतों द्वारा किए गए ड्रोन हमले में कम से कम 37 लोगों की मौत हुई है। 400 से ज्यादा लोग घायल बताए गए हैं। ये हमला यूक्रेनियन सेना के हथियारों के एक भंडार केंद्र को निशाना बनाकर किया गया था। इस पर और विदेश की कुछ अन्य खबरों पर यह अगली रिपोर्ट।
0: शुक्रवार देर रात कीव के पास एक गोला बारूद डिपो पर हुए रूसी ड्रोन हमले में कम से कम 37 लोग मारे गए, जो इस साल यूक्रेन में हुए सबसे घातक हमलों में से एक है। 2 महीने से भी कम समय में यूक्रेनी राजधानी के पास किसी हथियार डिपो पर हुआ ये दूसरा ड्रोन हमला था। एक लिखित बयान में ईरान के सर्वोच्च नेता मुज्तबा खामनेई ने मुस्लिम राष्ट्राध्यक्षों से आग्रह किया है कि वे अपने असली दुश्मन को पहचानें, उसकी योजनाओं को समझें और उसका मुकाबला करें। उप विदेश मंत्री काजम गरीब आबादी का कहना है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद है और ईरान इसे दोबारा खोलने की जल्दी में नहीं है। आइसलैंड ने एक दशक पहले पिछली वार्ताओं के रुकने के बाद यूरोपीय संघ में शामिल होने के लिए बातचीत फिर से शुरू करने की योजना को खारिज कर दिया है। एक निर्वाचन क्षेत्र को छोड़कर बाकी सभी निर्वाचन क्षेत्रों के पूर्ण परिणाम सामने आने के बाद यूरोपीय संघ के खिलाफ पड़े वोटों का प्रतिशत 52.5% से 47.5% रहा। यूरोपोल के अनुसार यूरोप के संग्रहालयों में तेजी से हिंसक और परिष्कृत आपराधिक नेटवर्क से बढ़ते खतरे का सामना करना पड़ रहा है। हाल ही में हुई एक हाई प्रोफाइल चोरी में 2 व्यक्ति गुरुवार को आगंतुकों के रूप में वियना के अप्लाइड आर्ट्स संग्रहालय में दाखिल हुए और कुछ ही देर में करोड़ों डॉलर मूल्य का एक अनमोल 200 कैरेट का प्लैटिनम और डायमंड नेकलेस लेकर वहां से फरार हो गए।
1: आखिर में चले जानते हैं स्थानीय मौसम का हाल। आम हालत मॉरिशस के लिए तेज हवाओं और ऊंची लहरों की चेतावनी बरकरार है, जो कल सोमवार 31 अगस्त दिन के 10 बजे तक जारी रहेगी। मास्कारेंस के दक्षिण में पाए जाने वाली जोरदार एंटी साइक्लोन के कारण हमारे इलाके पर तेज और ठंडी हवाएं चल रही हैं। अगले 24 घंटों के लिए अनुमान, खासकर देश के पूर्वी, दक्षिणी और सेंट्रल प्लेटो वाले इलाकों पर रह रहकर बारिश हो सकती है। हवा दक्षिण पूर्व की तरफ से 35 से 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी, जिसके झोंके कुछ जगहों पर 90 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकते हैं। जनता से खास सावधानियां बरतने की मांग की जाती है, खासकर ऊंची जगहों पर न जाएं और सड़कों पर गाड़ी चलाते हुए खासकर क्रॉस विंड्स वाली जगहों पर खास सावधानी बरतें। प्रवाह रेखा के परे समंदर खराब रहेगा। दक्षिण पश्चिमी समंदर में 4 से 6 मीटर तक की ऊंची लहरें उठेंगी, जिनका असर खासकर पश्चिमी और दक्षिणी लगूनों और तटीय इलाकों पर भी पड़ेगा। मछुआरों और समुद्री गतिविधियों में संलग्न लोगों से दूर समंदर और इन तटीय इलाकों पर भी न जाने की मांग की जाती है। तापमान सामान्य

से कम रहेगा। सेंट्रल प्लेटू पर न्यूनतम 13 से 15, अधिकतम 16 से 18 डिग्री सेल्सियस, साहिली इलाकों पर न्यूनतम 17 से 20, अधिकतम 23 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। कल सुबह 6:19 पर सूर्योदय, शाम को 6 बजे सूर्यास्त होगा।

0: शोक समाचार सुनिए। रेजिडेंस नाटुआ रोड ट्रियंग गुडलैंड्स में, नाटुआ रोड ट्रियंग गुडलैंड्स में 84 साल की 84 years old श्रीमती सियोरानी परेस, श्रीमती सियोरानी परेस जो सोनी नाम से ज़रा जानी जाती थी, इनकी मृत्यु हो गई हैं। की अर्थी कल दिन के 12 बजे के बेटे श्री नवीन गणेश के मकान नाथुआ रो त्रियोंग गुडलैंड से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बेलमो गुडलैंड की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुमारो एट नून। अलेजाक रोड नोवेल फ्रांस में, अलेजाक रोड नोवेल फ्रांस में 49 साल के 49 years old श्री मनोज कुमार बैं, जो मनोज नाम से ज़रा जाने जाते थे, इनकी मृत्यु हो गई हैं। इनकी अर्थी कल दिन के 12:30 बजे इनकी पत्नी श्रीमती कल्याणी बैं के मकान अलेजाक रोड नोवेल फ्रांस से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए रोजवेल की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुमारो एट हाफ पास्ट नून। नंबर 9 पेयर रोबेर जीरो गली रोशबा में, छिहत्तर साल के 76 years old श्री नारायण स्वामी उचामा, जो तो नारायण नाम से ज़रा जाने जाते थे, इनकी मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी कल दिन के 2 बजे इनके मकान नंबर 9 पेयर रोबेर जीरो गली रोशबा से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सिपाही भोले की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुमारो एट नून। मारामाजो गुडलैंड्स में, 32 साल के 32 years old श्री जेविन ग्रीधर जो चिपची नाम से ज़रा जाने जाते थे, इनकी मृत्यु हो गई है। इनके अर्थी कल दिन के ढाई बजे इनके पिता श्री भगवान दास ग्रीधर के मकान मारामाजो गुडलैंड से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए दाहुची की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुमारो एट हाफ पास्ट 2 PM सिमेट्री रोड अमोरी में, 76 years old श्रीमती पंजाले रंगेन पैदाशी नाम जोन की जो सरोज नाम से ज़रा जानी जाती थी, इनकी मृत्यु हो गई हैं। इनकी अर्थी कल दिन के ग्यारह बजे इनके मकान सिमेट्री रोड अमोरी से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए अमोरी की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुमारो एट 11 AM शांतिलाल दाजी स्ट्रीट रोजिल में, 39 years old श्रीमती शालिनी दनपत भवानी दीन पैदाशी नाम दनपत जो शालिनी नाम से ज़रा जानी जाती थी, इनकी मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी मंगलवार 1 सितंबर को, दिन के 10 बजे इनके मकान शांतिलाल दाजी स्ट्रीट रोजिल से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए गांधी पालवा की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन ऑन 1st of September शोक में डूबे इन परिवारों के साथ हमारी गहरी संवेदना है।
1: Your news on NBC Play, NBCRadio.tv,
2: Music, Dr. Gutter.
3: RM2, Radio Musti.

0: म्यूजिक टकटकाटक
1: RM2 रेडियो मस्ती।
2: शाम के 6:33 मिनट हुए हैं। वेलकम इन द थर्ड आवर ऑफ म्यूजिक टकटकाटक। देश विदेश के समाचार के बाद लेट मी गिव यू द लेटेस्ट फ्रॉम द स्पोर्ट्स वर्ल्ड। इंग्लिश प्रीमियर लीग की खबरें, अभी 3 मैचेस खेले जा रहे हैं, चेल्सी वर्सेस ब्राइटन, लीड्स ब्रेंटफोर्ड और संडरलैंड वर्सेस फुलहम। 74 मिनट्स प्लेड इन द मैच बिटवीन चेल्सी एंड ब्राइटन एंड द स्कोर इज चेल्सी 3 ब्राइटन 2। खेल के 32वें मिनट तक अप टू द 32nd मिनट चेल्सी हैड ऑलरेडी स्कोर्ड 3 गोल्स और ऐसा लग रहा था कि इट वाज गोइंग टू बी अ वेरी स्ट्रेट विन फॉर चेल्सी, लेकिन उसके तुरंत बाद मलिक याल्कुई ने एक कम किया फॉर ब्राइटन। फिर सेकंड हाफ में जुआन पेदो के एक ओन गोल के उपरांत ब्राइटन 2 गोल्स बना पाए, लेकिन अभी भी आज आई एम टॉकिंग टू यू चेल्सी ने एक चौथा गोल बनाया। सो इट्स अ वेरी एनिमेटेड मैच बिटवीन चेल्सी एंड ब्राइटन। फिलहाल चेल्सी 4 ब्राइटन 2, बट द फोर्थ गोल स्टिल रिमेन्स टू बी कन्फर्म्ड। दूसरे मैच में ब्रेंटफोर्ड 1-0 से जीत रहा है ऑन द फील्ड ऑफ लीड्स, यानी कि लीड्स के मैदान पर ब्रेंटफोर्ड जाकर 1-0 से जीत रहा है। गोल स्कोर बाय केविन शादे ऑन द 41st मिनट। और सनरलैंड 1-0 से जीत रहा है अगेंस्ट फुलहम। याद है आज का लेट मैच होगा बिटवीन मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड इप्सविच टाउन।

0: म्यूजिक टकटक
1: RM2 रेडियो मस्ती।
2: मैं भूल सकता हूँ तुझे पर एक शर्त पर, तू मुझसे ये वादा कर कि कोई और भी तेरी जिंदगी में आएगा जो मुझसे ज्यादा तुझसे प्यार करेगा।

0: Music Tuck
1: Tuck RM2 Radio Musti.
2: Thank you for your messages from across the world. Radha ji, hame yaad kare from Canada. Thank you, Radha ji. Every Sunday ko aapka message aa jata hai is samay. Thank you for loving the selection. ये मैसेज है कृष्ण जी की ओर से फ्रॉम कॉम्फू को लिखते हैं जय सियाराम भाई जी जय सियाराम आपको कृष्ण जी आपको मेरी तरफ से बधाई आपके बड़ी लंबी उम्र हो क्यों आज मेरा जन्मदिन है क्या लेकिन आपकी आपका आशीर्वाद हम स्वीकारते हैं हम नतमस्तक होकर स्वीकारते हैं कृष्ण जी शुक्रिया साथ आपके इस आशीर्वाद के लिए हालांकि मेरा जन्मदिन तो काफी पहले बीत चुका है कोई बात नहीं हाय संजी आप बहुत ही प्यारे गाने सुना रहे हैं ये है मैसेज अनीता जी की ओर से फ्रॉम फिकॉम फ्लैक रेडियो मस्ती पर हमेशा ऐसे ही प्यारे गाने चलते हैं अनीता जी बहुत बहुत शुक्रिया फॉर लविंग द सिलेक्शन

जो इस समय अपने किचन में डिनर तैयार कर रहे हैं और उनमें से एक हैं भाभी अंजू जी जो नूर फ्रांस से हमारा साथ निभा रही हैं सो फॉर यू और फॉर भाई साहब हैविंग डिनर ऑलरेडी ओह वाओ इट्स गुड अर्ली डिनर यानी कि सोने से पहले सब कुछ पच जाएगा एंड यू विल बी हैविंग अ वेरी नाइस स्लीप हम भी जब घर पर होते हैं तो ऐसे ही साल बीच से पहले डिनर कर लेते हैं एंड दैट हैज बिकम अ हैबिट इन इन द फैमिली नेक्स्ट गाना इनके लिए जिन्होंने अपना नाम नहीं लिखा सुरेश रूपचंद जी आपको बहुत बहुत शुक्रिया साथ निभाने के लिए और शुरुआत ही में शब खैर कोई बात नहीं है नेक्स्ट सॉन्ग गोज फॉर यू एंड फॉर द होल रूपचंद फैमिली

0: Bollywood Sizzler.
1: RM2, your number one Bollywood radio station.
2: Namaskar adab and welcome in Bollywood Sizzler. आपका इवनिंग शो एवरी संडे की रात 7 से लेकर 9 बजे तक. स्वीट हाई टू विद्या जी जो सेशल से हमारा साथ निभा रही हैं, एंड ऑल्सो अन्नू जी लिसनिंग फ्रॉम यूके. और उनकी ओर से एक प्यारा सा गाना फॉर द होल बिकारी फैमिली फ्रॉम कैटरबोन एंड स्पेशली फॉर हर डैड इन हेवन.

0: Bollywood Sizzler.
1: RM2, your number one Bollywood radio station.
2: सर बज के 13 मिनट जितने भी लोग इस समय काम रात के काम में लगे हुए हैं wishing you all bon courage for the start of this night duty. रणदीप पापा से प्रेमिला जी हमारा साथ निभा रहे हैं कहते हैं सो लवली एंड क्यूट नाइस सिलेक्शन संजी प्लीज प्ले लवली सॉन्ग फॉर मी एंड माय लवली हबी रंजीत एंड फॉर ऑल रेडियो मस्ती टीम थैंक यू

0: Bollywood Sizzler.
1: RM2, your number one Bollywood radio station.
2: बस इतना सा ख्वाब है चलते चलते लेट मी गिव यू द फाइनल रिजल्ट ऑफ द मैचेस जो खेले जा चुके हैं चेल्सी 4 ब्राइटन 3 लीड्स 1 ब्रेंटफोर्ड 1 संडरलैंड 1 फुलहम 0 लेट मैच होगा बिटवीन यूनाइटेड एंड इप्सविच टाउन और वापस संगीत की दुनिया में एंड दिस नेक्स्ट वन गोज हमारे दोस्त गिरीश के लिए And for all those who like this song.

देते हैं ये मैसेज. माय नेम इज क्रिश एंड आई एम रिक्वेस्टिंग अ लवली सॉन्ग फॉर माय लवली वाइफ अनुराधा. आवर लव इज ग्रेट. ऑफ कोर्स ये गाना जाता है फॉर क्रिश एंड फॉर अनुराधा. Dear listeners, feel free to drop me a message on 54991294.

0: Bollywood Sizzler.
1: RM2, your number one Bollywood radio station.
2: Namaskar Adab and welcome in the second hour of Bollywood Sizzlers. चांदनी रात में तेरा चेहरा याद आता है, हर एक सितारा मुझे तेरी कहानी सुनाता है. थैंक यू फॉर योर मैसेजेस. वनिशा जी ने हमें याद किया है और वनिशा जी की ओर से नेक्स्ट गाना जाता है. इससे पहले वो कहती हैं प्लेलिस्ट इज सो कूल संजी. वो लिखती हैं वन ऑफ द नेक्स्ट सॉन्ग फॉर माय हबी राजीव, बेटी कायना और बेटे रिवान के लिए. ऑल्सो गोइंग फॉर माता फॉर मामा माला, पापा गौतम एंड द होल सिगुलाम फैमिली ऑफ मोताई ब्लॉश.

0: Bollywood Sizzler.
1: RM2, your number one Bollywood radio station.
2: होता है जो लव से ज्यादा इश्क वाला लव. लेते हैं ये अगला मैसेज. नमस्ते संजी, होप यू आर फाइन. ऑल सॉन्ग्स आर मस्ट ऑन RM2. अ सॉन्ग फॉर ऑल दोज हु आर वर्किंग एज सिक्योरिटी गार्ड्स, स्पेशली फॉर माय बिग ब्रदर मनोज गिरोधर. मैसेज है सुया बिहारी जी की ओर से फ्रॉम कोंकोमा.

time to take up the next message. भेजने वाली है राधा जी और राधा जी विशेष तौर पर ये गाना मांगते हैं अपने

0: दुआ करते हैं कि आपके दिलों के सभी अरमां पूरे हों। चलिए अब पूरा करते हैं पूर्णिमा जी की अरमां, वो जो रहते हैं त्रियुले और जो बहुत ही प्यार से हमारे साथ जुड़ी ही हुई हैं।
1: रेडियो मस्ती।
0: पूर्णिमा जी लिखती है, नमस्ते सन जी, सो सो नाइस टू हियर यू ऑन एयर दिस इवनिंग, थैंक यू फॉर प्लेइंग सच nice tracks. Dedicate the next song for me and for all the listeners up there. Thank you, Purnima ji.

0: किसी और के लिए तो रोमांटिक हो सकता है, मेरे लिए ये तो इस गाने में प्रभु की झलक मिलती है।
1: बॉलीवुड सीज़लर
2: RM2, your number one Bollywood radio station.
0: You're listening to Bollywood Sizzler Sanjay ke saath, and this one going specially for Anita ji from Flak. Kehte hain ki mausam bahut hi sakht hai, lekin gaane bahut hi warm.

0: प्यार जब इबादत बन जाए तो क्या बात है, जिधर देखे वही चेहरा नजर आए, जो भी सुने उन्हीं की आवाज सुनाई दे। नेक्स्ट गाना जाता है आशा जी के लिए, जो इस कड़ी से हमारा साथ निभा रही है।
1: सुनते रहो

0: Bollywood Sizzler.
1: RM2, your number one Bollywood radio station.
2: Dear listeners, शाम के 4 बजे से लेकर अभी तक आपने हमारा साथ निभाया. बहुत बहुत शुक्रिया आप सबों को. And I hope you've loved ये सफर, ये सुरीला सफर. I'm gonna leave you with एक ऐसा गाना जो पिछले हफ्ते से मेरे दिल में बस गया है. In the voices of Javed Ali and Stefan Devesi. It's a beautiful song. ये गाना से भी बढ़कर है. I leave you to listen and to digest it, to listen it with your heart. Wishing you all a very week, a good week, a very nice week ahead. A very resumption of work tomorrow. Jo acha ho. And thank you once again for all the love and all the respect. फिर से मिलेंगे.

होकर ईश्वर ने चाहा था। धन्यवाद, नमस्कार, जय सियाराम। हर हर महादेव।

0: Late Night Grooves
1: RM2 Radio Masti.
0: गुड इवनिंग जी, नमस्कार और गिनिशा का प्रणाम। आप सभी लोगों का स्वागत है इन योर लेट नाइट ग्रूव्स ऑन RM2 रेडियो मस्ती। वैसे रात धीरे धीरे अपनी बाहों में हमें समेट रही है। कभी कभी ना दिन के भागदौड़ के बाद बस एक सुकून भरी रात, एक अच्छा सा गाना और किसी अपने की याद ही काफ़ी होती है। वैसे अगर आज आपका दिन अच्छा नहीं गया तो प्लीज़ उसे अपने दिल पर लेकर मत सोइए। कल एक नई सुबह होगी, नए मौके होंगे और शायद वो खुशियाँ भी जो आज आपसे थोड़े से दूर हैं। सो रिलैक्स, स्माइल, लेट द म्यूजिक हील योर हार्ट, क्योंकि यू आर लिसनिंग to your late night grooves with me, RJ Ginisha.

0: RM2 रेडियो मस्ती।
1: दोस्तों, प्यार हमेशा बड़े बड़े वर्ड्स का एक्सपेंसिव। मेरे प्यारे प्यारे लिसनर्स, प्यार जो है ना, हमेशा बड़े बड़े वर्ड्स या एक्सपेंसिव गिफ्ट्स से प्रूव नहीं होता है। कभी कभी एक सिंपल सा हैव यू ईटन और टेक केयर माई स्वीट हार्ट या बिना किसी रीजन का एक कॉल करना ही दिल को बता देता है ना कि कोई है जो हमारी फिक्र करता है। अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान है तो प्लीज उन्हें टेकन फॉर ग्रांटेड मत लीजिए। आज रात उन्हें एक छोटा सा मैसेज जरूर भेजिए, बस कह दीजिए थैंक यू फॉर बीइंग इन माय लाइफ, क्योंकि प्यार जताना भी जरूरी है और प्यार निभाना भी।

0: Late Night Grooves
1: RM2 Radio Musti.
2: आई रियली होप कि जितने प्यारे प्यारे गाने हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए इन योर लेट नाइट ग्रूव्स आपको दिल से अच्छा लग रहा है. वैसे कभी कभी हम बातों को लेकर परेशान होते रहते हैं ना, जो हम चेंज भी नहीं कर सकते हैं. किसी ने क्या कहा है, किसी ने क्या सोचा है, किसने हमें समझा और किसने नहीं समझा. बट डार्लिंग, हर किसी को एक्सप्लेन करते करते अपने आप को मत थका दीजिए. आज रात बस इतना कीजिए, जो आपके कंट्रोल में नहीं है उसे थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए. डीप ब्रेथ लीजिए, अपने दिल को हल्का कर लीजिए और म्यूजिक के साथ फ्लो कीजिए, क्योंकि पीस इज ऑल्सो अ ब्यूटिफुल काइंड ऑफ हैप्पीनेस.

0: Late Night Grooves
1: RM2 Radio Musti.
2: वैसे देखा जाए तो रात का एक अलग ही कनेक्शन होता है यादों के साथ, है ना। दिन में हम कितने बिजी होते हैं, कितने बातें करते हैं, लेकिन जैसे ही रात होती है दिल उन लोगों के पास चला जाता है जो शायद हमसे दूर है। किसी की स्माइल, किसी की आवाज, किसी के साथ गुजरा हुआ एक छोटा सा मोमेंट, सब याद आने लगता है। अगर आप आज रात भी किसी को मिस कर रहे हो तो याद रखिए, डिस्टेंस सिर्फ दो जगह के बीच होते हैं, दिलों के बीच में नहीं। अब बस इस खूबसूरत एहसास का नाम लीजिए और ये अगला गाना आप आराम से सुन लीजिए।

I really hope कि आपको दिल से ये खूबसूरत गाने ये तराने जो हम पेश कर रहे हैं on Radio Masti in your late night grooves आपको अच्छा लग रहा है। जी हाँ दोस्तों, अगर फिलहाल अपनों से दूर अभी भी आप काम पे हो, you're working to home, आपको विश करना चाहेंगे बों को गाश माई डिया। और खूबसूरत अगला गाना जो हम पेश करने वाले हैं वो खासकर हमारी तरफ से आपके लिए, तो चलिए आप एंजॉय कीजिए, गुनगुनाने के लिए तैयार हो जाइए।

0: Late Night Grooves
1: RM2 Radio Masti.
2: मेरे प्यारे प्यारे लिसनर्स, लाइफ परफेक्ट नहीं होती है और शायद इसीलिए ब्यूटीफुल होती है. कभी हम हंसते हैं तो कभी हम रोते भी हैं, कभी जीते हैं और कभी हार कर भी बहुत कुछ सीख जाते हैं. अगर आज आप किसी डिफिकल्ट फेज से गुजर रहे हैं तो बस एक बात याद रखिए, दिस फेज इज नॉट योर होल लाइफ. ये वक्त भी गुजर जाएगा. आपने पहले भी बहुत कुछ फेस किया होगा अपनी जिंदगी में और आज भी आप यहाँ हैं, स्ट्रॉन्गर देन यू थिंक, है ना. सो यू डोंट गिव अप ऑन योर सेल्फ. कभी भी लाइफ में द बेस्ट चैप्टर्स ऑफ योर लाइफ मे स्टिल बी वेटिंग फॉर यू.

रात एक प्रॉमिस खुद से कर लीजिए आप कि आप अपने आप को थोड़ा ज्यादा प्यार करेंगे। हम सब दूसरों के लिए इतना करते हैं, उनकी फीलिंग्स के बारे में सोचते हैं, उनका ख्याल रखते हैं, उनकी खुशियों के लिए कॉम्प्रोमाइजेस भी करते हैं, लेकिन कभी कभी खुद से भी पूछना चाहिए, मैं ठीक हूँ ना? यू डिजर्व लव, यू डिजर्व रिस्पेक्ट, पीस एंड ऑल्सो हैप्पीनेस, नॉट बिकॉज समवन एल्स ने कहा है, क्योंकि आप जो हो उसके लिए यू डिजर्व एवरीथिंग। सो टुनाइट स्माइल एट योरसेल्फ एंड बी प्राउड कि आप जिंदगी में इतना कुछ कर गए हैं, फिर भी यू आर स्टिल स्टैंडिंग स्ट्रॉन्गर।

बात पता है क्या होती है, एक ही गाना किसी के लिए बस म्यूजिक होता है और किसी के लिए उनकी पूरी कहानी। एक गाना सुनते ही कोई चेहरा याद आ जाता है, कोई जर्नी, कोई पहली मुलाकात या फिर वो पल जो कभी वापस नहीं आएगा। That's the magic of music. It keeps our memories alive. तो आज की इस रात को let's create some beautiful memories together in your late night grooves. क्योंकि years later maybe आप इस गाने को सुनेंगे और याद रखेंगे कि हाँ, I used to listen to this beautiful show and a beautiful गाने किनिशा के साथ on Radio Mastic. Same.

चलिए जी, टू ऑल दोस हु आर ट्रूली मैडली डीपली इन लव, हां जी, तो ऑल दोस जो बड़े प्यार से शिद्दत से भी हमारा साथ दे रहे हैं, एक छोटी सी बात, प्यार में परफेक्ट होना जरूरी नहीं है, प्रेजेंट होना जरूरी है। अपने जो बिजी स्केड्यूल में ये थोड़ा सा वक्त आप निकाल सकते हो तो निकाल लीजिए, उनकी बात सुनिए, उनके इमोशंस को समझिए। समटाइम्स द पर्सन यू लव डजंट नीड अ सॉल्यूशन, दे जस्ट नीड टू नो दैट यू आर देयर। सो होल्ड ऑन To the people who make your heart feel like home, late night grooves में ऐसे ही romantic गानों का ये सिलसिला चलता ही रहेगा, दिल की बातें और beautiful vibes के साथ। मैं हूँ आपका साथ देने के लिए, it's all Jake Nisha। तो रात अभी बाकी है दोस्तों, music भी अभी बाकी है और दिल की बातें करेंगे आप लोगों के साथ।

RM2 रेडियो मस्ती। सो माय प्यारे प्यारे लिसनर्स, रात का ये वक्त इतना खूबसूरत होता है ना कि दिन भर की आवाजें धीरे धीरे खामोश हो जाती हैं और फिर बस हम हमारे थॉट्स और म्यूजिक जो है साथ दे जाते हैं। कभी कभी खामोशी भी बहुत कुछ कह जाती है। तो अगर आज आपके दिल में कोई बात है जो किसी से कह नहीं पा रहे हो तो उसे म्यूजिक के हवाले कर दीजिए, शायद कोई गाना आपकी फीलिंग्स को लफ्जों में बयां कर दे। मैं हूँ आज एक निशा जो लेट नाइट ग्रूव्स में आपका साथ दे रही है, जहाँ हर रात एक नई कहानी और हर गाने में एक नया एहसास।

सो दोस्तों खुश रहने के लिए हमेशा किसी बड़ी वजह का इंतजार मत कीजिए। कभी एक गरम कप चाय या कॉफी, अपना फेवरेट गाना, किसी अपनों का साथ, किसी अपने का मैसेज या एक प्यारी सी स्माइल भी दिन बना सकती है ना। लाइफ की छोटी छोटी खुशियों को एंजॉय करना सीख लीजिए, क्योंकि एक दिन पीछे मुड़कर देखेंगे तो शायद यही छोटे पल सबसे ज्यादा याद आएंगे। तो टुनाइट फॉरगेट योर वरीज, थोड़ी देर के लिए टर्न अप द वॉल्यूम एंड लेट योर हार्ट फील हैप्पी ऑन आवर एमटी रेडियो मस्ती इन योर लेट नाइट ग्रूव्स।

पता चला जा रहा है और हमें पता है कि इस वक्त बहुत सारे लोग जो है फिलहाल ड्राइव कर रहे हैं, यस, या कहीं से लौट रहे हैं या कहीं जा रहे हो आप, या हो सकता है कि आप ड्राइवर का काम करते हैं, यू आर ड्राइविंग राइट नाउ, कहीं से भी अगर आप ड्राइव करते करते हमारा साथ दे रहे हो, सो प्लीज़ ड्राइव केयरफुली, आराम से गाड़ी चला दीजिए और बस रेडियो का वॉल्यूम थोड़ा सा ऊंचा कर लीजिए, क्योंकि अगला गाना जो हम पेश करने वाले हैं आप लोगों के लिए, इन योर लेट नाइट ग्रूव्स, आई एम प्रीटी मच श्योर यू आर गोइंग टू लव इट, तो बस दिल को थाम लीजिए और इस खूबसूरत नगमे में खो जाइए।

खूबसूरत बातें तो हम करते ही रहते हैं, लेकिन खूबसूरत खूबसूरत गाने भी हम पेश कर रहे हैं। जितने भी हमारे लिसनर्स अक्रॉस द ग्लोब हमारा साथ दे रहे हैं, मॉरिशस के बाहर हो लेकिन हमारे दिल के जो करीब रहते हैं, उनके लिए हम अगला नगमा पेश करना चाहेंगे। हाँ जी, मुझे पता है अपनों से दूर रहकर जब आप ऐसे सुनते हैं ना गाने ऑन रेडियो, तो बस अपनों की ही याद आ जाती है। और उम्मीद करते हैं कि इन खूबसूरत गानों से आपकी हम यादों को ताज़ा कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ में आपके होंठों पर मुस्कुराहट लेकर आए हैं। तो चलिए, ये अगला गाना की निशा की तरफ से हमारे सारे म्यूजिक लवर्स के नाम जो मॉरिशस के बाहर है।

0: Feel the musty.
1: दिल की बातें जो है ना दिल में दबा के रखने से कोई फायदा नहीं होता है कभी कभी क्या होता है ना कि कुछ गाने ऐसे हम सुनते हैं इट रिलेट्स टू आवर स्टोरी और ऐसा लगता है कि ये गाना तो सिर्फ हमारे लिए ही बनाया गया है जी हाँ दोस्तों बॉलीवुड का ऐसा कोई भी गाना नहीं है जो किसी ना किसी के लाइफ के सिचुएशन के साथ फिट नहीं होता है तो चलिए अगर यादों में कोई है दिल में ये कोई है और फिलहाल के लिए आप मुस्कुरा रहे हो उनको याद करते करते तो ये अगला नगमा हमारी तरफ से आपके उनके नाम जो आपके दिल में बसते हैं

दिल की गहराई से बहुत बहुत शुक्रिया जी हमारा साथ देने के लिए इन योर लेट नाइट ग्रूव्स. लेकिन फिलहाल के लिए आप हमें इजाजत दीजिए. जी हाँ, हम अभी जा तो रहे हैं लेकिन वादा करते हैं फिर से लौट के आएंगे कभी भी फिर से लेट नाइट ग्रूव्स में आपका साथ देने के लिए. शुभ रात्रि, शब्बा खैर, अपना ख्याल रखना और कीप ऑन स्प्रेडिंग लव.